0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम डॉट ऑर्ग रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम डॉट ऑर्ग।

ओम नमः शिवाय। डियर लिसनर्स ऑफ shivam.org, नाउ वी आर लिसनिंग टू केदीचनाद सुप्रभातम, प्रेजेंटेड बाय श्री गायत्री वेंकटराघवन। थैंक यू। ओम नमः शिवाय।

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।

सुवक्त्राय नमः उदग्राय नमः विनताय नमः दीर्घाय नमः हरिकेशाय नमः सुतीर्थाय नमः कृष्णाय नमः श्रृगालरूपाय नमः सर्वार्थाय नमः मुंडाय नमः सर्वशुभंकराय नमः सिंह

आपाशाय नमः, नित्याय नमः, गिरिचराय नमः, अमताय नमः, सहस्रहस्ताय नमः, विजयाय नमः, व्यवसायाय नमः, आनन्दिताय नमः, अमर्षणाय नमः।

न्यग्रोधाय नमः विश्वकर्मणे नमः विश्वभुजे नमः तीक्ष्णाय नमः अपायाय नमः हर्यश्वाय नमः सहायाय नमः कर्मणे नमः कालविदे नमः विष्णवे नमः प्रसादिताय नमः।

खगाय नमः, भिक्षवे नमः, भिक्षुरूपिणे नमः, रौद्ररूपाय नमः, सुरूपवते नमः, वसुरेतसे नमः, सुवर्चस्विने नमः, वसुवेगाय नमः, महाबलाय नमः, मनसे नमः, वेगाय नमः।

नमः चरणाय नमः धात्रे नमः परिधायै नमः परिपूजिताय नमः संयोगिने नमः वर्धनाय नमः वृद्धाय नमः घणिकाय नमः गणाधिपाय नमः नित्याय नमः धात्रे नमः सहायाय नमः देवासुरपतये नमः पत्ये नमः युक्ताय नमः युक्तबाहवे नमः सुदेवाय नमः सुपर्वणाय नमः आषाढाय नमः सुषाढाय नमः स्कन्धदाय नमः हरिताय नमः हराय नमः वपुषे नमः आवर्तमानाय नमः अन्याय नमः वपुश्रेष्ठाय नमः महावपुषे नमः शिरसे नमः विमर्शनाय नमः सर्वलक्ष्यलक्षणभूषिताय नमः अक्षयाय नमः रथगीताय नमः सर्वभोगिने नमः महाबलाय नमः साम्नायाय नमः महाम्नायाय नमः तीर्थदेवाय नमः महायशसे नमः निर्जीवाय नमः जीवनाय नमः मन्त्राय नमः सुभगाय नमः बहुकर्कशाय नमः रत्नभूताय नमः रत्नाङ्गाय नमः महार्णवनिपातविदे नमः मूलाय नमः विशालाय नमः अमृताय नमः व्यक्ताव्यक्ताय नमः तपोनिधये नमः आरोहणाय नमः अधिरोहाय नमः शीलधारिणे नमः महातपसे नमः महाकण्ठाय नमः महायोगिने नमः युगाय नमः युगकराय नमः हरये नमः युगरूपाय नमः महारूपाय नमः वहनाय नमः गहनाय नमः नगाय नमः न्यायाय नमः निर्वापणाय नमः आपादाय नमः पण्डिताय नमः अचलोपमाय नमः बहुमालाय नमः महामालाय नमः शिपिविष्टाय नमः सुलोचनाय नमः विस्ताराय नमः लवणाय नमः कूपाय नमः कुसुमाङ्गाय नमः पलोदयाय नमः ऋषभाय नमः वृषभाय नमः भङ्गाय नमः मणिबिम्बजटाधराय नमः इन्दवे नमः विसर्गाय नमः सुमुखाय नमः शूराय नमः सर्वायुधाय नमः सहाय नमः निवेदनाय नमः सुधाजाताय नमः स्वर्गद्वाराय नमः महाधनुषे नमः गिरावासाय नमः विसर्गाय नमः सर्वलक्षणलक्षविदे नमः गन्धमालिने नमः भगवते नमः अनन्ताय नमः सर्वलक्षणाय नमः सन्तानाय नमः बहुलाय नमः बाहवे नमः सकलाय नमः सर्वपावनाय नमः करस्थालिने नमः कपालिने नमः ऊर्ध्वसंहननाय नमः यूने नमः यन्त्रतन्त्रसुविख्याताय नमः लोकाय नमः सर्वाश्रयाय नमः मृदवे नमः मुण्डाय नमः विरूपाय नमः विकृताय नमः दण्डिने नमः कुण्डिने नमः विकुर्वणाय नमः वार्यक्षाय नमः ककुभाय नमः वज्रिणे नमः दीप्ततेजसे नमः सहस्रपदे नमः सहस्रमूर्ध्ने नमः देवेन्द्राय नमः सर्वदेवमयाय नमः गुरवे नमः सहस्रबाहवे नमः सर्वाङ्गाय नमः शरण्याय नमः सर्वलोककृते नमः पवित्राय नमः त्रिमधवे नमः मन्त्राय नमः कनिष्ठाय नमः कृष्णपिङ्गळाय नमः ब्रह्मदण्डविनिर्मात्रे नमः शतघ्नाय नमः शतपाशधृषे नमः कलायै नमः काष्ठायै नमः लवाय नमः मात्रायै नमः मुहूर्ताय नमः अह्ने नमः क्षपायै नमः क्षणाय नमः विश्वक्षेत्रप्रदाय नमः बीजाय नमः लिङ्गाय नमः आद्याय नमः निर्मुखाय नमः सदसते नमः व्यक्ताय नमः अव्यक्ताय नमः।

सरस्वती हविष्मतीन्द्रकर्मा सुनोवत ताभिषजा आसुकर्माणा सा सुदुघा सरस्वती सवृत्रः शतक्रातुरिन्द्रा आयदधुरिन्द्रियम्।

0: इन्द्रायाहितूतु जान उपब्रह्माणि हरिवः सुतेदाधिश्वनश्च नाः अश्विनापिबतां मधुसरस्वत्या सजोषास इन्द्रः सुत्रामा आवृत्रः जुषन्ताज्ञे सोम्यं मधु इति द्वाविंशोऽध्यायः ओम्
1: ओम् नमः शिवाय. डियर् लिसनर्स् आफ् शैवम् डाट् आर्ग्, दि नेक्स्ट् प्रोग्राम् इस् स्पिरिचुवल् डिस्कोर्स्. इन् दिस् यु आर् अबौट् टु लिसन् शिवानन्दलहरि इन् हिन्दी, प्रसेण्टेड् बै महामण्डलेश्वर् स्वामी श्री आत्मानन्द गिरिजि महाराज. थेङ्क् यू. ओम् नमः शिवाय.
2: क्रीडार्थम् सृजति प्रपञ्चमखिलम्. बहुत सुंदर श्लोक है, बहुत सुंदर श्लोक है. जीवन के एक एक श्वास परमात्मा के संकल्प पर छोड़ दो. जीवन की एक एक दिनचर्या क्रियाकलापें परमात्मा के संकल्प पर छोड़ दो. तो भजन तो तुमने बहुत गाई है, जाके राख क्या जाही विधि राखिए ताही विधि रहिए, चाहे झोपड़ी में बास हो, है क्या है वो, चाहे महलों में बास हो चाहे झोपड़ी में बास हो, लेकिन जब परमात्मा झोपड़ी में तुमको भेजता है तब परमात्मा से तुम नाराज हो जाते हो. भजन तो गा देते हो, भजन तो गा देते हो भगवान के सामने, हे भगवान चाहे तुम महल में रख चाहे झोपड़ी में रख, तुम्हें जहां इच्छा हो वहां रखो. मुझे झोपड़ी में रखकर तुमको आनंद आ रहा हो, मैं झोपड़ी में रहने के लिए तैयार हूं. समझे कि नहीं? मुझे महल में रखकर तुम्हें आनंद आ रहा हो, मैं महल में रहने को तैयार हूं. लेकिन हम अपने आप को भगवान से भी बड़े मान लेते हैं ना. भगवान से बड़े किस लिए मानते हैं? हमको महल में रहने पर ही आनंद आएगा, इसलिए हम महल में ही रहेंगे, झोपड़े में तो किसी हालत में नहीं जाएंगे. महाराज हमको महल ही चाहिए, झोपड़ी नहीं. परमात्मा कहते हैं तुम्हें झोपड़ी में रखकर हमको आनंद आता है, तो उस समय क्या कहोगे बोलो, हैं? उस समय क्या कहोगे? हमको तो रस और पूरी खाने से ही आनंद आता है महाराज, हमको तो रस पूरी ही चाहिए. अब परमात्मा कहता है महाराज रस पूरी नहीं, कभी कभी बाजरे की बासी रोटी भी नमक और मिर्ची के साथ खाओ बेटा, हमको आनंद आएगा. तुम खाने को राजी हो कि नहीं बोलो? वहां नहीं होते हो तब समस्या आई. वहां तुम क्या कहते हो? नहीं महाराज, मेरे द्वारा बाजरे की बासी रोटी और नमक मिर्ची से बासी रोटी खाने पर तुमको आनंद आता है, भले आवे हम नहीं खा सकते. तुम्हारा यही कहना है कि नहीं बोलो, हैं? मानो कि उस भोजन से आनंद तुम अपने को आनंदित होना चाहते हो, इसीलिए भक्ति अधूरी हो जाती है. इसलिए भक्ति अधूरी हो जाती है. उस क्रिया से तुम आनंदित होना चाहते हो खुद, जबकि वह क्रिया परमात्मा खुद आनंदित होने के लिए तुमसे करा रहा है, तो ये गलती है. हम करते हैं तो परमात्मा के संकल्प में और हमारे संकल्पों में संघर्ष चल पड़ता है. परमात्मा के संकल्प में और हमारी दिनचर्या दैनदिनी में संघर्ष चल पड़ता है, तब जीवन विषाद हो जाता है. विषाद आनंद नहीं होता है. आगे का श्लोक बहुविध परितोष बाष्प पूर स्फुट पुलकांचित चारु भोग भूमि चिरपद कांक्षी सद्यमान परम सदा शिव भावना प्रपद्ये बहुविध परितोष। देखो योग में योग करने वाले योगियों को योग सिद्धि से पहले योग की सिद्धि के कुछ लक्षण दिखता है। ये लक्षण उस योगी साधक के जीवन में आवे तो मानो कि योग ठीक रास्ते पर चल रहा है। ये पूर्व भूमिका है, वो लक्षण से अनुमान करते हैं। और योग की जो भूमिका है वही भक्ति की भूमिका है। भक्ति शास्त्र में भी वही भूमिका है। तो आपकी भगवान के प्रति जो होने वाली भक्ति है, भक्ति भाव, वो भक्ति भाव कितनी पराकाष्ठा में है उसकी पूर्व भूमिका लक्षण दिखता है भक्तों में। ये स्वाभाविक भक्तों के स्वाभाविक लक्षण हो जाते हैं। इसको फिर नाटक के रूप में आप प्रस्तुत नहीं करना। ये लक्षण भक्तों के जीवन में स्वाभाविक अभिव्यक्त होते हैं। क्या है तो बहुविध परितोष। भगवान की भक्ति अनेक प्रकार के संतुष्टि का कारण है। भक्त कभी भी असंतुष्ट होता ही नहीं। असंतुष्टि भक्त का लक्षण नहीं है। मैंने पहले एक भजन की पंक्ति गाई ना, जाई विधि राखी है ताई विधि रही है। वहां असंतोष का कहां है, असंतुष्टि कहां है? वहां पर जाही विधि राखी है ताई विधि रही है, तो असंतोष कहां है वहां पर? हां, बाप मरे, भक्त असंतुष्ट होगा कि नहीं? भगवान से असंतुष्ट होगा कि नहीं बाप मरने पर? मां मरने पर भगवान से असंतुष्ट होगा कि नहीं? भक्त तो नहीं होगा। जाही विधि राखी है ताही विधि रही है। पति मरने पर भगवान का भक्त असंतुष्ट होगा कि नहीं, बोलो? होगा है, अन्यथा नहीं लेना हो। भक्त तो ये कह सके, महाराज पति न मरा है, तुम तो नहीं मरे हो, ये कहने का हिम्मत होना चाहिए कि नहीं भक्तों में, बोलो? है, ये होनी चाहिए कि नहीं? पति मरा और रो नहीं रहा है, कोई पूछे पति मर गया क्यों नहीं रो रही हो, और खुद भगवान पूछे तुमसे तुम्हारा पति मर गया तो तुम क्यों नहीं रो रही हो, तो तुम क्या जवाब देना है तुम्हें? पति मर गया, तुम तो नहीं मर रहे हो, बोलो? जाही विधि राखे राम है, इतना साहस होनी चाहिए कि नहीं, बोलो ना भक्तों में। जाही विधि राखे राम बहुविध परितोष। ये अन्यथा संसार में को लोकमाराधय तुम समर्था। कालिदास जी ने एक वाक्य लिख दिया है, ये संसार में किसी को भी पूर्ण रूप में प्रसन्न नहीं कर सकता, कोई भी, कोई भी किसी को भी पूर्ण रूप में प्रसन्न नहीं कर सकता है। एक को खुश करोगे दूसरा नाराज हो जाएगा, दूसरा खुश तीसरा नाराज, एक वस्तु से वो प्रसन्न है दूसरे वस्तु से नाराज। को लोक माराध ही तुम समर्थ, तो एक ही चीज है संसार में बहुविध परितोषा, हर प्रकार से संतुष्ट होना भक्त का लक्षण है। हंसे तो ठीक, रोए तो ठीक, चले तो ठीक, बैठे तो ठीक। बहुविध परितोष बाष्प पूरा, दूसरा लक्षण बाष्प पूरा, भक्तों के भक्ति साधना के काल में, योगियों के योग साधना काल में और भक्तों के भक्ति साधना काल में बाष्प पूरा, उसके शरीर से पसीना निकलेंगे। हाँ, तो ये भक्तों का लक्षण है। और हम तो पसीना आने लग जाए तो घबरा जाएंगे, एसी कहां गया। स्फुट पुलकांकित शरीर में कंपायमान होने का, पुलकांकित शरीर में कंपायमान होने लगेगा। चारु भोग भूमि आनंद की भूमिका है वो, चिरपद कांक्षी सेव्य माना, चिरपद कांक्षी सेव्य माना, जो नित्य आनंद के अनुभव करना चाहता है तो ऐसे व्यक्तियों के द्वारा सेव्य, उन्हीं को ही चिरपद प्राप्त होगा, उनके द्वारा परम सदाशिव भावनाम प्रबंधे, परम सदाशिव के भावना भक्ति के शरण में प्रबद्धे में जाता हूं। तो परम शिव के जो भक्ति चरण में जिसकी अनन्य भक्ति है, वो भक्ति का प्रभाव यह है कि बहुविध परितोष, हर प्रकार की संतुष्टि प्राप्ति होगी, बाष्प पूरा। इसको अन्यत्र योग भूमि में इस तरह भी लिखा है, स्तंभ स्वेदो अथ रोमांच स्वर भंगो अथ बेपथु हो, भक्त स्तंभ हो जाता है, कुछ बोल ही नहीं सकता, कुछ कर ही नहीं सकता, स्तंभ जड़ की तरह। भागवत आदि लक्षणों में तुम पढ़ो, भगवान श्री कृष्ण ने जब बांसुरी बजाई सब स्तंभ हुए, स्तंभ हुए। भागवत में लिखा है जंगल के जो मृग शावक हैं, मृग हैं, घास खा रहे थे और मुख में जो घास लिया तो मुख ही में है, बच्चे मां के दूध पी रहे थे, चूसना बंद कर दिया, स्तंभ, जो जहां है वहीं स्तंभित हो गया। भगवान की बांसुरी का ध्वनि ऐसा मधुर था, इतना सम्मोहक था, पशु जंगल में घास चरते चरते जहां पहुंच गए थे वहीं खड़े हो गए। मुख में घास है, न वो परित्याग कर रहे हैं, न नीचे उतार रहे हैं। स्तंभ, ये भक्ति की पराकाष्ठा है। स्वेदः, शरीर में भाव उद्रेक होने पर पसीना निकलने लगता है। अतः रोमांच लक्षण है, ये भक्ति पराकाष्ठा के लक्षण है। शरीर के रोंगटे खड़े होते हैं, रोमांच। स्वरभंगो, कुछ बोलना चाहे बोली नहीं, स्पष्ट रूप से नहीं निकलती। बोलना चाहते हैं नहीं बोल पाते, स्वरभंग। बेपतुहु, शरीर कांपता है। वैवर्णम, उसका जो स्वरूप है उसमें बदलाव आ जाता है। अश्रु प्रलय, जोर जोर से आंख से आंसू निकलने लगते। यही भक्ति के सात्विक भाव है, ये सात्विक भाव है। लेकिन आजकल देखते हैं कोई कोई ये लक्षण पढ़ लेते हैं और समाज में बड़े नामी भक्त होने के लिए ऐसे ही रोने लग जाते हैं, नाटक की तरह रोने लग जाते हैं। कोई कोई, अरे ये तो बड़ा भगवान का भक्त है, ये सिद्ध करने के लिए कहां अपने लगते हैं। बहुत देखते हैं वो है, कहीं भगवान का भजन हो रहा हो, नाम जप हो रहा हो, कि संकीर्तन हो रहा हो, तो कीर्तन करते करते कांपने लगते हैं। ले जी, दो थप्पड़ मारो तो उनकी कांप गई। ये स्वाभाविक होनी चाहिए, ये भक्तों के लक्षण हैं। बहुविध परितोषा बाष्प पूरा स्फुट पुलकांकित चारु भोग भूमि चिरपदकांक्षी सेव्यमानाम परम सदा शिव भावनाम प्रपद्ये। आर्यचंद, अमित मुदमृतम मुहुर्दुहंतिम विमल भवत्पद गोष्ठमा वसंतिम सदय पशुपते सुपुण्य पाकाम परिपालय भक्ति धेनु मे काम। भक्त बड़े कभी कभी बदमाशी भी करते हैं, कहते हैं अमित मुद मृतम मुहुर दुहंती। मैंने एक गाय पाल रखी है, शंकराचार्य जी कह रहे हो शिव जी से, सीधे कह रहे हैं शंकराचार्य जी भगवान शिव से, सीधे कह रहे संवाद कर रहे हैं। मैंने एक गाय पाल रखी है, बड़ी अच्छी गाय है। अमित मुदा मृतम मुहुर दुहंतिम, अमित माने असीम, जिसकी कोई सीमा नहीं है। मुद माने प्रसन्नता का, आनंद का। अमृतम मुहुर दुहंतिम, बार बार जब चाहो तब जान चाहो वहां दू सकते हो, जितने बार चाहो उतनी बार दू सकते हो। वो देने में समर्थ ऐसी गाय मैंने पाल रखी है। विमल भवत पद गोष्ठमा वसंती। लेकिन समस्या यह है महाराज, उस गाय को बांधने के लिए मेरे पास अच्छा गोठ नहीं है। क्योंकि भैंस को तो जहां भी बांध दो चल जाता है, सुअर के लिए बहुत साफ स्थान चाहिए है? दुनिया में गंदा सा गंदा स्थान में रख दो तभी आनंद से रहता है कि नहीं सुअर है? लेकिन गाय रह सकती है ऐसी जगह? नहीं रह सकती। इसलिए उसको बहुत अच्छा जगह चाहिए, बढ़िया गोष्ठ चाहिए। मैंने संसार में बहुत जगह घूम घूम कर देखा, उस गाय के लिए गाय के अनुकूल गोष्ठ मुझे प्राप्त नहीं हुआ कहीं भी। एक जगह मुझे मिल गया है महाराज, वो क्या है? विमल पद, विमल भवत पद गोष्ठम, निर्मल आपके जो चरण रूपी गोष्ठ है वहीं मैं इस गाय को बांधना चाहता हूं। बस महाराज, तुमने गाय का नाम क्या रखी है? नाम होता नहीं गाय के, गाय के विशेषण तो बता दिया, अमितम उदम अमृतम मुहूर् द्वंतिम, लात मारने तो जानती ही नहीं हो गई। हालांकि लोक व्यवहार में कहा जाता है भैंस कभी लात नहीं मारती है कहते हैं, गाय लात मारती है कहते हैं, लेकिन ये हमने जो गाय पाली है वो लात मारने तो जानती ही नहीं है। क्यों नहीं जानती हमारा जो गाय लात मारने क्यों नहीं जाती है? क्योंकि आपके लात के आश्रय में बैठी है तो किसको मारेगी वो है? भवत पद विमल भवत पद गोष्ठम आवसंतिम, वो गाय आपके निर्मल चरण रूपी गोठ के अलावा और जगह बैठना ही नहीं चाहती है वो है। भवत विमल भवत पद गोष्ठम, आपके जो चरण है वही उस गाय के लिए उत्तम गोष्ठ है, गोठ है। वहां यदि आपने आश्रय दिया तो वो गाय बड़ी खुश होगी और मुझे नित्य निरंतर अमितम उद अमृतम मोर दुहंती, जब चाहो तब मैं उससे अमृत दू सकता हूं, हर वस्तु के लिए आनंद का अमृत दूध के रूप में दे सकती है। सदाया महाराज कृपा करो। हमारे एक भक्त है, एक बार हमारे पास आकर उन्होंने कहा, ये सच घटना हो, और संयोग से उन्होंने एक कुत्ता पाल रखा था। घर में एक कुत्ता पाल रखा था, औसतन कुत्ते की आयु 14-15 वर्ष 12-14 वर्ष, ज्यादा ज्यादा 15-16 वर्ष की आयु है, उसे ज्यादा कुत्ते नहीं बांसते हैं, औसतन आयु वही है। उनके बहू बेटे दोनों बाहर चले गए, विदेश चले गए, अमेरिका चले गए, तो एक बाई रखा था उन्होंने घर में काम करने के लिए, बहुत पुरानी बाई। अक्सर उस कुत्ते की देखभाल वही बाई करती थी, समय में खाना देना, उसको बाहर ले जाना, घुमाना है ना, बाई करती थी। भाई वृद्ध हो गई तो मर गई भाई, दूसरी भाई मिली नहीं, घर में कुत्ता है 16 साल का हो गया, हो बहुत बूढ़ा है कुत्ता, अब अपने आप मर नहीं रहा है, घर में पाला हुआ है, अब उसको मारने का तो कोई हिम्मत नहीं करेगा, पाला हुआ कुत्ता कैसे मारेगा, अब उस बूढ़े कुत्ते को कोई दूसरा पालेगा भी नहीं, उसके लिए ऐसा बंधन हो गया है कि उस कुत्ते को छोड़कर एक दिन भी कहीं बाहर जा नहीं पाती है। उसी कुत्ते के लिए समय में खाना देने के लिए घर में रहना पड़ेगा, आकर मुझे सुनाती है, महाराज और कोई बंधन नहीं है घर में, कुत्ते का बंधन है। अब क्या कहूं भाई, कहां रखें उसको, और लेके जाएं तो कहां लेके जाएं, छोड़ के जाएं तो किसके यहां छोड़ के जाएं, वो जब तक नहीं मरेगा तब तक मुझे उसके अधीन में होकर घर छोड़ ही नहीं पाती हूं। तो शंकराचार्य जी कहते हैं कि मेरी जो गाय है ऐसे विलक्षण है वो है? अब इस गाय को लेकर बहू क्या जाओ तो बहू पसंद नहीं करती है, करेगी? आजकल की बहू पसंद करेगी? सास ने ये गाय पाल रखी है, मान लो भगवान शिव की भक्ति रूपी कामधेनु सास ने पाल रखी है, अब भक्ति रूपी गाय को लेकर बहू के यहां जाओ तो बहू पसंद करेगी है? बेटे के यहां जाओ तो बेटा पसंद करेगा? तो तुम्हारे लिए यह मुसीबत हो गई कि नहीं बोलो है? तुम छोड़ भी नहीं सकते हो, अमितमुदम अमृतम मुहुर दुहंतिम, बार बार तुमको अमृत की प्राप्ति हो रही है, छोड़ भी नहीं सकते, और संसार में कोई भी तुम्हारे द्वारा धारण की हुई भक्ति को किसी को देने जाओ कोई लेने को तैयार होता नहीं। आज के जमाने में कोई भक्ति लेने को तैयार है? बोलो। कभी कभी तो ये बिना मतलब का भक्ति हमने शुरू कर लिया, मुसीबत हो गया, कई बार शालिग्राम लाते हैं घर में वो शालिग्राम मुसीबत हो जाता है, मुसीबत हो जाता है, लेके जाएं तो अमेरिका कहां लेके जाएंगे, तुलसी का पत्ता मिलता नहीं, महात्मा ने शालिग्राम दिया था रोज तुलसी का पत्ता चढ़ाना, यहां थे तो चढ़ाते रहे, अब अमेरिका जाना है तो लेके जाए तो वहां तुलसी का पत्ता मिलेगा नहीं, यहां छोड़ के जाए तो बहुत चढ़ाएगी नहीं तुलसी का पत्ता, मुसीबत हो गई कि नहीं बोलो, क्या करें? भक्ति भी कभी कभी मुसीबत होती है, शंकराचार्य जी को हो गई, तुम्हें नहीं होगी, इसलिए उन्होंने कहा हम चाहते हैं कि ये भक्ति काम देनु, भक्ति देनु काम में काम, एक ही गाय है वह आपके विमल भवत पद गोष्ठम आवसंतिम, वहीं बैठना राजी है, इसलिए हम आपके चरण रूपी गोठ में उस भक्ति को बांध देना चाहते हैं। सदय पशुपते सुपुण्य पाताम, मेरे अनेक जन्मों के सत्फल सत्कर्मों का फल परिपक्व हुआ तब जाकर आज मुझे बढ़िया गोठ प्राप्त हुआ, गोठ प्राप्त हुआ, कौन सा गोठ? भगवान के चरण रूपी गोठ की प्राप्ति हुई है बात, अब ये भगवत भक्ति रूपी गाय इसी गोठ में मैं बांधता हूं। मम परिपालय, महाराज इस गाय को पालने का काम आपका है, आपके प्रति मैं जो भक्ति कर रहा हूं उसकी रक्षा करने का काम आपके है, आपके चरण में मैं अर्पण कर रहा हूं है? मम परिपालय भक्ति देनु में ये काम, मैं और किसी को पत्नी को पालो मैं नहीं कहूंगा, बेटे को पालो ये नहीं कहूंगा, माँ को पाल लो, बाप को पाल लो, मुझे पाल लो, ये नहीं कहूंगा। एक भक्ति जो मेरे पास है उसको आप पालन करो, अपने गोठ में पालन करो, और ताकि अमृत दूध मैं पी सकूं। बोलो, भगवान को तो गोठ के गोठाला बनाने चाहते हैं शंकराचार्य जी, ग्वाला बना दिए भगवान के। बोले, गाय भी तुम्हारी है, गोठ भी तुम्हारा, पालन पोषण तुम ही करो, हमको तो अमृत पान करना है बस। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्ण

शान्तिहि शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदाविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्ष

0: Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Pushpadan's Shiva Mahimna Stotra, presented by Swami Sri Muktanandji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
1: स्वामी जी के श्री चरणों में प्रणाम। स्वामी जी की बहुत बड़ी कृपा है, हमने प्रार्थना की स्वामी जी से और स्वामी जी ने हमारी प्रार्थना स्वीकार की और आप समय से पहले पधार गए। बहुत बड़ी कृपा है स्वामी जी आपकी। मैंने स्वामी जी से पूछा, उन्होंने कहा कि आज सुबह ही उन्हें भगवान शंकर की प्रेरणा हुई है, श्रावण का मास है तो 31 जुलाई तक वो भगवान शंकर की महिमा हमें सुनाएंगे और 1 अगस्त के बाद में गीता के 16वें अध्याय पर दैवी संपदा इस पर सुनाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबकी ओर से और प्रेमपुरी आश्रम की ओर से स्वामी जी के श्री चरणों में प्रणाम करता हूं। जय श्री कृष्ण।
2: ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंशर्षिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। ओम शांति शांति शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति

परम श्रद्धे प्रातृवंत पूज्यपाद श्री प्रेमपुरी जी महाराज के चरणों में वंदन। यहां उपस्थित सभी सम्माननीय सत्संग प्रेमी सज्जन वृंद, हमारे तिजोरी वाला जी जो इस अवस्था में भी, और जब पूछते हैं तो कहते हैं प्रभु की यही कृपा बनी रहे, हम यहां आते रहे। क्या आनंद का जीवन है, बहुत सुंदर जीवन है। हमारे झुंझुनू वाला जी सभी बहुत आनंद से यहां सत्संग श्रवण करते हैं, बड़ा आनंद है। हम विचार कर रहे थे किस विषय पर प्रकाश डाला जाए, तो प्रातःकाल जब हम उठे तो हमने विचार किया श्रावण मास है, क्यों न भगवान शिव की चर्चा कर ली जाए। हम जब यहां पर आए तो महाराज श्री अखंडानंद जी महाराज का जो प्रवचन था वो था कि उस समय न अंधकार था न प्रकाश था, न सत था न असत था, न सत ना असत शिव एव केवल, ये मंत्र की व्याख्या चल रही थी। ये श्वेताश्वतर उपनिषद का मंत्र है। न सत था न असत था, कौन था? केवल शिव ही था, शिव के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं था। कब? जब ये सृष्टि नहीं थी। ऋग्वेद में लिखा, बहुत प्यारा लिखा है, बड़ा प्यारा लिखा है, वो कहते हैं ना सतासित तदानिम नासत न रजह न व्योमः, उस समय ये अभिव्यक्त जगत नहीं था। सत नहीं था माने सत का अर्थ है दिस मैनिफेस्टेड यूनिवर्स, ये अभिव्यक्त जगत नहीं था, तो सत नहीं था। असत भी नहीं था अर्थात अनभिव्यक्त जो जगत अभिव्यक्त नहीं हुआ है, अनमैनिफेस्टेड यूनिवर्स फेनोमेन वर्ल्ड, ये जो अनभिव्यक्त जगत जो अभिव्यक्त नहीं था वह भी नहीं था। तो अभिव्यक्त कब होता है? देखो शिव जी की बात करेंगे ना हम, तो शिव जी वैदिक देवता है। शिव जी क्या है? वैदिक देवता है। और एक ऐसे देव है महाराज, आप जितने भी मंत्र बोलते हैं ना, जितने भी श्री कृष्ण शरणम मम, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री राम शरणम मम, ये कोई भी वेद के मंत्र भाग में नहीं है मंत्र। केवल ओम नमः शिवाय ऐसा मंत्र है जो वेद के संहिता भाग में आया है और साक्षात आया है। नमः शंभवाय च मयोभवाय च, नमः शंकराय च मयस्कराय च, नमः शिवाय, हो गया ना नमः, ये पंचाक्षर है। ओम लगा देते हैं प्रत्येक मंत्र के साथ, ओम लगता ही है तो षडाक्षर हो जाता है ओम नमः। और भगवान शंकराचार्य ने षडाक्षर मंत्र पर स्तुति लिखी है, जिसका पहला मंत्र है ओंकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। तो ये शिव, भगवान शिव हैं, ये वैदिक देवता हैं। वेद में लिखा, बड़ा प्यारा लिखा है, एक एव रुद्रः न द्वितीयाय तस्थुः, एक ही रुद्र है, दूसरा है ही नहीं। और जहां लिखा असंख्याता हेते रुद्रः, वहां प्रत्येक जीवों के लिए आया है। रुद्र तो एक ही है, दो है ही नहीं। रुद्र को रुद्र क्यों कहते हैं? भगवान शिव के अनेक नाम हैं, हजारों नाम हैं, उनका एक नाम रुद्र है। क्यों है? रोदयति दुष्टान। देखो एक शब्द है रोदयति, एक शब्द है रुदति। जब रुदति प्रयोग करते हैं ना संस्कृत में, तो कहता है कि स्वयं रो रहा है ना, अहम रुदामी, मैं रो रहा हूं। और रोदयति का मतलब रुलाता है, रोदयति का अर्थ क्या होता है? रुलाता है। तो रोदयति दुष्टान, जो दुष्टों को रुलाता है। अच्छा भगवान शंकर का क्या नाम है? भोले भाले। क्या है? भोले भाले, भोले भाले है ना, भाला तो समझते ना किसे कहते हैं। अरे भक्तों के लिए भोले हैं तो दुष्टों के लिए वो समझ गए ना, ये तो सीधी सी बात है ना। आप लोग ही तो रोज कहते हैं भोले भाले, तो भक्तों के लिए भोले हैं और दुष्टों के लिए, तो जो दुष्टों के लिए भाले हैं उनको कहते हैं रुद्र। रोदयति जो रुला दे, किनको? दुष्टों को। और रुद्रात रुदाद्रावती,
उसका अर्थ होता है जो सभी प्रकार के कष्टों का निवारण कर दे, सभी प्रकार के कष्टों का, दुखों का जो निवारण कर दे, उनको कहते हैं रुद्र। रुद्र कहते हैं। और ये रुद्र जो है बड़े महान है महाराज, बड़े महिमाशाली हैं, इनकी महिमा अनंत है, अनंत महिमावान है, इनके बराबर कोई नहीं है, कोई इनकी बराबरी कर भी नहीं सकता। इसलिए भगवान शिव सृष्टि के एकमात्र सृष्टि के आधार भगवान शिव हैं, संसार की रक्षा करने वाले एकमात्र भगवान शिव हैं, संसार का पालन करने वाले एकमात्र भगवान शिव हैं। और जब संसार कर्म करते करते करते करते थक जाता है, जैसे आप लोग दिन भर कर्म करते थक जाते तो क्या करते हैं, सो जाते ना, ऐसे ही जब ये जीव जन्म मरण के चक्र में आते आते थक जाता है तो थोड़ा विश्राम देने के लिए सृष्टि का संहार करने वाले भी भगवान रुद्र ही हैं, भगवान शिव ही हैं। और ये श्रावण मास है, श्रावण है ना, तो श्रावण मास में और भगवान शिव की महिमा है। क्यों है? क्योंकि श्रोतव्य, श्रोतव्य माने सुनने योग्य, श्रोतव्य एक ही है, वह भगवान शिव, जिनकी कथा हम सुन सकते हैं, जो एकमात्र श्रुति का विषय माने कान का विषय, श्रुति का विषय हो सकते हैं, वह है भगवान शिव। इसलिए श्रावण मास में श्रवण करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वेदों में लिखा है आत्मा वारे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्यः। अरे आत्मा को जानना चाहिए। भगवान शंकराचार्य ने बहुत सुंदर का बड़ा प्यारा कहा है, वो कहते हैं किं वानेन धनेन वाजि करिभि प्राप्ते न राज्येन किम् किं वा पुत्र कलत्र मित्र पशुभिर् देहेन गेहेन किम् ज्ञात्वैतच्छणभङ्गुरं सपदिरे त्याज्यं मनो दूरतः स्वात्मार्थं गुरुवाक्यतो भज भज श्री पार्वती वल्लभम्। कितना सुंदर कहा, स्वात्मार्थम, स्वात्मार्थम माने अपने आप को जानने के लिए, आत्मार्थम अपने लिए, और स्व माने बिल्कुल अपने लिए, अपने आप को जानने के लिए, अपने तत्व को पहचानने के लिए, अपने आप को समझने के लिए, अज्ञान की निवृत्ति करने के लिए, दुखों का सदा सदा से निवारण करने के लिए, आवागमन में के चक्र में छुटकारा पाने के लिए, स्वात्मार्थम गुरु वाक्यतः। तो क्या करें हम? तो गुरु के वाक्य का अनुसरण करो। क्या है गुरु वाक्य? यदि आपको जानना है तो श्रोतव्यः सुनो। क्या सुने? श्रोतव्यः श्रुति वाक्येभ्यः, वेद वाक्य सुनो। क्या सुने? वेद वाक्य सुनो। तो वेद वाक्य में क्या लिखा है महाराज? वेदों में क्या लिखा है? वेदों में लिखा है महाराज कि एकमात्र ईश, जो अपनी ईश यानी शासन करने वाली शक्तियों के साथ संपूर्ण विद्या और पदार्थों और सबको अनुशासन कर रहे हैं, उस परमात्मा का भजन करो। ब्रह्माधिपति ब्रह्मणो अधिपति, जो ब्रह्म का यानी वेद के जो स्वामी हैं, जहां से वेद प्रकट हुआ है, ब्रह्मा का जो अनुशासन करने वाले हैं, और सारे के सारे ज्ञान के जो अधिपति विद्याधिपति, ऐसे भगवान जो अपनी शासन करने वाली शक्ति के द्वारा संपूर्ण विश्व का शासन करने वाले हैं, उनका श्रवण करो। उनका श्रवण करो तो उनके श्रवण करने से कल्याण है। शिव किसे कहते हैं? शिवम कल्याणम ददातीति शिवः।
जो शिव है उनको शिव क्यों कहते हैं, क्योंकि वे कल्याण को देने वाले हैं। तो क्या कहा भगवान शंकराचार्य ने, बड़ी सुंदर बात कही कि

जेन किम। कहते हैं अगर आप बहुत धन इकट्ठा कर लोगे तो भी क्या होगा। हमने सुना है, सुना है, ये हमने देखा नहीं है। एक बहुत बड़ा धनी था महाराज, उसका अपार धन था। और जब उसने अपने सचिव को कहा कि मुझे अपना धन तो दिखा दो, तो अपना धन देखने के लिए गया तो घोड़े पर चढ़ करके वो धन देख पाए, इतना सारा धन था, इतना वैभव था उसके पास। और जब पूरा धन देखा कि इसका उपयोग कौन करेगा, तो पागल हो गया। किम वा धनेन वाजी करी भी। यहां से सोमनाथ के मंदिर को लूटने वाला मोहम्मद गजनवी के पास इतना अपार संपत्ति थी कि बहुत बहुत सारे लंबे चौड़े खेत में उसका वो सोना चांदी सब इकट्ठा हुआ था। जैसे जैसी उम्र ढलने लगी, वो धन को देख करके और पागल सा होने लगा कि इस धन का क्या होगा, इस धन का क्या होगा। ये बिल्कुल ऐतिहासिक घटनाएं बता रहा हूं, धन का क्या होगा। और अंत में वो धन को याद करके उसकी दुर्गति हुई। किम वा धनेन वाज करी भी। 2002 की घटना है, जब अमेरिका ने सद्दाम हुसैन को मारा। 2002 की होगी मेरा अनुमान से। तो उसके दो लड़के थे, बड़ा लड़के का नाम था उदय, वो नाम किसी भारत के सन्यासी ने उसका रखा था, उदय नाम। तो इतना ऐश्वर्य संपन्न था वो, सद्दाम हुसैन से भी ज्यादा वो भोग विलासिता प्रिय था। लेकिन वो मारा गया, अमेरिका ने मार दिया उसको, उसका सारा का सारा धन वो साथ ले गया। क्या कहां गया उसका। तो किम वा धनेन वाजी करी भी। वाजी माने हाथी, करी वाजी माने घोड़ा, और करी माने हाथी। घोड़ा और हाथी

नाम तो लिखा है, मैं नाम नहीं याद मेरे, तो उसके मंत्री ने, उसका जो पीए था उसने पूछा कि क्या तुम्हारी इच्छा है कि अगले साल तुम मेरी तरह सेठ बनो। उसने हाथ जोड़ लिया, मैं नहीं बनना चाहता। क्यों? कहते मैं आपको देख रहा हूं आप कितने दुखी हैं, अगर समझदारी है तो धन कितना चाहिए। तो भाई धन के देने वाले भी भगवान शिव ही हैं। कौन है? शिव ही। अगर शिव हैं तो धन चाहिए तो उन्हीं से मांग लो, और नहीं तो किम वा धने न बाजी करी भी प्राप्ते न राजे न किम। यदि आपने पूरा राज्य भी प्राप्त कर लिया तो क्या है? मुचकुंद की कथा आप सुनते हैं ना, मुचकुंद को जब भगवान श्री कृष्ण मिले तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा वरदान मांगो। कहते महाराज क्या वरदान मांगू, इस पृथ्वी लोक का मैं राजा था, इस पृथ्वी लोक का, पूरे पृथ्वी का चक्रवर्ती मैं सम्राट था, मैंने वो हालत देखी है, और देवताओं की मैं सहायता करने के लिए गया था, इसलिए मैंने स्वर्ग लोक का भी ऐश्वर्य देखा है, भूलोक का भी देखा है, उनकी दुर्दशा भी देखी है, उनका दुख भी देखा है, और संपत्ति में कितना कष्ट, कितनी पीड़ा, कितना वैमनस्य, कितना क्या है, सारा मैंने देखा है। इसलिए अब ये धन संपत्ति तो चाहिए नहीं, क्योंकि पृथ्वी का चक्रवर्ती सम्राट मैं था और स्वर्ग के देवताओं की मैं रक्षा करने के लिए गया था, इसलिए अब ये नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए? बस केवल आपकी भक्ति चाहिए। प्राप्ते न राजे न किम। अगर पूरा राज्य भी मिल जाएगा तो आपको क्या प्राप्त होगा? बड़े बड़े राजा चले गए, आए और गए, कौन साथ में ले गए? कोई ले गया? अगर कोई नहीं ले गया तो हम भी ले जाने वाले नहीं हैं, तो क्या करें? भगवान का भजन करें। किं वा पुत्र कलत्र मित्र पशुभिर् देहेन गेहेन किम्। पुत्र किसे कहते हैं? जो माता पिता की सेवा करे। अब नरक का मतलब यही समझ लो आज के युग में सेवा कर दे, है ना? नहीं तो महाराज माता पिता यहां है, पुत्र अमेरिका में है, इंग्लैंड में है, ऑस्ट्रेलिया में है, जब माता पिता बीमार पड़ते हैं तो फोन पे पूछ लेते हैं हाउ आर यू। जब तक ब्रीथिंग है तब तक वो आएंगे नहीं, जब देखेंगे बिल्कुल ही बेहोश हो गया तो आएंगे, बड़ी मुश्किल से आएंगे, और चारपाई पर खड़े होकर के, हॉस्पिटल की चारपाई पर खड़े होकर के पूछेंगे हमें पहचाना क्या? अरे तुम्हारे पहचानने के कारण दिन की दुर्दशा ही हुई है, अब कितना पहचानोगे? पुत्र हैं लेकिन हैं पास में नहीं है, और पास में भी है तो भी क्या है? पुत्र आपकी सेवा करेगा लेकिन आपको मुक्ति देने वाला, दुखों का निवारण करने वाला नहीं, केवल मोह बढ़ाएगा, मोह अटैचमेंट अटैचमेंट मोह बढ़ाएगा। और गोस्वामी ने क्या लिखा है? मोह सकल व्याधि न कर मूला, ताहि ते उपजे बहुविध शूला। मोह संपूर्ण व्याधियों का मूल है, और उस मोह से अनेक प्रकार के शूल पैदा होते हैं। शूल माने दुख, दर्द, है ना? जब पेट में दर्द होता तो क्या कहते हैं? उदर शूल। क्या कहते हैं उसको? उदर शूल। और जिसको शूल होता है उसको कहते हैं शूली। जैसे धन को, धन जिसके पास होता है उसको धनी कहते हैं, जिसके पास शूल होता है उसको कहते हैं। और एक और बात है, अगर आप अपने शूल को दूर करना चाहें तो शूली का भजन करो। शूली समझते हैं किसे कहते हैं? नहीं समझे? अरे राम राम राम। अरे त्रिशूल किसके हाथ में है? वह शिव जी का एक नाम शूली भी है, हजार नाम में से एक नाम शूली भी है। अगर आपको शूल दूर करना है तो शूली का भजन करो, है? अगर शूल दूर करना है तो ये जो

0: किंवा पुत्र कलत्र मित्र पशुभिर् देहेन गेहेन किम्। पुत्र पति पत्नी स्वार्थ का संबंध, हमारे यहां तो वैदिक ऋषियों ने बहुत प्रयत्न का विवाह की जो विधि है ना, विवाह की विधि, देखो ये विवाह की विधि पूर्ण रूप से धर्म है। क्या है? इसलिए पत्नी को क्या कहते हैं? धर्म पत्नी कहते हैं, क्योंकि पाणिनि का व्याकरण सूत्र है, व्याकरण का सूत्र पाणिनि ने लिखा, पत्यु यज्ञ संयोगे, जब तक यज्ञ पूर्वक आप पाणी ग्रहण नहीं करेंगे तो पति पत्नी होता नहीं। लव मैरिज हमारे यहां श्री कृष्ण ने रुक्मणी का हरण किया, किया ना, चलो आपकी बात मान लेते हैं, श्री कृष्ण ने रुक्मणी का हरण किया, लेकिन पत्नी कब बनाया? जब यज्ञ के साथ ने उन्होंने प्रतिज्ञा की। पत्नी का रूप कब दिया? जब यज्ञ के सामने उन्होंने प्रतिज्ञा की। 16,000 राजकुमारियों को भगवान कृष्ण ने छुड़ा दिया। उन्होंने कहा अब हम कहीं नहीं जाएंगे, कहां जाएं, हमारा कौन है? कोई नहीं हमारा, तो ठीक है मेरे साथ विवाह कर लो। लेकिन इतना कहते कृष्ण चले गए क्या? क्या किया? पढ़ो भागवत में, उतने ही मंडप बनाए गए, उतने ही श्री कृष्ण ने अपने आप को प्रकट किया। तो ये जो पति पत्नी का संबंध है, हमारे ऋषियों ने इसको धर्म के रूप में दिया, ताकि ये संबंध करके आप अपने जो वास्तविक लक्ष्य है परमात्मा की प्राप्ति, उसको प्राप्त कर सके। लेकिन ऐसा होता तो नहीं है, आपस में कलह विवाद, 20 साल हो जाती शादी करने को, तब भी पत्नी कहती है जी तो कुछ जानती ही नहीं, फिर भी क्या कहती, पति के लिए तो कुछ जानती नहीं। पति को गुस्सा आता तो क्या कहता, चुप रहो तुम्हें क्या मालूम, अरे 20 साल में एक दूसरे को नहीं जान पाए, कोई किसी को जान भी नहीं सकता। केवल अगर जान सकता है तो आप स्वयं अपने आप को जान सकते हो, किसी दूसरे को नहीं जान सकते। तो इसलिए इस भ्रम में मत रहना है कि हम इनको जानते हैं या हम इनको जानते, जानना है तो केवल अपने आप को जानना है, बाकी कोई किसी को नहीं जानता। तो ये जो पुत्र है, कलत्र है, मित्र है, ये इस लोक तक तो ठीक है, इस लोक तक तो ठीक है, लेकिन जब परलोक की आप यात्रा करें, परलोक की जब आप यात्रा करेंगे तो इनको छोड़ करके, और महाभारत का प्रसंग आप जानते हैं, मैं तो ऐतिहासिक उदाहरण दे रहा हूं ताकि बैठ जाए दिमाग में। जब वो स्वर्गारोहण गए, माने फॉरेन गए वो, है ना, फॉरेन ही तो था ना, जब वो स्वर्गारोहण गए तो किसको साथ ले गए? वो द्रौपदी गिर गई, युधिष्ठिर ने क्या कहा, गिर जाने दो आगे बढ़ो। इसका अर्थ क्या हुआ? क्या द्रौपदी से प्रेम नहीं था? नहीं, द्रौपदी के केश बंधन के लिए तो दुशासन को मारा था भीम ने, प्रेम तो है, लेकिन संदेह क्या है, संदेश क्या है? संदेश यह है, अगर आप अध्यात्म पथ पर चलना चाहते हैं तो अध्यात्म के मार्ग पर ये संसार के सारे संबंध आपको विसर्जन करने होंगे, सबको विसर्जन करना होगा, लेकिन जान करके नहीं, अपने आप छूट जाएंगे। द्रौपदी गिरी, गिराया नहीं, द्रौपदी को गिराया नहीं, द्रौपदी गिर गई, नकुल सहदेव को छोड़ा नहीं, छूट गए, अर्जुन भीम को छोड़ा नहीं, छूट गए। आप भी छोड़ना नहीं, भजन करना, अपने आप छूट जाएंगे। इस जग में रहो तो ऐसे रहो जैसे जल में कमल का फूल रहे। किंवा पुत्र कलत्र मित्र पशुभिर् देहे न गेहे न किम्। अगर सुंदर देह मिल गया तो क्या होगा? भर्तृहरि कहते हैं काये कृतांतात् भयम्। शरीर सुंदर मिल गया तो बुढ़ापे का डर महाराज झुर्रियां पड़ जाएंगी। बुढ़ापे का डर, कितना हम इसको मेंटेन करने के लिए क्या क्या नहीं करते, कितना तो भोजन करते हैं, रबड़ी खाते हैं, मलाई खाते हैं, कितने तरह के फल खाते हैं, घी खाते हैं, दूध पीते हैं, और फिर भी अगर सुंदर नहीं बनता तो ऊपर से क्रीम पाउडर और लपेट लेते हैं, अगर फिर भी कहीं सुगंधी नहीं जाती तो ऊपर से नकली सुगंधी और लगा लेते हैं, क्या कहते हैं उसको, परफ्यूम, और नकली सुगंधी लगा लेते हैं। अरे शास्त्र कहते हैं अपने जीवन में अपनी सुगंधी अपने आप पैदा करो, सद्गुण सद्विचार और सदाचार से जो सुगंधी है वही ओरिजिनल है, बाकी तो डुप्लीकेट है। तो शरीर मिल गया तो क्या, एक दिन तो ये छूटेगा जाएगा, हमारे पास रहने वाला नहीं है। और घर बना लिया तो क्या, महल बना लिया तो क्या, हमारे तो झुंझुनू वाला जी जानते हैं, जिन सेठों ने राजस्थान में बड़ी बड़ी हवेलियां बनाई, उन हवेलियों में कबूतर और चमगादड़ रहते हैं।
1: ओम नमः शिवाय। डियर यूजर्स ऑफ shaivam.org, वी आर वेरी मच डिलाइटेड टू दैट यू ऑल नो दैट ड्यू टू द शावर ऑफ ग्रेस फ्रॉम अलमाइटी लॉर्ड शिवा एंड द continuous support from esteemed users like you, our shaivam.org website had passed 26 successful years of service in the world of Shaivam, and it is all set to sustain the same with lot more new features in the forthcoming years as well. Adding to that, like one more diamond embedded to the golden crown, we are pleased to inform the existence of a new radio, Shiva Tattvam, specifically designed to telecast Shaiva discourses. It's a humble request to you to listen that as well and extend your support. Now you can listen all the Shaiva discourses being scheduled in Shaiva Lahari and Thiruneriya Tamilosi radios in Shiva Tattvam radio only. Thanks for your esteemed support. Om Namah Shivaya. Om Shivaya Namah. Dear listeners of shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Dakshinamurti Stotram presented by Swami Sri Pratyek Bodhanandaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
2: तो इसलिए श्रुति माता भी कहती है, यतो वाचो निवर्तन्ते यतः यस्मात् मनस सहित वाचा निवर्तन्ते, कैसे, अप्राप्य मनसा सह, मन सहित वाणी लौट गए, क्योंकि प्रत्यक्ष का विषय नहीं है, आप जो भी बोलेंगे वो प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष मूलक प्रमाण से बात करेंगे, मैंने ये देखा, मैंने इसके विषय में सुना, मैंने ऐसी चीज देखी है पहले भी, ऐसे बात करते रहते हैं। पर वेदांत का जो विषय है वो न तो प्रत्यक्ष है न तो परोक्ष है। परोक्ष मानी स्वर्ग, स्वर्ग का प्रत्यक्ष किसी को नहीं होता है। मुझे आश्चर्य हुआ, एक स्वामी ने बोल दिया किसी के मरने पे, हाँ वो तो धाम में बैठे हैं, इनको कैसे दिखो, गप भागते, वो धाम में है कैसे मालूम पड़ा आपको, है कौन सा दूरबीन खुरबीन लिया आपने, और ये भी मानता है गए होंगे धाम में, ये क्या बात है, ब्लफिंग। सो परोक्ष है, स्वर्ग ऐसा है कि जो परोक्ष है, पर एक बात है, अगर मैं स्वर्ग की चर्चा शास्त्र में जो हुई है उसके रूप में निरूपण करूं, रंभा है, उर्वशी है, नंदनवन है, फिर चिंतामणि है, फिर वहां का ऐसा अमृत है, वहां का ऐसा गंधर्व का संगीत है, ऐसा आप युवान रहेंगे, 20 साल से उम्र आगे नहीं बढ़ेगी, वहां ये मक्खी मच्छर नहीं होते हैं, क्लीन स्टराइल प्लेस, शादी की जरूरत नहीं है वहां, पहली बात ही सुखी हो जाएंगे तत्काल, तो ये सब बड़े आनंद से रहोगे वहां, ये वर्णन किया मैंने, आपको दिखेगा नहीं, प्रत्यक्ष नहीं हो सकता है, पर जब अगर आप स्वर्ग में गए तो क्या होगा उसका, हाँ स्वामी जी ने ठीक बताया था, ये देवी आपका नाम क्या, उर्वशी, हाँ उर्वशी बहन केम छो, ये कौन है रंभा, ये सब बुढ़िया है, याद रखना, युवान दिखती है सब बुढ़िया है। तब देखे जाएगा ये क्या है, ये कल्प वृक्ष है, ठीक है। सो जो नित्य परोक्ष है वो भी कालांतर में प्रत्यक्ष होता है। प्राय हम लोग में अमेरिका गए नहीं है और बाल बच्चे वहां चले जाते हैं, फिर वो लोग कहते माँ आइए पिताजी आइए, और उनकी बात में भूले भूल से भी आप आ गए तो फंस जाते हैं, वहां जाके कुछ करने का नहीं होता। इतने कंटाड़ो इतने हदनी ऊपर कंटाड़ आ गए, एक जेल हो जाती है घर में बैठे बैठे, फिर दोबारा जाने का नाम नहीं लेते, अपना प्रेम पूरी अच्छा वापिस आ जाएंगे। और तुम लोग एक प्रेम पूरी अमेरिका में खोलो भाई अवे कंटाला आ जाएगा। यहां भी अभी हमारे लिए परोक्ष है, कनाडा परोक्ष है, सिंगापुर परोक्ष है, अक्षेप्य परा, पर वो भी प्रत्यक्ष हो सकता है। सो जो प्रत्यक्ष मूलक सब कुछ है आखिर तो, पर एक ही चीज है जो है। यहां बौद्ध लोग आके गएंगे हाँ शून्य है, शून्य न प्रत्यक्ष है न परोक्ष है, मानी आत्मा क्या है शून्य है। वो तो लग जाएंगे हमारे पीछे, एक दूसरी गड़बड़ है। वंद्या पुत्र भी क्या है, प्रत्यक्ष के परोक्ष है। वंद्या हो सकती है, लड़का हो सकता है, वो वंद्या का बेटा षष्ठी संबंध नहीं हो सकता है। वंद्या सुतः एषो याति वंद्या सुतः नहीं हो सकता है। तो ये वंद्या सुत का भी यही लक्षण है, प्रत्यक्ष भी नहीं और परोक्ष भी नहीं है। तो क्या कौन सी चीज है जो प्रत्यक्ष परोक्ष और प्रत्यक्ष आदि प्रमाण से ज्ञात नहीं है और जिसको जानना आवश्यक है, और वो है इसके लिए एक और प्रमाण का वर्णन कहते हैं, वो है वेदांत प्रमाण। वेदांत प्रमाण का भी वो विषय नहीं है डायरेक्टली, वहां वेदांत में शब्द का वो भी उपनिषद के शब्द का प्रयोग करके उसके अर्थ को इंगित करके लक्षणा से लक्षित करके उसको फिर इशारा करके उसके विषय में बुद्धि में हम विद्या प्रकट करते हैं, शब्द लौट आते हैं, अपना काम करके वस्तु समझ में आ जाती है। इसको कहते हैं संप्रदाय। महावाक्य का जो उपदेश है उसका जो अर्थ है वो न प्रत्यक्ष है न परोक्ष है, पर महावाक्य मानी तू ही परब्रह्म है, इसका जो अर्थ है वो समझ में लाने के लिए आप कौन है, ईश्वर कौन है, उसका वाच्यार्थ क्या है, उसका लक्ष्यार्थ क्या है, ये शब्द धीरे धीरे संप्रदाय के अनुसार समझाया जाता है मानी पढ़ाया जाता है। शब्द फिर अपना अर्थ जो है वो दे के शांत हो जाते हैं, वो इदम के विषय में नहीं। मैं आपको देखो दृष्टांत देखे बात करता हूं। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, यहां उपनिषद में आया अनंतम ब्रह्म, ब्रह्मन अनंता, जो ब्रह्म तत्व है वो अनंत है। हम जो भी चीज जानते हैं प्रत्यक्ष से या परोक्ष रूप में, सब चीज परिच्छिन्न है मानी सीमित है। सबका जन्म है, सबका अंत है, सब कहीं ना कहीं देश में है, और सबका अपना अपना एक एक लक्षण है, गुण है, खट्टा मीठा काला गोरा सबका लक्षण है। देश काल वस्तु परिच्छेद है, और जिसका मैं वर्णन कर रहा हूं वो देश में नहीं आ सकता है, पर देश जिसके कारण है। इट इज नॉट इन स्पेस बट बिकॉज ऑफ होम यू नो द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेस। जो काल में नहीं है पर जिसके कारण काल है, मानी वो नित्य है, काल का भी अधिष्ठान। तो यहां मैं शब्द का उपयोग करके लक्षणा से उसका इशारा करके और शब्दों को वापिस करके आपकी बुद्धि में उस अर्थ का आरूढ़ करता हूं। इसी को कहते हैं मौन व्याख्यानम। होल टीचिंग इज बाय लक्षणा, महावाक्य इज लक्षणा। शब्द का सिद्धार्थ नहीं हो सकता है और शब्द का ही उपयोग करना है। यहां प्रायः लोग आपको कहते होंगे ये तो मन वाणी का विषय नहीं है, तो और क्या करेंगे? तो फिर कल प्रवचन क्यों करते महाराज आप? मन वाणी का विषय नहीं तो चले जाओ, या हमको कम टाइम बिगाड़ते हो। मन वाणी का जो विषय है वो प्रत्यक्ष इत्यादि है, और ये जो साक्षात अपरोक्ष स्वरूप है उसको हम वाणी का उपयोग करके उसमें जो वाणी में जो मर्यादा है उसको तोड़ के उसका लक्षण लखा के शब्द को लौटा देते हैं। मानी मन और वाणी लौटते नहीं है, अपना काम करके लौटते हैं। फर्क पड़ गया? देखो कितना बड़ा फर्क। मन वाणी का विषय नहीं है, वो तो उससे ऊपर है, अतीत है, अतीत आत्मा है, सब चालू हो जाएगा। ये नहीं है भाई, ये मन वाणी का ही विषय है। मनसा एव इदम आप्तव्यम, मन से ही इसको जानना है। न मनसा मनुते ये न मनो आहुर मन तदेव ब्रह्मतम विद्धि। जिस मन का जो विषय नहीं होता है पर मन ही जिसका विषय है उसी को परब्रह्म कहते हैं। तो ये जो है इसको कहते हैं संप्रदाय। शंकराचार्य महाराज बहुत कड़े शब्दों में कहते हैं असंप्रदाय वित्तो मूर्खवत उपेक्षणीय। जो ये संप्रदाय को नहीं जानता है और अपने आप लगाता जाता है मेरा कोई गुरु नहीं है, मैं ही गुरु बन गया हूं सीधा, छोड़ो स्वयंभू गुरु, ये सबको क्या करना है? उनकी बात सुन के अपना समय गंवाना है। मूर्ख की बात सुनोगे तो क्या फायदा होगा? शंकराचार्य मूर्ख कहते हैं। आप देखिए संप्रदाय किसको कहते हैं, अध्यारोप अपवाद। पहले शब्द के ऊपर अर्थ का आरोप करके फिर उस अर्थ को दूर करके जो वस्तु है उसको लखाते हैं, इसी को कहते हैं अध्यारोप अपवाद। ठीक है, मौन व्याख्या प्रगटिति पर ब्रह्म तत्वम युवानम। दक्षिणामूर्ति गुरु मूर्ति युवान है। दो प्रकार के युवान है, एक तो काल में बाल्यावस्था कुमार अवस्था पौगंड कुमार और युवा अवस्था को प्राप्त होता है, इसको कहते हैं युवा। दूसरा युवा शब्द का अर्थ है जो नित्य है, जो न काल में पैदा होता है न मरता है, इसलिए भी उसको नित्य युवा कहते हैं। तो दक्षिणामूर्ति काल की दृष्टि से क्या है, कालातीत है इसलिए युवा। वर्षिष्ठान्ते वसदृशिगणैहि, और उनके पास अन्तेवासी अन्ते समीपे वसती, जो गुरु के नजदीक जाके पढ़ने के लिए बैठता है गुरु के आश्रम में रहकर, उसका नाम होता है अन्तेवासिन। आपका बेटा बेटी यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए जाता है तो क्या हो गया, अन्तेवासी। आपने ट्यूशन क्लास ज्वाइन कर लिया, रोज वहां 3 घंटे बैठते हैं, क्या हो गए वहां? अंतेवासी। कौन है? दक्षिणामूर्ति के नजीक पढ़ने के लिए कौन कौन आए विद्या अभ्यास के लिए? वर्षिष्ठांते, ब्रह्मनिष्ठ, जो वशिष्ठ आदि भी है, सनक आदि भी है, वसत ऋषिगण ही। ये ऋषि, ऋषि का अर्थ ये नहीं होता लंबा दाढ़ी मानी ऋषि। हम लोग का एक गड़बड़ है मगज में, लंबा दाढ़ी और लंबी जटा और टी, ये ना हाथ रखने के लिए, ऐसा आ गया तो क्या हो गया? परम योगी ऋषि हो गया। ऋषि शब्द कोई व्यक्ति के रूप में नहीं है, असियर जो दृष्टा है, आर्ष दृष्टा है, रुषंति जानंती, जो जानता है और जिसको हरेक विषय स्पष्ट है और उसकी स्पष्टता उसके व्याख्यान में भी है, उसको कहते हैं ऋषि। पहली बात हमें यह स्पष्ट होना चाहिए कि हमें सचमुच में हम क्या चाहते हैं। दूसरी बात, जिसको हम सचमुच में चाहते हैं वो कैसे प्राप्त हो। तीसरी बात, जिससे ये प्राप्त होता है वो कहां मिलेगा? तो बताया गया अमुक औषधि से लक्ष्मण जी ठीक हो जाएंगे। ये बता दिया, सबसे बड़ा काम क्या था? अभी कहां है औषधि? है ना, हिमालय में है। हनुमान जी बहुत प्रैक्टिकल है, ये वैद्यराज बोलेगा ये नहीं ये है करके गड़बड़ करेगा, पूरा का करे पूरा पहाड़, माने पूरे औषधि की दुकान लेके घर में आ गए। ऐसे क्या है, देख लो ढूंढ लो, भी माना गड़बड़ मत करना। तो हमको जो चाहिए वो मुक्ति चाहिए। कैसे मिलेगी? वेदांत विचार से। वेदांत विचार कहां किया जाएगा? सदगुरु के पास। सदगुरु कौन है? जो वेदांत विचार कराए। वेदांत विचार कौन कराएगा? सदगुरु। सदगुरु कौन है? अभी गड़बड़ हो गया ना, इसको कहते अन्योन्य आश्रित। स्वामी प्रातः स्मरणीय स्वामी अखंडानंद जी महाराज ने हमको एक दृष्टांत दिया था, मच्छर लोगों को एक चीज अच्छी नहीं लगती है, वो है हवा। हवा का झोंक आता है ना तो उड़ जाते बेचारे। तो सब मच्छर पहुंच गए ब्रह्मा जी के पास, ये हवा हमको कहीं टिकने नहीं देती है। तो ब्रह्मा जी ने कहा हवा को बुलाओ, दोनों साथ में होंगे तब न्याय होगा, जजमेंट हो जाएगा। जब हवा को बुलाई तो मच्छर उड़ गए। तो अभी तक न्याय नहीं हुआ है। When one is, other is not। दूसरा दृष्टांत यह है, लड़का थोड़ा सा गुजराती में कहे पावली गैप, है ना, सूरत नहीं भाषा में कातरियो फरी गई, तो थोड़ा कम था गड़बड़। तो लोगों ने कहा इसकी शादी कर दो ठीक हो जाएगा, पागल की शादी कर दो ठीक हो जाएगा। अभी तकलीफ यह है कि शादी कब होगी? ठीक हो जाएगा तब, और ठीक कब होगा? माने और अगर कोई भी तय भी कर दे तो उसका पड़ोसी वो बोल देगा ये गड़बड़ है, अकेला अकेला बोलता है। जब तक उसका पड़ोसी है वो कभी शादी तय नहीं होने देगा, और जो भी आएगा उसको बोलेगा यहां गड़बड़ है, भगवान है, कोई वादा नहीं, कर लो, भगवान है आप कर लो, पर गड़बड़ है। इसलिए अन्योन्य आश्रित हो गया। प्रमाण का विचार करना चाहिए, किसके पास जाए? गुरु। गुरु कौन है? प्रमाण का विचार करेगा। तो कैसे मालूम पड़े गुरु कौन है? गुरु का लक्षण यह है कि जिसके सत्संग में बैठने से भी मुझे स्पष्टता आ जाए, और मुझे स्पष्ट है कि मुझे क्या चाहिए, तो मुझे एक क्षण में मालूम पड़ जाएगा यह हमको दे सकते हैं कि नहीं। अगर आपने संगीत का अभ्यास 6 साल किया है और आगे संगीत का अध्ययन करना चाहते हैं, तो आपको एक क्षण में मालूम पड़ जाएगा कि ये उस्ताद हमको सिखा सकता है कि नहीं, उनका ज्ञान देख के हमको मालूम पड़ेगा प्रोफेसर कौन हमको पढ़ा सकता है, हम इतने एमएससी तक पढ़े हैं। तो ऐसे ही वेदांत में भी है, जिन्होंने ये प्रेमपुरी बहुत अच्छी जगह, यहां संस्कार होता है और इस संस्कार के द्वारा हमको मालूम पड़ता है क्या ब्रह्म है, क्या जिज्ञासा है, क्या मुमुक्षा है, और उसके लिए फिर जिसमें हमें स्पष्टता मालूम पड़े वो पढ़ा सकता है, वही गुरु है। उनके पास बड़े बड़े ऋषि मुनि ब्रह्म ज्ञान लेने के लिए बैठे, वशिष्ठान्ते वसद ऋषि गणई आवृतम ब्रह्म निष्ठी। आप ब्रह्मनिष्ठ कहते हैं, अगर ब्रह्मनिष्ठ है तो गुरु के पास जाने की जरूरत नहीं है, और गुरु के पास गए हैं तो ब्रह्मनिष्ठ अन्योन्य आश्रित है। पर ये आगे जाके ब्रह्मनिष्ठ बनने वाले हैं, इसलिए अभी से उसको क्या कहते हैं, ब्रह्मनिष्ठ। आप कभी मेडिकल कॉलेज में जाइए, ये फर्स्ट ईयर मेडिकल में जो पढ़ता है ना लड़का, वो भी स्टेथोस्कोप लगा के घूमेगा, सेकंड ईयर वाला भी स्टेथोस्कोप लगा के घूमेगा, एप्रोन लगा के घूमेगा बड़े प्रेम से। और उनको क्या कहा जाता है, विद्यार्थी कि डॉक्टर? प्रेमपुरी वाले को एक टूर लगाओ वहां, मालूम पड़ेगा क्या बोलते हैं। उनको भी क्या कहा जाता है, डॉक्टर। जो ट्रेन दिल्ली जाने वाली उसको क्या कहते हैं, ये दिल्ली की दिल्ली ट्रेन है, ये दिल्ली गई नहीं, यहीं खड़ी है बंबई में। दिल्ली जाने वाली ट्रेन को भी क्या कहते हैं, दिल्ली ट्रेन। मेडिकल में डॉक्टर बनने वाले को भी क्या कहते हैं, डॉक्टर। ब्रह्म ज्ञान जिसको होने वाला है उसको भी क्या कहते हैं, ब्रह्मनिष्ठ। आप लोग का एक नया नाम मिल गया आज, कितना आनंद है। पहले तो धन्यवाद, इतनी वर्षा में आप लोग आए, आज आपका नाम क्या है, सब आपको प्रणाम करता हूं, अरे ब्रह्मनिष्ठ। एक बात है, प्रेमपुरी में आने वाला ना ऊपर जाएगा नीचे आएगा, क्योंकि ऊपर नीचे मरने के बाद जा नहीं सकता, क्यों, इतना वेदांत सुना है। यमराज भी कहेंगे भाई इनको छोड़ो, ये वहां के और लोगों को बिगाड़ेगा, इनको वहां के उपदेश करने लगेगा, नरक वाला गड़बड़ करेगा, इसको यहीं रहने दो, जब तक ज्ञान ना हो तब तक प्रेमपुरी में रहे, वापिस यहीं आएगा। वशिष्ठान्ते वसदृशिगणैः आवृतम् ब्रह्मनिष्ठैः आचार्येन्द्रम् करकलितचिन्मुद्रमानन्दरूपम्। अब आप देखिए, दक्षिणामूर्ति की चारों ओर जिज्ञासु तत्व ज्ञान ग्रहण करने के लिए विराजमान है। गुरु वो व्याख्यान कर रहे हैं जिसमें लक्षणा से ही वस्तु ग्रहण की जा सकती है, इसका अर्थ है वेदांत प्रमाण का विचार कर रहे हैं। और गुरु की मुद्रा है, आप देखिए यहां श्री कृष्ण का चित्र लगा है ना सब जगह, नहीं रक्षा रथ वाला, प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रै कपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। ज्ञान मुद्रा, चिन मुद्रा, भद्र मुद्रा, उनकी भी मुद्रा क्या है, समग्र अध्यापन जो करा रहे हैं, ऑल टीचिंग एक मुद्रा में उसका परिसमापन हो जाता है। मुद्रा क्या है, ये तर्जनी जो है वो अंगुष्ठ के साथ मिला के वहां एक सर्कल वर्तुल बन गया है, और ये तीन उंगलियां अलग है, छोटी वाली सत्व, मदली रजस, और सबसे बड़ी, सबसे ज्यादा हम लोग में क्या है, आप लोग में उल्टा भी हो सकता है। ये आंसर देने में भी देर लगती है, इसका अर्थ क्या है, तो तमस, सो सत्व रजस तमस जागृत स्वप्न सुषुप्ति ये तीन, ये संसार है। अगर ऐसा करोगे ये क्या होगा, कांग्रेस आई मत बोलना, ये क्या है ये संसारी है, फिर ऐसे करेंगे वो लोग, तो ये जो है। पर जब गुरु की मूर्ति पढ़ाते पढ़ाते संसार से धीरे धीरे ये तर्जनी मानी लड़ने के लिए अंगली, आप देखो जब भी लड़ाई करते तो अंगली कैसे आती आगे, ये आती है जब करने भी इसका इस्तेमाल नहीं होता है। ये तर्जनी अहंकार है, मैं अहंकार, और ये सबसे अलग रहता है अंगुष्ठा, और सब उंगलियों को वही शक्ति देता है। इसलिए ताजमहल बनाने वाले लोग बेवकूफ थे सचमुच, क्योंकि उनको मालूम नहीं था कि अंगूठा कटने वाला है। देखो कितने भयंकर वहां के लोग थे, मैं कभी ताजमहल देख नहीं सकता हूं, मुझे ये सब याद आता है ना तो बहुत बुरा लगता है, कितनी क्रूरता है इन लोग में। तो उन्होंने काट दिया सबका अंगूठा, क्यों, अभी दूसरा नहीं बनाएगा। अरे भाई दूसरा बनाने दो, कौन बना सकता तुम्हारे जैसा। तो ये अंगुष्ठ कट जाएगा तो पूरा हाथ क्या हो जाएगा, कोई काम का रहेगा, ये दूर है, सबको प्राण शक्ति क्रिया शक्ति देता है। ऐसे ब्रह्म तत्व सबसे अतीत है, सबको धारण पोषण करता है, इसलिए अंगुष्ठ क्या है, पूर्ण ब्रह्म। अभी पूर्ण ब्रह्म संसारी से अलग है, ये चलते चलते तत्व ज्ञान हो गया मैं ही पूर्ण ब्रह्म हूं, और ये जो गोल हो गया इसका आदि भी नहीं है अंत नहीं है, इसलिए पूर्णत्व की प्राप्ति हो गई। इसको क्या कहते हैं, चिन्मुद्रा, भद्र मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, है ना, ज्ञान मुद्रा। श्री कृष्ण ने भी यही धारण किया था। इसके द्वारा हमको हंसी की बात यह आती है, मैंने एक ब्रह्मचारी को पूछा था ये क्या मुद्रा है, तो उन्होंने कहा चिकनी नसु के हिंदी में बजर, ये बजर की मुद्रा है, उसमें बजर रखते हैं फिर लेते हैं, यही हो जाएगा, ये भी मुद्रा कर दोगा। तो चिन्ह मुद्रा, चिन्ह मुद्रा के द्वारा क्या करते हैं, करकलित चिन्ह मुद्रमानंद रूपम, और आनंद मूर्ति है, और मुखारविंद प्रसन्न है। देखो एक बात है, आत्मा आनंद है ऐसा जब वर्णन करते हैं तो हृदय में आनंद होगा कि दुख होगा, और ये नहीं कि आत्मा आनंद रूप है हम तो संसारी है, ऐसे नहीं वर्णन है, मैं आनंद हूं और ईश्वर कृपा से आप भी क्या है, आप भी आनंद है। ये नहीं कि आत्मा आनंद है तुमको आनंद को प्राप्त करना है, मैं तो दुखी संसारी हूं, ऐसे नहीं बात करते गुरु। गुरु कहते अहम आनंद है त्वम अभी वॉट आनंद। तो ये जो आनंद पूर्वक पढ़ाते हैं, आपने कभी देखा होगा स्वामी परम पूज्य महाराज श्री का मुखारविंद, हमेशा मुखारविंद पे क्या था, मुदित वदन, मुदित वदन माने जस प्रसन्नता, हसित प्रहसित, ये नहीं अट्टहास्य नहीं, जोर से ना, मुदिता, आनंद स्वरूप का चिंतन करते करते वर्णन करते करते मुखाकृति भी क्या है, मुदित वदन, ये दक्षिणामूर्ति है। मैं कभी भी मूर्ति देखती हूं दक्षिणामूर्ति, कल तक मैं कोयम्बतूर में था, ये पत्थर की मूर्ति में मुखारविंद पे इतने सुंदर स्मित को प्रकट करना, ये सचमुच हमको आश्चर्य होता है, प्रसन्न वदनम, व्हाट अ थिंग। स्वात्मारामम मुदित वदनम, स्वात्मनि स्व आत्मनि आरामः, जो अपने आराम आत्मा में ही आनंद में मस्त है, आत्मनि आत्मना तुष्ट है, यह है दक्षिणामूर्ति, उनकी मैं स्तुति करता हूं भजन करता हूं। कल श्लोक लेंगे आगे। ओम शांति शांति शांति।
3: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
3: ओम नमः शिवाय।

0: Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Mandukya Upanishad, presented by Swamini Sri Nishtanandaji Saraswati. Thank you. Om Namah Shivaya.
1: अगर आपको कभी भी विचार आया कि मैं तो अज्ञानी हूँ, तो अब थोड़ा और विचार कीजिए कि भीतर कोई और ज्ञानी है, कोई और बड़ा है जो कह रहा है कि मैं अज्ञानी हूँ। अब मुझे उसको मात्र जानना ही है और वो जानने की व्यवस्था यहाँ है। शास्त्र, उपनिषद, गुरुजनों का सत्संग और संपर्क इसीलिए करना है कि वो जो है वो मुझे पता नहीं है कि किसने जाना। अब तक ध्यान ही नहीं गया कि कोई भीतर और जानने वाला ज्ञानी बैठा है। यहाँ ये मात्र, ये शास्त्र जो है वो आईने का काम करते हैं, मात्र दर्शन ही कराते हैं, विधि बताते हैं, व्यवस्था बताते हैं। ज्ञान को जानने की, ज्ञान उत्पत्ति का कारण नहीं, वो उत्पन्न नहीं हो सकता, किसी को दिया भी नहीं जा सकता, किसी से छीना भी नहीं जा सकता। मात्र अंगुली निर्देशन करके बता सकते हैं कि इस प्रकार आप सोचिए। अब तक आप जो सोच रहे थे, अब थोड़ा आप आगे सोचेंगे घर जाके, देहाध्यास बराबर है, जानने वाला कौन है। अब आपके भीतर कुछ और चलेगा। जानने वाला कौन है उसे आप नहीं जानना, उसे बताने की जवाबदारी हमारी है, वो फर्ज हमारा है कि वो कौन है। तो वो कौन है, वो कैसा है, उसी की बात ये उपनिषद में की गई है। पर यहाँ माध्यम जो है, अवलंबन जो है, उपनिषद ने यहाँ आत्मा जो है, जो परमात्मा है, जो ब्रह्म है, वो ब्रह्म को ओमकार के माध्यम से बताया है। ओमकार के अवलंबन से, इसे क्या कहते हैं, अवलंबन से बताया है। तो भाई परमात्मा को अवलंबन की क्या जरूरत है? तो यहाँ कहे परमात्मा को अवलंबन की जरूरत नहीं है। अवलंबन किसे है? तो भाई ये जो अज्ञानी जीव है, जो खुद को कर्ता भोक्ता मान रहा है अविद्या से, अनादिकाल से जो अविद्या चल रही है, विपरीत ज्ञान जो चल रहा है, उससे जो ये देहाध्यास से ग्रसित हो गया है, उसे बताने के लिए अवलंबन। अगर हम उसको अवलंबन भी नहीं देंगे तो ये पूरा अज्ञान में पड़ा हुआ जीव सीधा परमार्थ में नहीं पहुंच सकता, सीधा परमार्थ तक नहीं पहुंच सकता। अच्छा, आप मूर्ति पूजा करते हैं ना, मूर्ति को पूजते तो है ना, घर में नहीं है तो बाहर भी बड़े मंदिरों में हम जाते हैं, तो वो क्या है? हाँ, वो ये साकार मूर्ति या क्या है, वो भी अवलंबन ही है, तो उसका वांदा नहीं है। तब हम आर्ग्यूमेंट नहीं करते कि भाई ये मूर्ति अवलंबन क्यों है भाई। अच्छा, आप जप करते हैं ना, मंत्र जप करते हैं, माला फेरते हैं, तो वो भी अवलंबन ही है, उसका वांदा नहीं है। हाँ, पर ये ओमकार की जब हमने बात कर दी कि ये ओमकार अवलंबन है, तो बोले कि परमात्मा को अवलंबन की क्या जरूरत है, तो भी परमात्मा को मूर्ति के अवलंबन की भी जरूरत नहीं है। वो निर्गुण निराकार को हम साकार में डाल देते हैं, वो निराकार को आकार में डाल देते हैं, तो वहां हर्ज नहीं है, तो यहाँ क्यों होना चाहिए? और इसीलिए ये अवलंबन की बात तक आने के लिए जो नहीं होना चाहिए, उसकी बात कठोपनिषद में बहुत सुंदर तरीके से यमराज ने नचिकेता को बता दी है। नैषा तर्केण मतिरापनेया, ये जो आत्म संबंधी मति है वो तर्क से प्राप्त होने वाली नहीं है। अगर आपको बता लिया कि ओमकार का अवलंबन है तो है, अभी तो मान ही लो। मैं कितना भी झूठ बोल रहा हूँ, आपको मानना तो पड़ेगा ही। महत्व किसका है? महत्व क्या सिखाया जाता है उसका नहीं है हे नचिकेता। महत्व इसका है जो मैं बोल रहा हूँ उसमें आपकी श्रद्धा मुझे चाहिए, वही महत्व है। क्यों उसका है? कभी कभी गुरु आपके दिमाग, आपकी जो बुद्धि है वो कभी मान ही नहीं सके, ऐसी विपरीत बात भी बताते हैं, विचित्र बात भी बताते हैं। क्यों बताते हैं? कि वो सोचने में आप इतने ओतप्रोत हो जाओ, आप इतने डूब जाओ कि दूसरे विचार ही आप नहीं कर सकते। उसका प्रयोजन बहुत बड़ा होता है। गुरुजनों का बोलना, चलना, उठना, बैठना, उसको पता है कौन से शिष्य, कौन से साधक के सामने मुझे क्या क्या करना है। कई बार विचित्र लगता है लक्षण, पर उसके वो विचित्र लक्षण वाला वो विचित्र है, ऐसा न सोचते हुए आपको उसमें ओतप्रोत हो जाना है, वो जो भी कहे वो सोच लेना है। अगर दिन है और कहे कि ये रात है, तो ये रात कैसे है वो सोचने में आप इतने ओतप्रोत हो जाएंगे कि दूसरा सब भूल जाएंगे, वो क्षण के लिए आपका देहाध्यास चला जाएगा। और जब शांत अवस्था आ जाएगी, गुरुजन क्या करते हैं, देखिए तत्व रजस और तमस जो माया जो है, त्रिगुणात्मक माया, उससे ये जो शरीर मन बुद्धि के संघात की उत्पत्ति का कारण है, ये सत्व रजस और तमस हमारे भीतर एक के बाद एक आता जाता रहता है। अब जब गुरुजन ज्ञान देते हैं तो सत्वा संजायते ज्ञानम, आपके भीतर सत्व गुण होना ही चाहिए, नहीं तो ये ज्ञान की कोई विशेषता नहीं है, ये ज्ञान आपके भीतर नहीं जाएगा। और अब जब आप प्रवचन सुन रहे हैं और आपका तमस और रजस चल रहा है, तो गुरु का ही एकमात्र सानिध्य, इसीलिए ये जो संपर्क जो है, ये जो उपनिषद यानी गुरु के चरणों में बैठ के सुनने वाली बात है, वो इस प्रकार है कि वो कुछ वाणी से कुछ भी हो सकता है, वो वाणी से तत्क्षण आपके मन को सत्वगुणी कर देते हैं तत्क्षण। और वो सत्व गुण में तुरंत ही उसे लगता है कि अब माहौल बन गया है, तो तुरंत आत्मा का तत्वमसी है जो भी है वो उपदेश जो है वो कर देते हैं। वो खत्म हो जाने के बाद फिर हम अपने गुण में आते लगते हैं। यानी कहने का तात्पर्य, अब जब यहाँ से अवलंबन की बात आई तो तर्क न करते हुए, अवलंबन है तो है, अब क्या है उसी में विचार, उसी में पूरी श्रद्धा लगा के सब कुछ लुटा दो आप। ओहो वो जानना है ना, अब तक कितने के अवलंबन लिए, ओहो ये शरीर के निर्वाह के लिए आप कितने लोगों के अवलंबन है, अवलंबन पर है, आपको पता है सिर्फ आपके घर के जो मुखी जो है, जो पैसा कमा के लाते हैं उसके ऊपर अवलंबित नहीं है, वो कितनों के ऊपर अवलंबित है, वो कितनों के ऊपर है। तो आपके ये शरीर के एक दो टंक के खाने के लिए इतना सारा अवलंबन, वो नहीं लग रहा हा? मन के विचार के लिए कितना अवलंबन, क्योंकि आप जो चीज का विचार करेंगे वो चीज किसी ने तो बनाई ही होगी ना, वो बनाने के लिए कितना अवलंबन। अब एक मोटर कार का आपने विचार किया तो कार को एक आदमी नहीं बना सकता, उसके कितने हजारों पार्ट्स होते हैं, आधे यहाँ बनते हैं, आधे चाइना में बनते हैं, आधे जापान में बनते हैं, और कोई पांचवी जगह में सब जुटते हैं और फिर जाके आपको मिलता है। एक कार मुझे चाहिए, उसका विचार भी कितने लोगों पर अवलंबित है। और ये जो अवलंबन है साहब, अब बराबर सुनना, हमारे दुख का कारण क्या है, ये जितने जितने अवलंबन है ना, वो चीज जो है सबके संस्कार लेके आती है, वो सिर्फ कार नहीं आती है, वो कार का जितना नट बोल्ट है जो मैकेनिक ने फिट किया है, वो फिट करते हुए वो उसने जो विचार किया होगा वो आ जाएगा उसके भीतर, समझ में आया। और इसीलिए कई चीज हमको सुखी कर देती है, कई चीज हमको दुखी कर देती है, वो इसीलिए पता नहीं लगता है ये सूक्ष्म। तो फिर क्या करना, अभी बचना है भाई, ये सब संस्कार लेके आती है, आप बताते हैं यहाँ डराने लगे हैं, भाई विचार मत कर, इच्छा मत करो ना, अपने आप आने दो। अपने आप आया तो किसने विचार किया आपको ले जाने के लिए, भाई प्रारब्ध कर्म आपका ही है, बराबर है, पर वो प्रारब्ध कर्म की इच्छा अगर आपने नहीं की ना कि मुझे कार चाहिए, और आपके प्रारब्ध में कार है, तो वो इच्छा परमात्मा को करनी पड़ेगी और कहीं से आपको कार लाके देनी पड़ेगी बिना इच्छा। और उसने अगर बिना आपकी बिना इच्छा उसकी इच्छा से कार लाके दे दी, तो वो सब अवलंबन के जो संस्कार है वो किसे लगेंगे, वो निर्गुण निराकार को, और निर्गुण निराकार को तो कोई संस्कार नहीं लग सकते। इसलिए वो जो अनायास जो आ गया है उसे आप बहुत आनंद से भुगत सकेंगे, यह आपका निजी अनुभव है। सोच लीजिए जो भी मांग के, जो भी वासना से आप झगड़ा करके बहुत ही कष्ट से आप खींचतान करके जो भी चीज लेते हैं, उपार्जित करते हैं, और जो अनायास मिल जाती है, हाँ ये ख्याल आया ना थोड़ा, तो ये अवलंबन की बात हुई। तो भाई अवलंबन तो लेना ही है, तो शरीर की सुखाकारी का देख लिया, मन का, बुद्धि का, तो यहाँ परमात्मा प्राप्ति के लिए भी अवलंबन की जरूरत है, क्योंकि हमारा जो साधन जो है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधन, बात बराबर है, पर साधन कैसा है, साधन अपूर्ण है। साधन अपूर्ण क्यों है, ये शरीर मन बुद्धि क्या, क्योंकि ये परमात्मा शरीर मन बुद्धि से पर है। अब ये साधन है और ये साधन से कोई उल्टा ही जो परमात्मा है उसे जानना है, इसीलिए अवलंबन चाहिए। और अवलंबन का मतलब क्या है कि जब तक काम खत्म न हो तब तक ही उसका काम रहेगा, बाद में वो अपने आप छूट जाता है। तो ये अवलंबन की विशिष्टता क्या है? तो ये तर्क की बुद्धि जो है वो बंद कर दी। नचिकेता ने प्रश्न पूछा ये अवलंबन की, देखिए यहाँ शंकराचार्य जी संबंध भाष्य पूर्ण करते हुए, द्वैत की बात की पूर्ण करते हुए एक बात की ओर इशारा कर देते हैं कि ये जो मांडुक्य उपनिषद जो है उसका पहला प्रकरण जो है उसे आगम प्रकरण कहा गया है। आगम याने श्रुति, तो ये प्रकरण जो है वो श्रुति प्रधान है। श्रुति प्रधान याने अनेकों श्रुतियों में जो कहा गया है उससे ही यहाँ कहा गया है ये श्रुति प्रधान है। तो भाई श्रुति प्रधान क्यों कहा गया? तो यहाँ ओंकार के माध्यम से आत्म तत्व के प्राप्ति की उपयोगिता का वर्णन है। फिर से कहते हैं ओंकार के माध्यम से आत्म तत्व को प्राप्त करना है, उपाय रूपता बतलाई गई है। और इसीलिए कहा कि अब मैं श्रुति के दृष्टांत श्रुति के प्रूफ्स दे रहा हूँ कि आप मान लो। और सबसे बड़ी जो श्रुति है जो ओंकार का बड़ा अच्छा गान कर रही है वो है कठोपनिषद। इसीलिए आपको नचिकेता की बात की। और ये बात क्यों की? यमराजा ने ओंकार का उपदेश कब दिया वो जानना ज्यादा जरूरी है। ओंकार का उपदेश दिया वो जानना जरूरी नहीं है, वो तो आपको मांडुक्य उपनिषद से भी पता लग जाएगा। नचिकेता ने बहुत सारे प्रलोभन दिए यमराजा ने, एक प्रश्न पूछा उसके लिए बहुत सारे प्रयोजन दिए, वो कहानी में हम ज्यादा प्रवेश नहीं करेंगे क्योंकि ये विषय छूट जाता है। पर आपको सिर्फ बता दें कि नचिकेता ने पूछा ये यम प्रेते विचिकित्सा मनुष्य अस्तित्व के नायम अस्तित्व के मरणोपरांत, ये आत्मा है या नहीं है, रहता है या नहीं रहता है, और है तो उसका क्या होता है। हाँ तो यमराजा कहे कि ये सब भोग ले लो पर ये मरणम नचिकेतो मरणम मानु प्राक्षी, ये मरण के संबंध में आत्मा के संबंध में आप कुछ मत पूछिए। कोई भी लोभ से वो आकर्षित नहीं हो, यानी कोई भी अवलंबन से आकर्षित नहीं हो। आपके जीवन में आपको अभी इसी क्षण नचिकेता बनना है ना, तो एक ही काम करना, कोई भी भोग कोई भी विषय की आसक्ति नहीं रखना। आप विचार को छोड़ दो, इसी क्षण आप नचिकेता बन गए। और जिस क्षण आप नचिकेता बनेंगे ना, कहीं ना कहीं से किसी को भी ये ओंकार का उपदेश देना पड़ेगा, आपको सुनना ही, आपके कान में प्रवेश ही करेगा। हमें क्या बनना है? हमें नचिकेता बन जाना है। ये जो क्षण आ गई परम उपरति की, परम वैराग्य की क्षण आ गई, तब यमाचार्य ने उपदेश दिया। सर्वे वेदा यत् पदं मामनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद्वदन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण ब्रवीमि। हाँ, सर्वे वेदा यत् पदं आमनन्ति, सब वेद इसी की बात कर रहे हैं, तब हमें कुछ नहीं होता, करते होंगे। ओ पर बात हमको कहाँ छू जाती है बात? यदि छंतो ब्रह्मचर्यम चरंती, ओहो देखो ब्रह्मचर्य याने मात्र शारीरिक भोग न करना, वो ब्रह्मचर्य नहीं है। ब्रह्मचर्य एट ऑल द लेवल, हाँ, आंख को रूप की इच्छा न करना, अप्रतिषिद्ध रूप की इच्छा न करना, वो ब्रह्मचर्य है। परमात्मा की मूर्ति की रूप की देखने की इच्छा कर ली तो ठीक है, वो क्लेश वृत्ति नहीं है, वो अक्लिष्ट वृत्ति है, उसकी ना नहीं है। क्योंकि फिर से तर्क आ जाएगा कि आप कैसे कहते हैं हमें गुरुजनों के चरणों की इच्छा करनी है, उसे देखना है, उसे दर्शन करना है, तो वो बात नहीं है। अप्रतिषिद्ध यानी जहाँ किसी का बुरा होने वाला हो, जहाँ मेरा ही सिर्फ स्वार्थ हो, ऐसा रूप देखने की अगर मैं इच्छा करूँ तो वो अप्रतिषिद्ध है। उसकी इच्छा न करनी वो ब्रह्मचर्य है, बुरा न सुनना वो ब्रह्मचर्य है, बुरी चीजों को स्पर्श नहीं करना, जो स्पर्श से कामोत्पन्न होता है ऐसी चीजों को स्पर्श न करना, अप्रतिषिद्ध को स्पर्श न करना, न बोलना, न सूंघना, न चखना, वो ब्रह्मचर्य है। ओहो, उसको जानने के लिए सभी भोग जिसमें क्षण मात्र आनंद तो मिलता ही है ना, भोग करने से आनंद तो मिलता ही है क्षण मात्र, तो हो ये क्षणिक क्षणिक आनंद को भी जो छोड़ने के लिए तैयार है। हाँ, तपांसी सर्वाणी चयत वदंती, सिर को भोग को ही नहीं छोड़ता, वो तप भी करता है। यम नियम आदि जो पतंजलि योग के अष्टांग योग है वो सभी नियमों को वो करता है। तपांसी सर्वाणी चयत वदंती, जिसके बारे में ही बात की जाती है, और वो पद है नचिकेता, मैं आपको कह रहा हूँ वो कौन सा पद है। ए तद देखिए, पहले ही आलंबन नहीं बता दिया, पहले आलंबन के बारे में बताया, सोच ले। तो जब शास्त्र आलंबन देते हैं तो वो आलंबन कैसा होता है, वो आलंबन हमें आसक्त करने वाला नहीं होता है। जब जीवन में व्यवहार में हम किसी का भी आलंबन रहते हैं ना, तो उससे आसक्ति हो जाती है। हाँ, और वो आलंबन देश काल से बद्ध होता है, वो आलंबन का स्वभाव हमें भी असर करता है। किसी के शरीर का आलंबन ले लिया तो भी मुक्ति नहीं होगी, क्यों, वो शरीर चला जाएगा। तो किसी के मन और बुद्धि का आलंबन तो ले लिया पर वो पागल हो जाएगा, तो हमारा काम नहीं बनेगा। तो ये आलंबन जो है, आलंबन भी है और हमें छूता भी नहीं है, हम उससे आसक्त भी नहीं होते हैं, ऐसा आलंबन है। और इसीलिए यमाचार्य ने कहा एत

सत्यतत। ओहो नचिकेता सुनिए, यह आलंबन ब्रह्म है, ये परम है, इसे जान के आपको जो करना है वो कर सकते हैं, जो इच्छा करते हैं वो आप कर सकते हैं। ये तो उसकी बहुत सामान्य बाय प्रोडक्ट बता दिया। एतत् आलंबनम श्रेष्ठम, एतत् आलंबनम परम, एतत् आलंबनम ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते। ओहो फिर बाद में बताया कि ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो उसकी साइड इफेक्ट है। ब्रह्मलोके महीयते याने वो परब्रह्म तक पहुंचाने देने वाला आलंबन है। शरीर मन बुद्धि का आलंबन अगर ले लिया जगत में, तो वो आलंबन जहां तक पहुंचा होगा वहीं तक हमें पहुंचाएगा। शरीर की सीमा अन्नमय कोष तक ही है, वहां तक ही पहुंचाएगी। मन की सीमा सिर्फ विचार तक ही है आलंबन, पर ये आलंबन जो है शरीर मन बुद्धि से पर का आलंबन है, इसीलिए हमें पर तक पहुंचाएगा। क्योंकि ये आलंबन से पहुंचना क्या है, हम आलंबन पे ही अटक जाते हैं। आलंबन से हमें हमारा स्वार्थ क्या निकालना है भाई, वो परम तक पहुंचना है। आलंबन ने परम को थोड़ा भी छुआ होगा ना, तो ही वो हमें वहां तक पहुंचा सकेगा ना। आलंबन भी ऐसा ढूंढो, किसी का सहारा, इसका उसी का सहारा लो। मैं हमेशा कहती हूँ, एक बात आपको पहले भी बताई है, उसी का सहारा लो, उसी की दोस्ती करो जो आपसे थोड़ा ज्यादा सुखी हो। वित्त से नहीं, धन से नहीं, अंदर भीतरी संतोष से, आपसे थोड़ा ज्यादा सुखी हो उससे दोस्ती करो। क्या होगा, मन का स्वभाव है, मैं जैसी हूँ, मैं जैसा हूँ ऐसा ही सामने वाले को सहन कर सकता हूँ, नहीं ज्यादा नहीं कम। अब गड़बड़ क्या होगी, मुझसे कोई दुखी होगा, थोड़ा कम सुखी होगा, उससे मैं अगर गुल मिल जाऊं तो क्या होगा, वो हमेशा मेरे सुख का लेवल उसके सुख के लेवल तक करने लगेगा, मेरा आधा काम करेगा आधा बिगाड़ेगा भी ताकि मैं उसके लेवल में आ जाऊं। और मेरे से जो शांत है, फिर बताती हूँ कि धन से कंपैरिजन मत करना, जो मन से शांत है संतुष्ट है वो तो मुख की आभा से दिख जाता है कौन संतुष्ट है और कौन नहीं है। हाँ तो उससे आप गुल मिल गए, उसके साथ दो मिनट भी खड़े रहे तो वो दो मिनट में भी आप अनुभव करेंगे कि आपका सुख का लेवल ऊंचा हो गया है। क्यों, क्योंकि हर आदमी वो भी सोचता है कि मैं जितना हूँ उतना ही उसको कर दूं तो ही मैं उसके साथ गुल मिल सकता हूँ, नहीं तो मुझे मजा नहीं आती है। तो ये जो आनंद घन है, परमात्मा को जो जिसने जान लिया है उसके साथ आप बैठेंगे उठेंगे चलेंगे फिरेंगे तो आपका आनंद का क्या होगा पता है आपको, और इसीलिए ये सानिध्य की जरूरत है। इसीलिए ऐसे ही नहीं, वो बिना कुछ देखो बिना कुछ आपके प्रयत्न किए उनके आनंद का जो लेवल है वो आपके जो सुख का लेवल है वो एक कर देते हैं, और वो एक लेवल हो जाता है तभी आप परमात्मा को जान सकते हैं। देवो भूत्वा देवम यजेत, ये सिर्फ देव के लिए ही नहीं है, ब्रह्म को

कैनाल में पानी भरता है, वो जो स्टीमर कितनी करोड़ों टन की वो जो स्टीमर होती है वो कुछ भी नहीं करती है ऊपर आने के लिए, पानी भरता है और अपने आप ऊपर आ जाती है। अब स्टीमर ने तो बहुत बड़ा सफर किया है, वहां आके वो स्टीमर अगर कहे कि मैं अपने आप ही जाऊंगी, मुझे उठा उचाने की जरूरत नहीं है, मुझे ये ज्यादा पानी के आलम्बन की जरूरत नहीं है, तो फिर तुम वहीं डूब जाओ। अरे आगे जाने के लिए आलम्बन हो ही गया, और जिसके ऊपर आप मजा से तैर के आए उसी का आलम्बन लेना पड़ता है। हाँ, जो परमात्मा अधिष्ठान है, जो परमात्मा हम सब जो विकल्प है, वो सब विकल्प का जो अधिष्ठान है, हमारा जो अधिष्ठान है उसी के ऊपर हम अब तक कर्म करते आए हैं, और अब तक अहंकार किया है कि मैंने किया मैंने भुगता। अब उसे जानने के लिए, उसे जानने के लिए नीचे होना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा, उसका आलम्बन लेना ही पड़ेगा। वो परमात्मा को जानने के लिए जो आलम्बन है, जो अपलिफ्टमेंट है, वो ये ओम है। तो ये जो आलम्बन है वो हमें आसक्त नहीं कर रहा, ये ओम का आलम्बन है। तो ये ओम याने क्या? तो ये जो उपनिषद शुरू हो रहा है, ओम इति एतत् इदगम सर्वम। तो अब शंकराचार्य जी उपाय रूपता बताते हुए कहा कि ओम इति एतद्, ऐसा आलम्बन कठोपनिषद में ही भी कहा है। एतद् वै आत्मा परम च अपरम च यदि ओंकार मैत्रेयी उपनिषद, प्रश्न उपनिषद में भी कहा है ओम इति सर्वम, ओम इति इदगम सर्वम, तैतरीय उपनिषद में भी कहा है। छांदोग्य उपनिषद में भी यह बात बताई है नचिकेता। क्या बताई है? यथा शंकुना सर्वाणि पर्णानि संतृण्णः यद् ओंकारेण सर्वा वाक् संतृण्णः ओंकार एवेदम सर्वम। ओंकार ही सब कुछ है। जैसे एक पत्ता होता है, एक पान होता है, वृक्ष का जो पर्ण होता है, वो पर्ण के भीतर जो नस चली जाती है, वो पूरा जो पर्ण जो है, वो छोटी छोटी जो नस है उससे जैसे व्याप्त हो गई है, उससे परिपूर्ण होती है, पुष्ट होती है, ऐसे ही पूरा जो ये दृश्य प्रपंच जो है, वो वाणी रूप जो ये नस जो है उससे व्याप्त है। पूरा दृश्य प्रपंच, अभी बराबर ध्यान से सुनना, पूरा दृश्य प्रपंच ये वाणी से व्याप्त है। अगर ये पर्ण में से आप नस निकाल दीजिए तो पर्ण मर जाएगा। पर्ण का रस क्या है? पर्ण की पुष्टि क्या है? पर्ण का जीवन क्या है? तो ये नस है। ऐसे ही ये सब जो पूरा दृश्य प्रपंच जो है उसका जो पुष्टि जो है, उसका रस क्या है? तो उसका जो रस है वो वाणी है, और ये वाणी जो है उसका अधिष्ठान कौन है? तो बोले वो ओम है, इसलिए हम ओम को ज्यादा महत्व दे रहे हैं। तो ये ओम जो है मेरे जीवन में कहाँ छू रहा है? तो यहाँ अब भाष्य शंकराचार्य जी आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि जैसे अब दृष्टांत से बात चलती है, एक बाजू दृष्टांत चलता है, एक बाजू वही दृष्टांत हमारे जीवन में चलता जाएगा, अब शुरू होता है। देखिए रज्जू और सर्प का दृष्टांत है। अब जब हम यहाँ से रज्जू और सर्प ऐसा बोलते हैं ना, हमारा ये स्विच ऑफ कर देते हैं हम, कि अब ये बात ऐसी करते हैं ये लोग कि जो हमारे विचार में आने ही नहीं वाली है, अब थोड़ा 5 मिनट सहन कर लेंगे और उसके बाद जो बोलेंगे वो सुनेंगे। पर ये रज्जू पर यहाँ शंकराचार्य जी ने कोई अलौकिक बात की है। अब ये रज्जू और सर्प की बात अब तक हम सृष्टि के विवर्त कारण के लिए कहते हैं ना, अब यो हमारे लिए कहते हैं, अब सुनने में थोड़ा आनंद आएगा। तो ये रज्जू के ऊपर सर्प जो उठ रहा है, सर्प का जो जन्म है वो क्या है? उसे हम विकल्प कहते हैं, भ्रांति कहते हैं। तो रज्जू रूपी विकल्प, विकल्प यानी विशेष कल्पना की गई है। विशेष कल्पना क्यों की गई है? क्योंकि है नहीं और दिख रही है। विशेष कल्पना क्यों? क्योंकि जितना अधिष्ठान है, अधिष्ठान का जो रूप है वैसा का वैसा ही रूप ये भ्रांति का भी है। हाँ, तो ये विशेष कल्पना हो गई। ऐसे ही आत्मा रूपी अधिष्ठान पर, आत्मा कैसा है? अदृश्य, अग्राह्य, अगोत्रम, ऐसा आप सोच लो। आत्मा रूपी ये पूरा जो है, आत्मा रूपी जो अधिष्ठान है उसके ऊपर विकल्प रूप कौन है पता है? अब हम आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ शंकराचार्य जी ने बताया कि प्राणादि विकल्प जो उठ रहे हैं, ओहो अब हमारी बात की है। ये उपनिषद में पहली बार ये भाष्य में ये बात की गई है कि आत्मा रूपी अधिष्ठान में

प्राणादि विकल्प जो उठ रहे हैं, प्राणादि विकल्प यानी ये आपका जो अन्नमय कोष है, ये आपका प्राणमय कोष है, ये आपका मनोमय कोष है, विज्ञानमय कोष है, आनंदमय कोष है, वो क्या है? वो विकल्प है। बस अब तक हम इसको क्या देख रहे थे? प्राइमरी देख रहे थे, फर्स्ट देख रहे थे कि भाई शरीर मन बुद्धि का संघात, और अभी उससे पर आत्मा को जानना है। नहीं, अभी इसको दूसरा नंबर दे दिया, इसको विकल्प का नंबर दे दिया कि आत्मा रूप अधिष्ठान में जैसे रज्जु विकल्प रूप दिखता है, तब सर्प विकल्प रूप दिखता है, तब रज्जु के दर्शन नहीं हो रहे, दर्शन किसके हो रहे हैं? दर्शन विकल्प के ही हो रहे हैं। ऐसे आपको ये शरीर मन बुद्धि का जो संघात दिख रहा है, जो दर्शनीय है, जिसके दर्शन हो रहे हैं, वो विकल्प है। और ये जो प्राणादि विकल्प है, ये जिस वाणी से कहा जाता है वो ओमकार है, और ये जो ओमकार है वो ब्रह्म है। अब ऐके देखिए, एक दृष्टांत की बात अब बता के, दृष्टांत यानी जो अपनी बात है वो मैं कल बताऊंगी समय के अभाव से, पर दृष्टांत की जो बात है वो खाली दो मिनट के लिए ही सुन लेंगे कि जब ये रज्जु है, रज्जु के ऊपर सर्प की विकल्पना हुई, अब मैं क्या कहती हूँ कि ये सर्प है, मैंने वाणी का उपयोग किया कि नहीं? ये सर्प है, मैं हकीकत में क्या कह रहे हूँ? ये सर्प है यानी मैं किसका वर्णन कर रही हूँ? हकीकत में किसका वर्णन कर रही हूँ, बराबर बताइए। हाँ, अधिष्ठान का ही ना, रज्जु का ही वर्णन है। ये सर्प है, मेरा अज्ञान है उसके बारे में, पर वर्णन किस, वर्णित कौन हो रहा है? वर्णित तो रज्जु ही हो रहा है ना। तो मैं जब कहती हूँ कि ये सर्प है, यानी मैं रज्जु का ही वर्णन कर रही हूँ, मैं जब मेरे मुख से कह रही हूँ कि ये सर्प है, हकीकत में जो रज्जु है उसकी बात जब मैं कर रही हूँ, मैं उसे अपना शब्द का स्वरूप दे रही हूँ, तो वो ज्ञान जब मेरे भीतर रज्जु का जाता है शब्द के द्वारा, तो वो जो शब्द है रज्जु शब्द, शंकराचार्य जी ने इतनी अच्छी बात की है कि रज्जु शब्द रज्जु से कितना दूर है, मुझे इतना बता दीजिए। हाँ, रज्जु शब्द रज्जु से कितना दूर है? एक क्षण का भी नहीं ना। बस ऐसे ही ये जो आत्म तत्व पूरा अधिष्ठान है, ओंकार रूप वाणी से मैं जब कह रही हूँ कि ये अन्नमय कोष है, ये प्राणमय कोष है, ये मनोमय कोष है, तो मैं किसकी बात कर रही हूँ? अधिष्ठान की ही बात कर रही हूँ। तो ये जब मैं बोल रही हूँ, ये वाणी जो शब्द रूप अ ब क निकल रही है, ये जो वाणी है वो ये अधिष्ठान से कितनी दूर है? जितना रज्जु रज्जु शब्द से दूर है। यानी ये वहाँ रज्जु और रज्जु शब्द का ऐक्य किया, वैसे ही ये आत्मारूपी जो अधिष्ठान है उसके ऊपर विकल्पना को वर्णित जो वाणी है, वो वाणी को ओम कहा है, और वो वाणी क्या ऐक्य, वो ओम का ऐक्य, वो आत्मा से करने की बात, यानी ये मांडुक्य उपनिषद। और वो कैसे ऐक्य करना है, भाष्य की ही, शंकराचार्य की ही भाषा से हम ये कल सुनने का और ज्यादा सरलीकरण करने का हम प्रयत्न करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते।

0: हरि ओम
1: हरि ओम। पूज्य माता जी के चरणों में प्रणाम। आज 22 फरवरी शुक्रवार महावली एकम।
2: ओम नमः शिवाय। यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियोस 24/7 स्पिरिचुअल चैनल्स फ्रॉम शैवम.org। ओम नमः शिवाय।

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
2: निर्वाण षट्कम्।

ओम नमः शिवाय। डियर लिसनर्स ऑफ शैवम.org, नाउ वी आर लिसनिंग टू केदीचनाद सुप्रभातम, प्रेजेंटेड बाय श्री गायत्री वेंकटराघवन। थैंक यू। ओम नमः शिवाय।

चतुर्विपुंसतिश्च चतुर्विपुंसतिर्मे मे चतुर्विपुंसतिश्च चतुर्विपुंसतिश्च चतुर्विपुंसतिश्च चतुर्विपुंसतिश्च मे मे चतुर्विपुंसतिश्च।

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम डॉट ऑर्ग रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम डॉट ऑर्ग।
0: ओम नमः शिवाय।

महस्तोममूर्ते समस्तैकबन्धो नमस्ते नमस्ते पुनस्ते नमोस्तु विरूपाक्ष विश्वेश विश्वादिदेव त्रयीमूलशम्भो शिवत्र्यम्बकत्वम् प्रसीद स्मरत्राहि पश्यावमुक्त्यै क्षमां प्राप्नुहि त्र्यक्षमाम्।

0: ओम नमः शिवाय। डियर लिसनर्स ऑफ shivam.org, द नेक्स्ट प्रोग्राम इज हिंदी स्पिरिचुअल डिस्कोर्स। इन दिस यू आर अबाउट टू लिसन नायनमार पुराणम। द टाइटल इज सत्ति नायनार पुराणम, प्रेजेंटेड बाय श्री सिंगापुर शंकर नारायणन। थैंक यू। ओम नमः शिवाय।
1: ओम नमः शिवाय। भक्तों, अभी हम और एक दक्षिण भारतीय संत या शिव भक्त नायनमार की कहानी सुनेंगे, जिनका नाम शक्तियार या सत्तियार है। कावेरी नदी द्वारा संचित तमिलनाडु के बरिंचयूर में एक कृषक परिवार में सत्तियार का जन्म हुआ। इनकी भक्ति कट्टरता का भाव लिए हुए थी। यदि कोई व्यक्ति शिव भक्तों के प्रति अपशब्द कह देता तो शक्तियार चिमटे के समान दंडा युधम से पकड़कर उसकी जीवा काट डालते थे। उनकी ऐसी असामान्य और विचित्र सेवा विधि आधुनिक युग में एक आश्चर्यजनक पौराणिक गाथा के रूप में ग्रहण किया जाता है। एक धर्म के मानने वालों द्वारा दूसरे धर्म की खिल्ली उड़ाना एक पुरानी प्रथा है। तमिल महाकाव्य मणिमेखले और नाटक मुक्त विलास में इसके प्रचुर संकेत मिलते हैं। स्वधर्म में विश्वास प्रशंसनीय है, पर इस विश्वास की भी मर्यादा है। सभी धर्म अतः एक ही ज्योति, एक ही सत्य स्वरूप ईश्वर की ओर जाने के भिन्न भिन्न मार्ग हैं। जब विश्वास अपनी सीमा लांघ जाता है तो दुख और अनिष्ट का कारण बनता है। धर्म आसक्ति और धर्माधता अलग अलग हैं। शक्तियार धर्मार्थ भक्तों की श्रेणी में है। अपने धर्म से भिन्न धर्म पर आस्था रखने वाले को कष्ट देना अथवा उसके प्राण हरण करना मानवीय और ईश्वरीय दृष्टि से अक्षम्य है। इनकी क्षमा नहीं होती। इनके बीच युगों से कई रूप में संघर्ष रहा है और हम सब जानते हैं कि धर्म के नाम पर अत्याचार और अनाचार सामाजिक जीवन का एक विष है। शिव धर्मालंबी शक्तियार शिव अथवा उनके भक्तों के प्रति अपशब्द कहने वालों की जबान खींच कर काट दिया करते थे। केरी पत्थर भी कुछ

0: इसीलिए क्षत्रिया जिस युग में थे उस युग में अन्य धर्म वाले जब शिव भक्तों की खिल्ली उड़ाते थे तो क्षत्रिया उनकी जिह्वा काट डालते थे। ये एक कट्टर वाले शिव भक्त थे। ओम नमः शिवाय।
1: ओम नमः शिवाय। डियर लिसनर्स ऑफ shaivam.org, द नेक्स्ट प्रोग्राम इज स्पिरिचुअल डिस्कोर्स। इन दिस यू आर अबाउट टू लिसन शिवानंद लहरी इन हिंदी, presented by Mahamandaleshwar Swami Sri Atmananda Giriji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
2: खिलौने की चेष्टा खिलौने के ही सुख दुख के लिए नहीं है। खिलौने की चेष्टा खिलाड़ियों के सुख दुख के लिए है। दूसरी बात, खिलौने की चेष्टा खिलौना अपने संकल्प से चेष्टा नहीं करता। खिलौना जो चेष्टा करता है खिलाड़ी के संकल्प से चेष्टित होता है। तुम यदि शतरंज के खिलौने की भूमिका में हो, चेष्टा तुम्हारी रहेगी कि परमात्मा की रहेगी? बोलो, तुम परमात्मा हो कि खिलौने हो? बस खत्म हो गई बात, हो गई खत्म बात। तुम खिलौने हो तो बात खत्म हो गई बात, फिर कोई समस्या? जाहि विधि राखे राम, ये भाव है। ये तुम दुराग्रह क्यों करते हो कि ऐसा ही होना चाहिए? समर्पण की भावना भक्ति में आनी चाहिए, और जब तक भक्त में समर्पण की भावना नहीं होगी तब तक भक्त सुखी नहीं हो सकता है। और वास्तव में भक्त कभी दुखी होगा भी नहीं। भक्त और अभक्त में यही तो अंतर है। भक्त कभी दुखी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? भक्त अपने को खिलौने की भूमिका में प्रस्तुत करता है और भगवान को खिलाड़ी के रूप में प्रस्तुत करता है। महाराज, तुम जैसे खेलना हो खेलो, जैसे खेलना हो खेलो। मुझे ऊंट बनाकर तुमको खेलनी है, ऊंट बना दो, हम ऊंट ही बनकर खेलेंगे। मुझे हाथी बनाकर तुमको खेलनी हो तो हाथी बनाकर खेलो, हम हाथी बनेंगे। हमारा कोई दुराग्रह नहीं है। जैसे लकड़ी का कोई दुराग्रह नहीं रहता है कि मुझे ऊंट ही बनाओ, मुझे सिपाही मत बनाओ, मुझे राजा ही बनाओ, सिपाही न बनाओ। लकड़ी का ही पूर्वाग्रह रहता है। खिलौना बनाने वाला खिलाड़ी उसी लकड़ी में से किसी टुकड़े को राजा बना देगा और किसी टुकड़े को हाथी बना देगा, किसी टुकड़े को ऊंट बना देगा, किसी टुकड़े को सेना बनाएगा, किसी टुकड़े को वजीर बनाएगा। उन लकड़ी के टुकड़ों का पूर्वाग्रह रहता है, मुझे यही बनाओ। वो ये कहते हैं कि तुमको जो बनाना है बनाओ, जो बनाकर खेलना है बनाओ, खेलो। हाथी बनाओ तो हाथी बन जाएंगे, ऊंट बनाओ ऊंट बन जाएंगे, राजा बनाओ राजा बन जाएंगे, प्रजा बनाओ प्रजा बन जाएंगे, सिपाही बनाओ सिपाही बनाओ बन जाएंगे, मंत्री बनाओ मंत्री बन जाएंगे। तुमको जो बनाकर खेलना है सो बनाओ और खूब खेलो, हमें नो ऑब्जेक्शन, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हाँ, दिन भर सिंहासन में बिठा दो तो बैठ जाएंगे राजा बनाकर। हैं, राजा बनाकर दिन भर सिंहासन में बिठाओगे तो हम सिंहासन में बैठे रहेंगे। सिपाही बनाकर बंदूक लटकाकर दरवाजे में खड़ा करना हो तो खड़ा कर दो, हम वहीं खड़े हो जाएंगे। यदि मैं दरवाजे में खड़े होकर दिन भर चौकीदारी पहरेदारी करूं बंदूक बोककर लेकर, इससे तुम प्रसन्न होते हो तो हमको तो कुछ करना ही नहीं।

वहां खड़ा कर दिया, हम खड़े हो गए। तुमने सिंहासन में बिठा दिया हमको, उससे तुम खुशी होते हो, प्रसन्न होते हो तो हम वहीं बैठे रहेंगे। और तुम यदि खुशी होने के लिए, प्रसन्न होने के लिए मुझे सिंहासन से उतार कर बंदूक लटकाकर चौकीदारी बना दिया गेट में और किसी और को सिंहासन में रखकर तुम खुश होते हो तो वही करो महाराज, हमको तो कोई आपत्ति नहीं है, हमें कोई आपत्ति नहीं, तुम खिलाड़ी हम खिलौने, बस इतना हम जानते हैं। और आपने हमको बनाया ही खिलौने के रूप में खेलने के लिए, मेरा और कोई प्रयोजन नहीं है, मैं खिलाड़ी खिलौना हूं, खिलौना का और कोई प्रयोजन नहीं होता, खिलाड़ी जैसे खेले वैसे परिचालन होने बायक खिलौनों का और कोई स्वतंत्र परिचालन अपनी इच्छा से नहीं होता। समर्पण है भैया, हाँ ये भाव यहां व्यक्त कर रहे हैं। क्रीडार्थम सृजसि प्रपंचमखिलम्, क्रीडा मृगास्ते जना यत्कर्मा चरितं मया च भवत प्रीत्यै भवत्येव तत्। मैं जो कुछ चेष्टा करूं तुम्हारी प्रसन्नता के लिए ही हो, क्योंकि संभो, यह संबोधन है फिर, हे संभो, संभो स्वस्य कुतूहलस्य करणम्। मैं तो क्या हूं, करण हूं, साधन हूं, करण माने साधन, करण का अर्थ क्या होता है, साधन। संभो स्वस्य कुतूहलस्य करणम्, आपकी प्रसन्नता का मैं साधन हूं, मैं तो एक खिलौना हूं, एक साधन हूं। कुतूहलस्य करणम्, संभो स्वस्य कुतूहलस्य करणम्, मच्चेष्टितम् निश्चितम्। इसीलिए मैं करण हूं, साधन हूं, इसलिए मेरी जो चेष्टा है, मच्चेष्टितम्, मेरी जो चेष्टा है, मेरी जो क्रिया है, वह निश्चितम्। केना, किसके द्वारा निश्चितम्, त्वया निश्चितम्, ये त्वया निश्चितम्। मैं कुतूहल का साधन हूं, मेरी जो चेष्टा है वह तुम्हारे द्वारा निश्चित है, मेरी अपनी निश्चय से मेरी चेष्टा नहीं है, तुम्हारे निश्चय से मेरी चेष्टा है। त्वया निश्चितम मया चेष्टितम, बस तुम्हें क्या कहनी है बोलो, तुम्हें क्या कहना है, हैं? त्वया निश्चितम मया चेष्टितम, पहले तुमने फिक्स किया, मैंने वैसा ही किया, तुमने जैसा करवाया मैंने वैसा ही किया। आप कभी सुबह जल्दी उठना हो तो रात को अलार्म लगाते हो, है ना? जितने बजे उठना होता है उसी हिसाब से आप अलार्म फिक्स करते हो, मोबाइल में अलार्म फिक्स किया टाइम में और आप सो गए। और जिस टाइम के लिए आपने अलार्म फिक्स किया था, निश्चितम त्वया निश्चितम, और ठीक उसी टाइम में अलार्म घंटी बज जाएगा जोर जोर से, अब तुम अलार्म को दो थप्पड़ लगाओ, मैं गहरी नींद में सोया था तू हल्ला करता है, अलार्म क्या जवाब देगा बोलो? त्वया यत निश्चितम तत मया चेष्टितम, बस खत्म,
मोबाइल तुमको वही जवाब देगा ना, तुमने जो फिक्स किया था मैंने वही किया, मैंने क्या गलती की, मेरी क्या गलती है, मेरी तो कुछ भी गलती नहीं है। यदि मैं अपनी मर्जी से क्रिया करता, यदि मैं अपनी मर्जी से चेष्टा करता, तब तो तुम मुझे दोष लगा सकते थे। तो मैं अपनी मर्जी से तो कर नहीं रहा हूं, क्योंकि मैं तो खिलौना हूं, मैं तो कारण हूं, साधन हूं। मोबाइल क्या है, तुम्हें जल्दी उठने का साधन है कि नहीं, बोलो। मोबाइल तुम्हें जल्दी उठना है तो जल्दी उठने का साधन है मोबाइल, और तुमने उसको संकेत किया कि इतनी बजे बजना, निश्चितम फिक्स किया है, तो साधन होने के कारण उसने ठीक जितनी बजे तुमने फिक्स किया निश्चितम उतनी बजे वो हल्ला कर दिया उसने, तुम अब उसको शाबाश दो, शाबाशी दो कि गाली दो, क्या करना चाहते हो, शाबाशी देना चाहते हो कि गाली करने देना चाहते हो। शाबाशी है कि उसने ठीक टाइम पर उठा दिया, अब बुरा यह है कि वो निद्रा भंग हो गई, यह अनुकूल और प्रतिकूल तो व्यक्ति अपनी कल्पना करता है। दूसरी बात है कि तुम अपनी तरफ पूरी तरह खिलौना हो तो तुम्हारे लिए अनुकूल प्रतिकूल की कोई परिभाषा बनी ही नहीं सकती है। खिलौना अपने को यदि खिलौना मानता है, खिलौने की भूमिका में रहता है, तो खिलौने की ये च्वाइस नहीं होनी चाहिए कि मुझे इस तरह खेलो, इस तरह खेलो तो मैं खिलौना बनूंगा, मेरे कहे अनुसार तुम खेलो तो मैं खिलौना बनूंगा, मेरे कहे अनुसार नहीं खेलते हो तो मेरी इच्छा के विपरीत खेलते हो तो मैं तुम्हारा खिलौना नहीं बनूंगा, तो खिलौना ऐसा पूर्वाग्रह नहीं कर सकता। जैसे खेलना हो खेलो, खिलौने का मतलब क्या, अरे भाई शादी किया था उस समय खुश हुए थे, अब वियोग में तुम दुखी हो जाओ, वो उसी तरह खिला रहा है तो क्रोध हो दुखी हो जाओ, ये महाराज त्वया चेष्टितम, ये तो तुम्हारा फिक्स किया हुआ है महाराज, किसके साथ शादी होना है ये तुमने फिक्स किया था, तुमने फिक्स किया था उससे साथ शादी हो गई, मेरी कोई च्वाइस नहीं थी, मेरे कोई संकल्प नहीं था, और तुमने कह दिया कि अब तुम अलग हो जाओ, तो तुम्हारी संकल्प है तो अलग हो जाते हैं, हमको कोई अर्ज नहीं है। त्वया चेष्टितम, त्वया निश्चितम, मया चेष्टितम तत् त्वया निश्चितम, मैं जो कुछ भी चेष्टा करता हूं ये भगवान मैं तो खिलौना हूं, और त्वया निश्चितम तुम्हारा निश्चय किया हुआ ही मैं चेष्टा करता हूं। तुमने निश्चय कर दिया था महाराज प्रेमपुरी आश्रम में जा, शिवानंद हरि सुन, तुमने निश्चय किया था महाराज मैं वैसे ही किया। शिवानंद लहरी खत्म होने के बाद तुम निश्चय करते हो महाराज सब्जी भी खरीद के जा, तो महाराज ग्रांड रोड भी चला जाऊंगा, नहीं नहीं जल्दी आ जा, महाराज ठीक है जल्दी आ जाते हैं, तो या निश्चितम मया चेष्टितम, इतना वाक्य तुम याद करो भाई जीवन भर शिव जी के सामने खड़े होकर यही कहो। क्रीडार्थम सृजति प्रपंचमखिलम, क्रीडा मृगास्ते जना यत्कर्मा चरितम मया च भवत प्रीत्यै भवति वतत। छोटे बच्चे के सामने बाप खिलौना बनता है, बच्चा कहता है कि पापा तुम घोड़े बन जाओ, टिक टिक घोड़ी चल मेरी घोड़ी, टिक टिक घोड़ी चल मेरी घोड़ी,
बच्चा पीठ में चढ़ता है, बाप को घोड़ी बनाता है, इधर चल बाप उधर ही चलता है, उधर चल बाप उधर ही चलता है। बाप ये नहीं कहता कि मैं तेरा बाप हूं, घोड़ा नहीं हूं। क्यों ऐसा करता है बाप, बोलो। तू खुश हो जा बेटा, बस तू प्रसन्न हो जा। घोड़ा बनकर तू प्रसन्न होता तो हम घोड़े भी बन जाएंगे बेटा। जिधर जाकर प्रसन्न होता है उधर ही जाएंगे। बाप की घोड़ा बनकर चेष्टा करना बच्चे की प्रसन्नता के लिए है। इसी तरह तमाम जीव की चेष्टा करके, कोई मां बन रही है, कोई बाप बन रहा है, कोई पत्नी बन रही है, कोई पति बन रहा है, कोई भाई बन रहा है, कोई बंधु बन रहा है, कोई बहन बन रही है, कोई नौकर बन रहा है, कोई मालिक बन रहा है, कोई ड्राइवर बन रहा है, कोई स्वामी बन रहा है, ये सारी की सारी चेष्टाएं उसी की प्रसन्नता के लिए महाराज, तुम्हारी प्रसन्नता के लिए। बस तुम जो बनाओ वो बनने को तैयार है। राजा बनाओ तो ठाट से बैठकर खाएंगे मालपुआ हलवा, शुगर होगा तो क्या करोगे, नहीं खाएंगे। तुमने कहा शुगर हो गया अब ना खा, नहीं खाएंगे। शुगर नहीं है खूब खा तो खूब खाएंगे। तुम कहोगे कि नहीं महाराज अब तो भीख मांग के देख, बोले हम भीख मांगेंगे भिखारी बनेंगे, तुम खुश हो जाओगे, बोले हां जरा देख तो सही भीख मांग। अरे भीख मांगना कोई असंभव काम नहीं है बेटा, भीख तो मैंने भी मांगी थी, तू भी एक बार भीख मांग के देख। तो भिक्षाम देही कृपा वलंबन करी माता अन्नपूर्णेश्वरी। बेटा हाथ में खप्पर लेकर तो मैं भी भटका था दर दर, और एक माता को देखा तो हमने कहा मां कृपा करके जल्दी से भिक्षा दो, और वह अन्नपूर्णा ने जब लाकर मेरे खप्पर में भिक्षा डाली, बड़ा प्रसन्न होकर मैंने उस भिक्षा को खाई है। अरे भीख मांगना तो काम तो हमने भी किया था, जब मैं खुद भिखारी बनकर भीख मांग सकता हूं तो भी तो जरा देख ले भीख मांग कर। तुम क्यों दुखी होते हो भाई, हैं? तुम क्यों दुखी हो? मेरे शिव ने, मेरे परमात्मा ने मुझे इस योग्य समझा, मुझे इस काम में लगाया है, प्रसन्नता से मांगो भिक्षा, जो भिक्षा मिलती है वो लाओ, भगवान के सामने धरो। परमात्मा तुमने भीख मांगने पर भेजा था, ये लेके आए हैं, देख ले क्या क्या आया है। तुमको खानी हो तो पहले तू खा, प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, ब्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, पंच प्राणेभ्य स्वाहा, तुमको खाओ। खा लिया महाराज, बोले शिव जी कहेंगे खा ले, बस अब मैं खाऊं, बोले खा, खा लिया हो गया। वो भी देख लो घर की गर्म रोटी भी खा ली कि नहीं, है महाराज के पकाया हुआ, नौकर का पकाया हुआ, रसोईया के पकाया हुआ, गरम गरम भी तो खा ली ना। अब जरा तीन दिन के बाद से भी तो मांग कर खा के देख लो कैसा मजा आता है। शिव जी को मजा आ सकता है तो तुमको नहीं आ सकता है मूर्खो, हैं? बूढ़े बैल के ऊपर जब चढ़ के चल सकते हैं शिव जी तो तुम नहीं चल सकते हो दो कदम, और तुमको ही होंडा सिटी चाहिए बंबई में, बोलो। भगवान शिव कैलाश में बैठकर नंगे पांव, कल बताया ना भगवान शंकराचार्य जी ने, महाराज नंगे नंगे पांव पहाड़ों में घूमते हो, तुम्हारे पांव में जूता नहीं है, मेरे पास एक जूता है, है? वो जूता पहनकर चला करो महाराज, कल नहीं बताया था मेरा चित्त रूपी जो जूता है, चेत पादुका, ये
मेरा चित्तरूपी जूता पहनकर चला करो। वो जब पहाड़ों में घूम सकते हैं तो तुम नहीं घूम सकते हो, वो नंगे पांव घूम सकते हैं तो तुम नंगे घूमो। हाँ, वो जंगलों में रह सकते हैं तो तुम नहीं रह, तुमको बंबई में ही रहना है। जाई विधि राखे राम ताई विधि रहेंगे। तुम खिलौना भी हो और मालिक भी बनना चाहते हो। मालिक ने तुम्हें खिलौना बनाया और तुम अपने आप को मालिक बनना चाहते हो। अब भगवान को कहते हो कि भाई महाराज रसोईया नहीं है, एक नया रसोईया खोज कर ला दो। तेरी मूर्ख, रसोईया नहीं है, तू ही रसोईया बन जा ना। मुझे रसोईया बनाने के लिए भगवान ने रसोईया को भगाया है, जरा रसोईया बनकर देखूं तो सही, रसोईया खुद बन जाओ है? अरे ईश्वर जैसे रखे वैसे रहो। क्रीडार्थम सृजसी प्रपंचम अखिलम, यह श्लोक इतना महत्वपूर्ण है, मुझे बड़ा आनंद आता है, बड़ा आनंद आता है। हाँ, गुनगुनाता हूं मैं है? क्रीडार्थम सृजसी प्रपंचम अखिलम, क्रीडा मृगास्ते जना यत्कर्मा चरितम मया च भवत प्रीत्यै भवत्येव तत् शंभो स्वस्य कुतूहलस्य करणम् मच्चेष्टितम् निश्चितम् तस्मान् मामकरक्षणम् पशुपते कर्तव्यमेव त्वया। अंतिम लाइन बड़ा मार्मिक है। हाँ, ये अंतिम लाइन बहुत मार्मिक है। तस्मान् मामक रक्षणम् पशुपति, हे पशुपति मैं तुम्हारे खेल के लिए खिलौना हूं, मेरी रक्षा तुम करते रहोगे तो जब तक मैं सुरक्षित रहूंगा तुमको खेलने का भरपूर आनंद आएगा। मैं ही तुम खेलते खेलते मैं ही टूट गया तो फिर खेल में मजा बिगड़ जाएगा कि नहीं बोलो है? खेलते खेलते खेल के साधन यदि टूट जाएंगे तो खेल में मजा बिगड़ेगा कि नहीं है? दूसरा खिलौना खोज के लाना पड़ेगा। जब तक खिलौना ठीक फिट सही खिलौना नहीं मिलेगा खेल में मजा नहीं आएगा। और आपने मुझे सही खिलौना मानकर ही इस भूमिका में रखा है, स्त्री की भूमिका में मुझे फिट समझा इसलिए आपने स्त्री बनाकर मुझे उस भूमिका में रखा है। और यदि आपने सावधानी नहीं रखी और मेरी रक्षा आपने नहीं की और खेलते खेलते मैं टूट गया या नष्ट हो गया, मैं खत्म हो गया, तुम्हारे बीच में मजा खत्म हो जाएगा, फिर किसी और को स्त्री की भूमिका में लाना पड़ेगा तभी खेल में मजा आएगा। पुरुष की भूमिका में मुझे योग्यता समझी इसलिए मुझे पुरुष के रूप में अपने खड़ा किया बिठाया उसके भूमिका में, और मैं वहीं फिट हूं, मैं खेल रहा हूं, लेकिन रक्षा तुम करना महाराज। यदि खेलते खेलते मैं टूट गया पर तुम्हारे खेल में मजा आ जाए, खत्म बिगड़ जाएगा, किरकिरा लग जाएगा, तो फिर दूसरा खोजना पड़ेगा, तीसरा खोजना पड़ेगा। इसीलिए रक्षा करते हुए खेलना, खिलौने की रक्षा खिलाड़ी अपनी खिलौने की रक्षा जितना रखेगा, ख्याल जितना रखेगा, वो खिलौने उस खिलाड़ी को उतना ही आनंद देता रहेगा। बच्चों को देखा है कि नहीं, बाप छोटी सी प्लास्टिक की गाड़ी लाकर देता है, अपने आप करोड़ों की गाड़ी में चढ़ता है, बच्चों को 50 रुपया की प्लास्टिक की गाड़ी लाकर दे देता है, लो, और अपनी गाड़ी सड़कों में दौड़ती है और उसकी गाड़ी कमरे के अंदर दौड़ती है ना? ठीक है बेटा, वो बेटा उसी से प्रसन्न है, खेल रहा है,
कमरे में इधर से उधर दौड़ाता है, उधर से उधर दौड़ाता है, उधर से उधर दौड़ाता है। खेलते खेलते जब खिलौना टूट जाता है, गाड़ी टूट जाती है, तो बच्चा बाप से जाकर कहता है कि पापा मेरी गाड़ी टूट गई, रोने लगता है, टूट गई गाड़ी। बाप कहता है कि क्यों टूटी, सावधानी से खेलना चाहिए था, ध्यान से खेलना चाहिए था। बाप डांटता है कि नहीं है। अब बेटा क्या कहता है, मुझे दूसरी गाड़ी ला दो। बाप जब तक दूसरी गाड़ी नहीं लाएगा, खेलने का मजा उस बच्चे का गया कि नहीं है। इसीलिए भगवान से कह रहे, महाराज टूटे नहीं भाई ये खिलौना, ये खिलौना बीच में टूटे नहीं, क्योंकि इससे आपको ही आनंद आता है, आपने खेल के आनंद लेने के लिए बनाया है, हम उसके योग्य हैं, हम जैसे खिला रहे हो ऐसे खिल रहे हैं, हमारे आनंद के लिए हम नहीं चल रहे हैं, तुम्हारी आनंद के लिए हम चल रहे हैं, लेकिन इस खिलौने की रक्षा करने की जिम्मेवारी आपकी है। बस आप जितनी सुरक्षा करोगे उतना ही आपको उतने आनंद आएगा। क्या सुंदर भाव है। क्रीडार्थम सृजति प्रपंचमखिलम, क्रीडा मृगास्ते जना यत्कर्माचरितं मया च भवत प्रीत्यै भवति वतत शंभो स्वस्य कुतूहलस्य करणम्। स्वस्य माने शिव, शंभु के तुम्हारे, मैं तुम्हारे कुतूहल यानी प्रसन्नता का करण हूं, साधन हूं। मच्चेष्टितम निश्चितम, मेरी जो चेष्टा है वो तुम्हारे द्वारा निश्चित चेष्टा है। हाँ, तुमको जो इच्छा लगा वही आपने चेष्टा निश्चित की, उसी निश्चय अनुसार मैंने चेष्टा की है। रोटी बनाते बनाते रोटी बिगड़ गई तो वो तो तुम्हारी फिक्स किया हुआ चेष्टा है, मुझे क्या पता कैसे ठीक बनती है कैसे बिगड़ती है। तुमको अच्छा बनाना था तो फिर तुमको अच्छी बुद्धि देनी थी। तुमने जैसी बुद्धि दी वैसे हमने बना दी। अब तुम कहोगे कि रसोई अच्छी नहीं बनी, अरे तुम्हारा दिया हुआ बुद्धि से हमने तुम्हारे लिए रसोई बनाया है। मैं अपनी बुद्धि से बनाया होता तो अब ना तुम मुझे डांटते कि तो अच्छी नहीं बनाई है, तुम्हारी दी हुई बुद्धि है तुम्हारे लिए रसोई बना रहे हैं। अब जैसे बनी तुम्हारी बुद्धि से जैसे बनी खाओ वैसे, तो अच्छी खानी हो तो फिर अच्छी बुद्धि दो, कल हम अच्छा बना देंगे। महाराज उन्हीं को जवाब दो, हा? ये हुआ और वो हुआ मत बोलो, अच्छे बुद्धि दो तो अच्छा काम करेंगे। तुम्ही तस्मान माम करक्षणम पशुपते कर्तव्यमेव त्वया, तुम्हारे द्वारा ही मेरी रक्षा होनी चाहिए, मैं अपनी रक्षा खुद अपने आप नहीं करूंगा। बस इस समर्पण है भक्तों की, यह आत्मनिवेदन है, यही समर्पण है। इसी में भक्त सुखी रहेगा, इसी में भक्त आनंदित रहेगा। चलो ये 10 दिन का ये व्याख्यान विशेष संत प्रवचन आज पूरा हो गया है। यूं तो पेपर के अनुसार कल तक था, 28 तक था, तो कल एक विशेष कार्यक्रम आने के कारण एक दिन पहले ही ये विश्राम दे रहे हैं, और आगे के जो श्लोक हैं वो फिर अगले साल है ना चिमन भाई। हाँ, ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं।

0: अग्निने व्योमवद् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।
1: ओम नमः शिवाय। यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियोस 24/7 स्पिरिचुअल चैनल्स फ्रॉम शैवम.org। ओम नमः शिवाय।
2: ओम नमः शिवाय। डियर लिसनर्स ऑफ शैवम.org, द नेक्स्ट प्रोग्राम इज स्पिरिचुअल डिस्कोर्स। इन दिस यू आर अबाउट टू लिसन शिव महिमा प्रेजेंटेड बाय स्वामी संतोषी माताजी। थैंक यू। ओम नमः शिवाय।
3: मेरे आदि अंत का पता करके जल्दी मेरे पास लौट करके आएगा वो ही महान होगा। ब्रह्मा जी रजोगुणी थे। रजोगुण अहम का प्रतीक होता है और ब्रह्मा जी ने सोचा कि हम तो ऊपर की तरफ सिर की तरफ जाएंगे और पता लेकर के आएंगे। ब्रह्मा जी ने अपनी यात्रा ऊपर की ओर आरंभ कर दी और भगवान श्री हरि विष्णु नीचे पाताल की ओर, गरुड़ को लेकर पाताल की ओर भगवान श्री हरि चले। भगवान तो पाताल की ओर जब दोनों चलने लगे तो आकाश की ओर जैसे ब्रह्मा जी ऊपर की ओर गए उड़कर के, तो मार्ग में उन्हें एक गाय मिल गई। जब गाय मिली तो गाय से पूछा, तुम कहां से आ रही हो? ब्रह्मा जी इतने थके थे कि गाय माता कहती है कि ब्रह्मा जी आपको इतना श्रम और इतने आप थके हुए हैं। बोले बहुत समय से चल रहा हूं। कहां चल रहे? बोले शिव का, इस लिंग का, ज्योतिष स्तंभ का पता लेने जा रहा हूं सिर। कहा महाराज ऐसी भूल मत करना, न जाने कितने कल्प से मैं चली आ रही हूं, अब तक मुझे पता नहीं चला। ब्रह्मा जी ने कहा अच्छा तो एक काम करोगे? बोले हाँ, बात ये है कि जब पूछा जाए तो तुम हमारे साथ मिल जाना और कहना कि ब्रह्मा जी ने हाँ सचमुच इस स्तंभ का ऊपर का जो सिरा है उसे इन्होंने देख लिया है। मैं वही तो थी, दूध का धार चढ़ा रही थी, वहीं से मुझे ब्रह्मा जी अपने साथ लिवा लाए, साथ लेकर के आ गए। इसी बीच एक फूल मिल गया, केतकी का फूल। केतकी का फूल केतकी से पूछा, तुम कहां से आ रही हो इतनी सुगंध? केतकी ने कहा कि मैं कई कल्प हो गए हैं भगवान शिव के सिर से निकलकर नीचे की ओर आ रही थी और मुझे न जाने कितने कल्प हो गए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम एक काम करना, मेरे साथ मिल जाओ और तुम मेरी गवाह दे देना, बता देना कि हाँ मैं इस लिंग के मस्तक पर चढ़ी हुई थी, वहां से ब्रह्मा जी साथ लेकर के आए। जैसे साथ लेकर वो ये दोनों गवाह तैयार कर लिए और दोनों गवाह तैयार करके साथ में लेकर ब्रह्मा जी लौट आए और भगवान श्री हरि नारायण नीचे पाताल की ओर जाते हुए वराह भगवान को साथ, नारसिंह वाराही शक्ति को लेकर जब नीचे घूमने के लिए गए, ढूंढने के लिए गए, तो शेष बड़ी लंबी लंबी सांस लेकर के बड़ी बड़ी गहरी गहरी अपनी सांसें छोड़ रहे थे। पूछा शेष जी से, महाराज आप इतनी गहरी गहरी सांसें, लंबी लंबी सांस जो ले रहे हैं, इतने श्रमित हुए हैं, इसका कारण क्या है? कहा महाराज न जाने कितने कल्प से मैं शिव इस लिंग का अंत लेने के लिए जा रहा हूं, पर नीचे का मुझे अभी तक कहीं ये अंत नहीं प्राप्त हुआ। इतना थक चुका हूं जिस थकान को दूर करने के लिए मैं अपनी लंबी और गहरी सांसें ले रहा हूं। भगवान श्री हरि ने कहा, महाराज शेष भगवान बोले, महाराज इतना श्रम मत करिए कि आप नीचे जाएं, मैं इतना थक चुका हूँ, मुझे अंत नहीं मिला, आप इतने थके हुए श्रमित हैं, आइए आप थोड़ी देर मेरे पर विश्राम कीजिए। भगवान श्री हरि को अपने ऊपर शेष जी ने लिटा लिया, उन्हें आराम विश्राम दिया, और भगवान नारायण उठे और उठकर जब शिव उस लिंग के पास में आए तो ब्रह्मा जी को पहले वहां उपस्थित देखा। भगवान नारायण भी आ गए। अब इस बीच पूछा गया, आकाशवाणी हुई तो ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं इसका अंत लेकर आया हूं, मैंने भगवान का इस लिंग का मस्तक देखा है, ये दो मेरे साथ में साक्षी हैं, अपने साक्षी आगे कर दिए। गाय से कहा तो गाय ने भी सिर हिला दिया। केतकी से पूछा तो केतकी ने भी हामी भर दी झूठी। जैसे ही ब्रह्मा जी झूठ बोल करके बोले, ब्रह्मा जी ने जिस मुंह से झूठ बोला था, देखते देखते उसी शिवलिंग से जो अग्निमय था, ज्योतिर्मय था, वो देखते देखते एक श्याम रूप में एकदम सांवला और छोटे से उस अग्नि के तेज से काला बाहर निकला, कालिमा बाहर निकली, जो देखते देखते एक बालक के रूप में प्रकट हो गई, वही भगवान भैरवनाथ हैं। बोलो शंकर भगवान की। भगवान भैरव के रूप में एक बटुक के रूप में प्रकट हुए, और प्रकट होकर ब्रह्मा जी ने जिस मुंह से झूठ बोले थे उस मस्तक को काट करके अलग कर दिया। तब तक ब्रह्मा जी के पांच मुख थे, और आज ब्रह्मा जी का वो मुख उनके मस्तक से अलग हो गया, और उन्हें झूठ बोलने की सजा दी गई। मस्तक तो अलग कर ही दिया, वो सिर तो उनके शरीर से हटा ही दिया, और साथ में ये श्राप भी दिया कि जाओ तुम झूठ बोलो इसलिए तुम्हारी पूज्यता नष्ट होगी, अर्थात तुम्हारी कहीं कोई पूजा नहीं करेगा। जब ब्रह्मा जी बहुत रुदन करने लगे, भगवान शिव ने कहा, अच्छा तो जाओ, तुम्हारे बिना कभी यज्ञ संपन्न नहीं होगा, जब जब यज्ञ का काम होगा तब तब ब्रह्मा जी का आह्वान किया जाता है, कुसा का ब्रह्मा बना करके यज्ञ वेदी के स्थान पर उन्हें बिठाया जाता है, अर्थात ब्रह्मा जी की पूजा होती है, और उसके अतिरिक्त किसी कार्य में भी कहीं ब्रह्मा जी की कोई पूजा नहीं होती है। इसीलिए देखने को मिलता है कि सारे भारत में एक ही मंदिर है ब्रह्मा जी का पुष्कर राज में, उसके अतिरिक्त कहीं उनका दूसरा मंदिर नहीं है। केतकी को श्राप मिला कि जाओ तुम पूज्य नहीं रहोगी। केतकी के बार बार रुदन करने पर भगवान शिव ने कहा, अर्थात भैरव जी ने कहा कि जाओ तुम झूठ बोली हो, तुम्हें सजा तो यही मिलेगी, केवल एक दिन। तुम अन्य देवताओं में तो चढ़ोगी, परंतु एक ही दिन तुम्हारा दिन होगा, उसे कहते हैं केवड़ा तृतीया। तृतीया एक तिथि के दिन केवड़ा तृतीया कहते हैं, केवड़ा की पूजा होती है। अन्य देवताओं में तो तुम चढ़ोगी, परंतु शिव के समीप नहीं, अर्थात शंकर जी को केवड़े का इत्र, केवड़ा और केवड़े का पुष्प कभी चढ़ता नहीं है। तो कहने का भाव था कि वो केतकी को भी ये सजा मिली, और गाय से कहा कि तुम झूठ बोली हो, तुमने झूठ के लिए सिर हिलाया है, इसलिए जाओ तुम्हारे मुख की पूजा नहीं होगी, तुम्हारी पूंछ की पूजा होगी। भगवान ने कहा कि तुम्हारी पूंछ की, और इसका तुम्हें श्राप ये मिलेगा, झूठ बोलने का तुम्हें दंड ये होगा कि कलयुग में जाकर तुम जिस मुंह से झूठ बोली हो उसी मुंह से तुम्हें अपवित्र अर्थात खाने को मिलेगा, विष्टादि खाने को तुम्हें प्राप्त होगा। इस प्रकार गाय को भी श्राप दिया गया। भगवान शिव श्री हरि विष्णु शांत थे और तब भगवान शिव ने कहा कि भी तुमने सच बोला है और सत्य को स्वीकारा है, इसलिए जाओ, हम तुम्हें वरदान देते हैं कि संसार में सबसे अधिक पूजा तुम्हारी होगी, सबसे अधिक पूजा तुम्हारी होगी। और सर्व भगवान शिव हरि ने, भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर उन्हें सर्व पूज्य देव की प्रधानता दी गई और भगवान उसी समय ज्योतिर्मय लिंग के रूप में जो प्रकट हुए थे, वही ज्योति 12 जगह में जाकर, वो लिंग 12 जो जगह स्थान पर जाकर गिरी और वही वो दिव्य ज्योति प्रकट हुई, वही 12 ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हो गए। तो कहने का अर्थ मेरा ये था कि भगवान श्री हरि और ब्रह्मा जी के विवाद को दूर करने वाला ये जो परम तत्व शिव है, अर्थात जिस भेद को, ब्रह्मा विष्णु के भेद को मिटा करके उन्हें अभेदता को प्रदान कराने वाला, अर्थात शिव तत्व वो है जिसमें कोई भेद नहीं है, जिसमें कोई कलंक नहीं है, जिसमें कोई विकार नहीं है, जिसमें कोई दोष नहीं है, ऐसा जो सनातन तत्व है वो शिव है। इसीलिए शिव की महिमा मही मन पारंते, अपार उसकी, अपार शिव की महिमा है। भला शिव के, इस शिव के समान दाता को नाही, संसार में उनकी दान की महिमा तो भला किसी से क्या छुपी हुई है। ऐसे महिमावान शिव जिनके दान की महिमा इतनी अपरंपार है, अर्थात शिव के दान से कौन छुपा हुआ है, कितना बड़ा दान है कि जब समुद्र मंथन हुआ था, हलाहल नामक विष निकला और जो विष सकल सृष्टि को समाप्त करने के लिए, सकल सृष्टि समाप्त होने जा रही है, त्राही त्राही कहकर सृष्टि कांप उठी है, देवता लोग घबरा गए हैं और किसी में ये साहस नहीं है कि इस विष की दाहकता को समाप्त कर सके। ऐसे विकट समस्या गम, इतनी परिस्थिति देवताओं के सामने आई कि कोई आगे बढ़ करके इस विष को भला कैसे शांत करेगा, सकल सृष्टि समाप्त हो जाएगी, अब कोई शेष बचेगा नहीं। इतनी विपत्ति आने पर भगवान शिव ही है, माँ पार्वती भगवान शिव की ओर निहारती हैं, देखती हैं। शिव चाहते हैं कि माँ कुछ कह रही है, माँ क्या कह रही है, यही कह रही है, हे भोलानाथ, हे शिव, तुम्हारे अतिरिक्त, हे देवादि देव, और कौन देव है, किसमें ऐसा सामर्थ्य है, कौन इतना समर्थ है, कौन इतना बलवान है कि जो इस विश्व से, सृष्टि के विनाश से बचा सके, इस महाविनाश को कोई रोक सकता है, तो केवल महादेव आप ही रोक सकते हैं। भगवान शिव ने उस विष को लिया और लेकर के अपने कंठ में अवरोधन कर लिया, कंठ में रोक लिया। भगवान शिव मन में विचार करते हैं, यदि ये विष में सीधे अपने मुंह के रास्ते मुख में ले लूंगा, विष पीने के लिए तो विष को मुख में लेना पड़ेगा, और मुख में यदि विष लूंगा तो मुख के अंदर परमात्मा का नाम रहता है, राम नाम रहता है, अर्थात हरि का नाम ही राम है। राम कहो, हरि कहो, कृष्ण कहो, नारायण कहो, अर्थात भगवान शिव के मित्र का नाम, मित्र का नाम तो निरंतर मुंह में रहता है। नारायण जिससे आप स्नेह करते हैं, उसका नाम कभी भूलते हो क्या? वो नाम विसराया नहीं जाता है, भूला नहीं जाता है, भूलने पर भी वो याद रहता है। अर्थात भगवान शिव का नाम मुख में निरंतर अपने परम मित्र हरि का नाम रहता है। बोले, हरि का नाम भगवान शिव को इतना प्रिय क्यों? आप लोग, गोस्वामी जी लिखते हैं, मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जय जपत बिदारी। भगवान शिव निरंतर जिस नाम को जपते हैं, जिस नाम का रटन करते हैं, कभी भूलते नहीं। ऐसी प्रगाढ़ मित्रता, ऐसी अभिन्न मित्रता शिव की नारायण के साथ में कैसे हो गई? बोली ये मित्रता की साक्षता क्या है, ये यही कथा है जो अभी अभी आपने सुनी कि नारायण सत्य है, नारायण सत्य है। और शिव को प्रिय क्या है? नारायण शिव को प्रिय है सत्य, अर्थात जो सत्य है वो शिव को प्रिय है। और सत्य का ही रूप है शिव, और शिव का ही रूप है सत्य। सत्य से शिव को अलग नहीं किया जा सकता, और शिव से सत्य अलग नहीं है, सत्य से शिव ने अलग नहीं है। इसीलिए कहा तन में मना शिव संकल्प, वो शिव सत्य है, सनातन है, और दोनों की मित्रता है। सत्य कहने से नारायण है, और शिव कहने से कल्याण है। इन दोनों में भेद नहीं किया जा सकता, इन दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। भगवान शिव को नारायण प्रिय है, अर्थात सत्य प्रिय है, और वो सत्य उनके मुख में रहता है। अभिप्राय ये है जो सत्य बोलते हैं वही शिव को प्रिय है। असत्यवादी का मस्तक तो शिव के समक्ष कट जाता है, असत्य भगवान शिव को प्रिय नहीं है। कोई ये चाहे कि मैं शंकर को प्रसन्न करूं और बोलो असत्य, तो ये कदापि संभव नहीं ना। इसमें शिव की प्रियता नहीं हो सकती, शिव की प्रसन्नता नहीं हो सकती। शिव की प्रसन्नता तो सदैव सत्य पर है। भगवान शिव ने सोचा यदि सत्य के साथ विष जुड़ गया तो सत्य की महिमा घट जाएगी। लोग कहेंगे इसके साथ तो कड़वाहट जुड़ी हुई है, अर्थात विष जुड़ा हुआ है, इसे कोई लेना पसंद नहीं करेगा, स्वीकार नहीं करेगा। जिसमें केवल केवल सत्य है माने मिठास है, मिठास के अतिरिक्त दूसरी कोई चीज नहीं है, वो तो केवल सत्य है, भगवान का नाम है। भगवान शिव ने तब उसे मोह में न लेकर के कहां लिया, बोले सीधे उसे अपने कंठ में उतार लिया, घिटक लिया। भगवान शिव ने कंठ के अंदर ले लिया और कंठ में अवरोधन कर लिया, रोक लिया वहीं पर, और उतना स्थान नीला पड़ गया तो भगवान शिव का नाम नीलकंठ पड़ गया। और दूसरी बात बहुत सुंदर, शिव कौन? शिव वो है जो समुद्र का, ये विष क्या है? बोली ये विष है समुद्र का दोष, समुद्र का सब दुर्गुण। यूं तो समुद्र का नाम है रत्नाकर, जिसके भीतर अनेक अनेक रत्न छुपे हुए, माने अनेक अनेक गुण हैं। समुद्र से ही लक्ष्मी निकली हैं, समुद्र से ही चंद्रमा निकले हैं, समुद्र से ही 14 रत्न निकले, अमृत भी उसी से निकला, धनवंतरी भी उसी से निकली, कामधेनु भी उसी से निकले, कल्प वृक्ष भी उसी से निकले, ऐरावत हाथी भी उसी से निकले, उच्च स्रवा नामक घोड़ा भी वहीं से निकला, अर्थात अनेक रत्न निकले हैं। परंतु अनेक रत्नों में जहां रत्ना करके भीतर से अनेक अनेक रत्न निकले, छुपे हुए रत्न प्रकट हुए, तो वहां उसका एक दोष भी निकला, विष भी निकला। कहने का तात्पर्य ऐसा है, अस को जन्मा जग माही, ऐसा कौन है, कौन पैदा हुआ है जिसमें केवल गुण ही गुण हो, अवगुण न हो? जहां गुण रहते हैं वहां अवगुण रहते हैं, और जहां अवगुण रहते हैं वहां गुण रहते हैं। गुणों के साथ गुणों का पर्याय यदि आप लेकर के चले तो उसके साथ साथ अवगुण मिलेंगे, अवगुण के साथ गुण मिलेंगे। भगवान यही बताना चाहते हैं शिव यही कहना चाहते हैं कि संसार में गुण भी है और अवगुण भी है। यदि गुण निकलते हैं किसी के भी गुणों को उजागर करें और उसका जो दोष है, दुर्गुण है, जो दूषण है, यदि दोष भी है तो उस दोष को छुपा करके दूषण को भी आभूषण बना करके उसे जो सजा ले, उसे स्थान दे दे, उसका नाम शिव होता है, उसका नाम शिव होता है ना। इसलिए भगवान शिव ये संसार को कहना चाहते हैं। दोष दुर्गुण को छुपा करके दूषण को भूषण बना करके उसे प्रस्तुत कर दिया संसार के सामने कि वो भगवान शिव की सुंदरता का कारण बन गया। भगवान शिव बहुत सुंदर है, उनका कंठ में ये ऐसा दिखाई पड़ना है नील मणि के समान उज्जवल, नील मणि के समान सुंदर, वो सुंदरता का प्रतीक बन गया। शिव की सुंदरता उनकी कंठ की नीलता का प्रतीक बन गया। भगवान शिव कहते हैं कि देखो भैया इस संसार में, और दान कैसे करें, कैसा दान होना चाहिए, बोले जो संसार के विष को पी करके संसार को जीवत्व प्रदान करे, जीवन दे, दूसरे को जियाने के लिए स्वयं मृत्यु को अपने कंठ से लगा ले, मौत को कंठ से लगा करके जो दूसरे को जीवन जीने की दिशा देता है, जीवन देता है, उसी को देव नहीं कहते हैं, उसे महादेव कहते हैं, वो दाता है। इसलिए शिव समान को दानी, शिव के समान कौन दानी हुआ, जो दूसरे को जीवन देता है वही तो दाता है नारायण। हम भगवान शिव की इस महिमा को, जिस महिमा के द्वारा भगवान शिव की अनंत अनंत इस महिमा एक छोटे से नाम में छुपाई हुई, शिव नाम द्व्यक्षर नाम है और शिव पंचाक्षर है। नमः शिवाय द्व्यक्षर शिवाय और नमः इसके साथ द्व्यक्षर त्र्यक्षर और उसके साथ पंचाक्षर, पंचाक्षरी मंत्र है, पांच अक्षर जिसमें इतना छोटा नाम नमः शिवाय। ये जो नमः शिवाय नाम है ना नारायण, इसे कोई साधारण नहीं समझना, ये वेद मंत्र है, वेद मंत्र, वेद मंत्र, मंत्र हमारे वेदों में है और जिनमें से वेद में भी चार वेद और चार उपवेद हैं। उपवेदों में आयुर्वेद है, धनुर्वेद है, ज्योतिष वेद है, ये भी वेद है, परंतु जो मुख्य चार वेद है यजुर्वेद का मंत्र है ओम नमः शिवाय नवशम भवाय च मयो भवाय च मयस्कराय च शिवाय च नमः शिवाय च शिवाय शिव। ये जो शिवाय शब्द है नमः शिवाय, ये पंचाक्षर मंत्र वेद मंत्र है, वेदोक्त है। मंत्र दो तरह के होते हैं, एक पौराणिक मंत्र होते हैं और एक वैदिक मंत्र होते हैं। कुछ तंत्र मंत्र होते हैं जिसे सावर मंत्र कहते हैं, तंत्रोक्त तंत्र ग्रंथ में भी, तंत्र भी एक अगम शास्त्र जिसे कहते हैं, अगम माने तंत्र, तंत्र जो भगवान शिव की परम, जिसके तंत्र के प्रणेता हैं भगवान शिव, जो भगवान शिव की उपासना से जो एक विद्या चली आ रही है उस विद्या को कहते हैं तंत्रोक्त विद्या। और जो ब्रह्मा जी के द्वारा विधि के मार्ग से जो चली आ रही है विद्या उसको वेद विद्या कहते हैं। इसलिए दो तरह के मंत्र होते हैं, एक वेदोक्त एक तंत्रोक्त, और वेदोक्त और उनमें से कुछ पौराणिक मंत्र होते हैं। पर याद रखना ये नमः शिवाय तो वैदिक मंत्र है, वैदिक मंत्र। और इस शिव की महिमा छोटे से नाम पर, पंचाक्षरी नाम के भीतर कैसे छुपी हुई है। भगवान कुछ शिव के नाम की महिमा नमन करने से, केवल केवल भगवान शिव के चरणों में नमः, इस सिर को झुका लेने मात्र से, केवल नमन करने मात्र से कितने बड़े पुण्य की प्राप्ति होती है। शिव चरणों में हमारा मस्तक एक बार झुक जाए, क्योंकि बड़ा कठिन है इस मस्तक को झुकाना। कि मस्तक सीधा है, बोले क्यों? क्योंकि इसके अंदर अहम भरा हुआ है, जीव का अहंकार झुकने नहीं देता है। जब तक जीव के भीतर से जीवत्व का अभिमान नहीं हटेगा, तब तक ये मस्तक सही रूप से शिव चरणों में झुकेगा नहीं। इसीलिए भगवान शिव के चरणों में मस्तक झुकाने के लिए, नीचे करने के लिए शिव महिमा ज्यों ज्यों कान के भीतर जाएगी और कान के माध्यम से हृदय तक पहुंचेगी और हृदय से मस्तिष्क की ओर जाती वो विद्या जब हमारे अंदर आंदोलित होगी, तब ये मस्तक के भीतर का अहंकार छूटेगा और धीरे धीरे ये मस्तक शिव चरणों में झुक जाएगा। और जिसने झुक गया, जो एक बार गिर गया, उसने शिव के चरणों में पहुंचकर सर्वस्व प्राप्त कर लिया। जैसे एक बीज जब मिट्टी में मिलता है और मिट्टी में मरता है, तब उससे वृक्ष बन करके प्रकट होता है। उसी प्रकार दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। उसी भांति हमें जब तक भगवान के चरणों में अपने को मिटाएंगे नहीं, और मिटाने के लिए कथा सुननी है, श्रवण है, श्रवण के बिना बात बनेगी नहीं। इसलिए आइए अब की बार शिव महिमा को श्रवण करने के लिए हमारे पास 4-5 दिन का समय है, और जिसमें मैंने कहा था शिव महिमन स्तोत्र के माध्यम से और शिव पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय नमः शिवाय, ओम साथ में लगा देने से तो षडाक्षर बन जाता है, केवल पंचाक्षर नमः शिवाय। इस बात पर सुबह के इस पावन बेला में कल से नमः शिवाय पर विचार करेंगे। 5 अक्षर हैं, इनको सुनकर अपने जीवन को कल्याणकारी बनाएंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देती हूँ। हरिओम तत्सत्। ओम शांति शांति शांति।
0: ओम नमः शिवाय।
2: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org। Om Shivaya Nama. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Dakshinamurti Stotram, presented by Swami Sri Pratyek Bodhanandaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
0: Vairag na hone se Vedant mein jo jivan mukti ka ras hai, us pe parda pad jata hai. क्योंकि हम चिंतन में, मनन में, श्रवण में ये कहते हैं कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, और व्यवहार में वो जगन मिथ्यात्व की अनुभूति होती नहीं। क्योंकि जो विवाद है, तनाव है, चिंता है, वो भगवान को या परमात्मा को या ब्रह्म को लेके नहीं, वो व्यवहार को लेके ही, शरीर को लेके या शरीर के संबंधियों को लेके। तो अगर वेदांत के रास्ते पर चलते हुए भी जीवन मुक्ति का रस नहीं आता, तो भी अभी लक्ष्य स्थिर नहीं। तो गुरु जी का जो वाक्य है, एक लक्ष्य निश्चित हो, लक्ष्य अच्छा हो, तो लक्ष्य के लिए यात्रा प्रारंभ करने से ही आनंद का प्राकट्य प्रारंभ हो जाता है, वहीं से प्रारंभ हो जाता है। पर हमारे गुरुदेव के जीवन में आप सब लोगों ने देखा ही है, हम लोगों को तो वही श्लोक हमेशा याद आता है, अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजौकशाम यन मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। ओए ब्रज गोप, ग्वाल बालों का बहुत भाग्य, ब्रह्मा जी अपनी स्तुति में कहते हैं भागवत में, ग्वाल बालों का भाग्य की सराहना करते हैं ब्रह्मा जी। क्यों? ब्रह्मा जी ने क्या देखा था? भले भगवान कृष्ण सबके साथ बैठ करके मंडलाकार वन भोज लीला आप लोगों ने छग लीला यहां संपन्न किया पूज्य गुरु स्वर्णानंद जी महाराज के सत्संग में, वही वन भोज लीला में ये श्लोक है जो ब्रह्मा जी ने कहा भगवान को, बोले इन ब्रज ग्वाल बालों का क्या भाग्य है, सारे संसार का मालिक परमात्मा इनके मध्य में बैठ करके भोजन कर रहा है, और केवल भोजन ही नहीं कर रहा है, एक

0: तो अब ब्रह्मा मत बनाना। बोले फिर क्या बनना है? बोले इस ब्रज में जन्म देना, ब्रज में कोई लता बना देना, वृक्ष बना देना, जिससे इन ग्वाल बालों के चरणों की धूली पड़े तो मेरे जीवन में कृष्ण प्रेम प्रकट हो और जीवन आनंदित हो जाए। तो वो जीवन हम लोगों ने महाराज जी का सानिध्य जिन लोगों को प्राप्त हुआ है, बालक हो, वृद्ध हो, बच्चे हो, या बहुत लोग हैं जिन्होंने महाराज जी का दर्शन किया है, श्रवण किया है, वो साक्षात श्री कृष्ण की लीलाएं उनके जीवन में दिखती थी। एक सामान्य व्यक्ति के साथ सामान्य जैसे लगते थे और विद्वानों के मध्य में बोले तो काशी के पंडित अमृत महोत्सव में पाठक जी आपने देखा, काशी के पंडित भी चकराते थे कि कहां से बोल रहे। एक बार कवि सम्मेलन था वृंदावन में, पाठक जी जानते हैं वो निम्बार्क विद्यालय है, वहां कवि सम्मेलन था। झाजी वहां के प्राचार्य थे, 6 विषय के आचार्य हैं, राष्ट्रपति से पुरस्कृत थे। तो वो महाराज जी को ले गए, बड़ा आग्रह था महाराज जी का, बड़ा उनसे प्रेम था। महाराज जी बोले हम क्या करेंगे कवि सम्मेलन में? बोले नहीं महाराज, अध्यक्षता तो आप ही को करनी, कवि सम्मेलन अब क्या करें। झाजी का आग्रह, इतना बड़े विद्वान षट दर्शनाचार्य गुरु जी गए। अब आज के कवियों में प्राय स्वाभाविक हास्य और व्यंग की कविता होती, खूब हंसाते हैं व्यंग करके, कभी किसी पे कटाक्ष करके। अब महाराज जी का जब अध्यक्षीय भाषण प्रारंभ होना था तो स्वाभाविक था लोगों मन में जिज्ञासा थी, यहाँ पे महाराज जी क्या बोले, कोई वेदांत भक्ति की चर्चा तो यहाँ प्रासंगिक नहीं होगी। महाराज जी बोले देखो यहाँ जितने कवि बैठे हैं सब जवान और अध्यक्ष एक बूढ़े को बना दिया है। बोले मैं जब बोलूंगा तो लोग यही सोचेंगे क्या करूं राम, मुझे बुढ़ा मिल गया। माने आप कल्पना कर सकते हैं कि जो महाराज जी के मुख से इतने बड़ी बड़ी वेद वाणियों की व्याख्याएं निकलती थी, वो महाराज जी कवि सम्मेलन में ये पंक्ति गाते हैं, सारे कवि लुटपुट हो गए। उनको तो कल्पना भी थी नहीं थी कि महाराज जी ये भी बोल सकते। तो वो महाराज जी का जीवन हम लोगों ने देखा है, पूर्ण कृष्ण रूप और भगवान कृष्ण के आशीर्वाद स्वरूप ही उनका जीवन था, शांतनु बिहारी के महाराज उनके कृपा का रूप में, इसलिए महाराज जी का पूर्व नाम वही था। और उनका पूर्ण जीवन आप अगर भागवत उठा के देखें, श्री कृष्ण के जितने गुण दिखाई देते हैं लीलाओं में, सब महाराज जी में एक एक गुण करके दिखाई देते थे। तो महाराज ऐसे महापुरुष जिन्होंने दर्शन किए, स्पर्श की, वो धन्य है, ईश्वर की बड़ी कृपा है जिन्होंने ऐसे महापुरुषों का दर्शन किया, स्पर्श किया, मार्गदर्शन प्राप्त किया और आज भी वो वांग में विग्रह के रूप में, ग्रंथों के रूप में, उनकी वाणी के रूप में सीडी ऑडियो वीडियो उपलब्ध है। और वैसे अगर बहुत भाव हो तो अनेक भक्तों का अनुभव है कि आज भी स्वप्न इत्यादि में आज भी दर्शन देते हैं और मार्गदर्शन देते हैं, खाली दर्शन नहीं देते। तो ये तो सिद्ध महापुरुष हैं जिनको हम कारक पुरुष बोलते हैं, जो हमेशा रहते हैं, प्रभु की इच्छा से आते हैं, जब समय उनका कार्य पूरा हो जाता है फिर प्रभु के पास रहते हैं हमेशा। उनका प्राकट्य कोई कर्म के अधीन नहीं होता है, वो प्रभु की प्रेरणा से होता है। प्रभु को अपनी भक्ति के विस्तार के लिए ऐसे महापुरुषों को भेजते हैं, वो साक्षात ईश्वर रूप होते हैं। ऐसे सद्गुरुदेव के चरणों में मैं अपने भाव पुष्पांजलि समर्पित करता हूं। ओम शांति शांति शांति। हमारे परम श्रद्धेय स्वामी प्रत्येक बोधानंद जी महाराज जो हमारे प्रवचन में उठ के उधर चले गए थे, अच्छी बात नहीं है। इनका झगड़ा बहुत पुराना हमारा, जब हम लोग अध्ययन करते थे तब से साथ में पूज्य स्वामी वामदेव जी महाराज से हम लोग वेदांत इत्यादि का अध्ययन किए, किसी के प्रवचन में नहीं उठे, आप लोगों ने देखा होगा यहां से उठ के वहां बैठ वॉकआउट किया, बोल रहे हैं सामने सीधे। आप ये देखिए सबकी सभा में बोल रहे, बोले वॉकआउट किया आपके प्रवचन। तो प्रत्येक बोधन जी महाराज कह रहे हैं कि डालमिया जी अपने भाव तो प्रकट तो करने ही अभी करे बात। तो भाव व्यक्त करेंगे, फिर स्वामी प्रत्येक बोधानंद जी महाराज और फिर अध्यक्षीय भाषण होगा। आप लोग आनंद लें क्योंकि अब आनंद ही आनंद है। हमारे स्वामी प्रत्येक बोधानंद जी हमको पता लगा कि वो नाम कहते हमारा नहीं लिया जाए, अब वो नाम आप समझ लीजिए, मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि वो मना कर।
1: दुख होता है।

0: बधाई शाम को सुनाओ।
1: डालू मियां जी आदर।
2: अर्चनीय वंदनीय सभी संत वृंद के चरणों में मेरा साष्टांग दंडवत प्रणाम। आदरणीय भाइयों और बहनों, मैं तो संतों को ही सुनने के लिए आया था, लेकिन उनका आदेश हुआ कि मैं भी दो शब्द बोलूं। स्वामी जी महाराज का जब देह विलय होने वाला था, लगभग उसके 15 दिन पहले मैं स्वामी जी के दर्शन करने आनंद वृंद आश्रम गया था। स्वामी जी बगीचे में एक तख्त पर बैठे हुए थे, उनको डायबिटीज की बीमारी पहले से ही थी। आशीर्वाद तो सबको देते ही थे, उस वक्त मैं प्रेमपुरी से नहीं जुड़ा था, लेकिन प्रेमपुरी में स्वामी जी महाराज का दर्शन किया था। विपुल में भी बहुत बार गया था दर्शन करने, और वहां पर भी जाता आता रहता था। तो मैंने महाराज जी से आशीर्वाद मांगा, उन्होंने मुझसे एक ही आशीर्वाद दिया कि रामायण का पाठ रोज किया करो। उन्होंने कहा कि भगवान कृष्ण की लीलाओं का अनुसरण करो और भगवान राम के आदर्शों का अनुसरण करो, वो जीवन में सुख देता रहा। खैर, सुख दुख की बातें तो अलग है, लेकिन संत का जो आशीर्वाद है ना, सबसे ऊंची बात वही। मुझे काम के अर्थ में कुछ दिन दिल्ली भी ठहरना पड़ा, और वहां से मैं जयपुर होता हुआ जब बंबई आया, तब लौटने पर उसको 15 दिन हो गए थे उस बात को, तब मुझे मालूम पड़ा कि महाराज श्री का देव विलय होगा। दुख होना स्वाभाविक है सबको, लेकिन ये तो ईश्वर की लीला है, तो उसके लिए तो हमको नमन करना ही पड़ता। तब इनका संतों का आदेश हुआ, इसलिए मैं ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा, एक संस्मरण मेरा सुनाया, धन्यवाद।
1: डाल मियां जी ने अपने भाव प्रकट किए महाराज जी के चरणों में। अब हमारे परम श्रद्धे स्वामी श्री प्रत्येक बोधानंद जी महाराज हम लोगों को बड़े मधुर मधुर संस्मरण, मधुर मधुर वाणी में, रसमय वाणी में, अब आप समझ गए होंगे, श्रवण कराएंगे नाम लिए बिना। जैसे भागवत में राधा रानी का नाम नहीं लिया गया ना, लेकिन सब कुछ कहा गया है, ऐसे वो नाम नहीं लेंगे लेकिन कहेंगे जरूर। स्वामी श्री प्रत्येक बोधानंद जी महाराज,
3: ओम बीजस्यांतरिवांकुरो जगदिदं प्राग् निर्विकल्पं पुनः माया कल्पित देश काल कलना वैचित्र चित्रीकृतम् मायापीप प्रिजुंबयत्यपि महायोगी वयस्वेच्छया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमइदं श्रीदक्षिणामूर्तये निधये सर्वविद्यानां विषजे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ओम तच्छंयोरा प्रुणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं शन्नो अस्तु द्विपदे शं चतुष्पदे ओम शांति शांति शांति। मंचस्थ सभी महानुभावों को प्रणाम करता हूं। संस्कृत में जितने भी शब्द है वो मूल उसका होता है धातु, धातु से शब्द का अमुक प्रकार के संस्कृत के नियम अनुसार उत्पत्ति निष्पत्ति होती है। तो जन्म शब्द है वो जनीर प्रादुर्भावे, इस धातु से बनता है जन्म, आविर्भाव प्रादुर्भाव, इसका अर्थ होता है जो है विद्यमान वो कुछ कारण से वर्तमान बनता है। जैसे इस काष्ठ में अग्नि विद्यमान है, मंथन करने पर वो वर्तमान हो जाता है, इसी का नाम है आविर्भाव प्रादुर्भाव। देखो वैज्ञानिकों के कई जमाने पहले ये बात इन लोग को मालूम थी कि कोई नई चीज की उत्पत्ति नहीं होती है। यू कांट क्रिएट अउंट्स ऑफ मैटर, यू कांट डिस्ट्रॉय अउंट्स ऑफ मैटर, टोटली इम्पॉसिबल। एक तिनका भर भी चीज नई पैदा नहीं हो सकती है, बदल बदल के आविर्भाव ही होता जाता है। ऐसे ये जन्म जो है वो भागवत की भाषा में, वेदांत की भाषा में, स्थूल शरीर जो अन्न से बना हुआ है, अन्ना जायते अन्ने नैव वर्धते, उस अन्नमय कोश में इस सूक्ष्म शरीर जो 17 तत्वों का बना है उसका उसमें प्रवेश होना और उसके साथ तादात्म्यपन प्राप्त करना अविद्यावशात, इसी का नाम है जन्म। इसके लिए उपनिषदों में बहुत सी चर्चा है, ये जीव कब इस स्थूल शरीर में प्रवेश करता है, बादलों के साथ पानी में नीचे जाके अन्न से आके आया है, कैसे आता है, बहुत चर्चा है। हमने ये तय नहीं किया कि ये शरीर मेरा है एक दिन, जैसे आज से ये घर मेरा है, ओनरशिप में ले लिया, नहीं, ये जन्म से ही यह शरीर मैं हूं ऐसा तादात्म्य अपन सब में नैसर्गिकोयम लोक व्यवहार है, ये सहज प्राप्त है। और इस तादात्म्य अपन का भंग होना, टूटना, इसी की संज्ञा बनती है मृत्यु। हो सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर का जितना प्रारब्ध है, प्राक आरब्ध, इतना समय तक संयोग रहता है, फिर उसका अलग हो जाना होता है, उसी का नाम है मृत्यु। अब आप देखिए सभी प्राणियों का जन्म होता है और भगवान श्याम सुंदर ने इस तादात्यपन जीव के लिए एक बात गीता में कही, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु। ध्रुवम, ये बात अचल है, जो पैदा हुआ हुआ अपने को मानता है वो अवश्य एक दिन ध्रुव क्या है, उसका ये शरीर छूट जाएगा, डिस्पोजेबल, दिस बॉडी डिस्पोजेबल, टूटेगा। अब इसमें एक फर्क है, जो पैदा होता है वो मरेगा और उसके लिए उपनिषद ने बात बताई, मृत्यु समृत्यु आपनोति या इह नाने व पश्यति। नाना मीन्स द्वैत को जो सत्य मानता है, अपने से पृथक मानता है, उसको भय होता है। देखो ये बात बहुत लोग बोलते हैं, मंत्र बोलते हैं, द्वितीयाधि भयं भवति, द्वैत से भय होता है, द्वैत से भय नहीं होता है, द्वैत मुझसे पृथक है ये भ्रांति से भय होता है। अपनी परछाई भी अगर अपने को लगे ये अलग कोई चीज है, परछाई किसकी है, भय होगा। इसी प्रकार से द्वैत भय का हेतु नहीं है, द्वैत की भिन्नता जो है अपने से पृथकता वही भय का हेतु। मृत्यु से मृत्यु ये नहीं कहते जन्म से जन्म प्राप्त होता है, मृत्यु से मृत्यु प्राप्त होता है। मृत्यु का नाम किसी को सुनना भी अच्छा नहीं लगता है। आपनोति य इह अस्मिन् जन्मनि नाना इव पश्यति सत्य रूप से मानता है। ये सबकी कथा है, जायस्व म्रियस्व जन्मता है मरता है, ये सब उपनिषद के मंत्र है। और गति भी बता दी, उत्तरायण गति दक्षिणायन गति परवश अवश होकर ये दोनों गतियों को प्राप्त हो करता है। ये सब शास्त्र चर्चा है, इसमें प्रमाण शास्त्र है। जीव की गति किसी को दिखती नहीं है और न दिखे वही अच्छा है, नहीं तो पकड़ के वापिस ले आएगा उसको तो। वो जाए ऐसे ही अच्छा है। कोई जानता नहीं ये विषय शास्त्र का है। पर एक बात है, जो अपने को पैदा हुआ मानता है उस अवश्य मरेगा। अब आप देखिए कि इस जन्म और बीच में जरा व्याधि आदिदेवम अधिभूतम आध्यात्मिकम दुखम ये परवश जीव को हमेशा भोगना ही पड़ता है। दुख दोषानुदर्शनम। अब एक बात देखिए, जिसके लिए प्रेमपुरी जी है, मानिए ये सत्संग का स्थान है जहां हमारे प्रातस्मरणीय महाराज श्री हर रोज आते थे, और स्वरूपानंद जी ने इतना बढ़िया बताया कि एक एक कण में महाराज जी है। और एक बात उनकी आपको बहुत अच्छी लगी, जो महाराज जी के बहुत करीब है उनको महाराज श्री के लिए बोलना बहुत मुश्किल भी है। अपने से पृथक देखे तब बोले ना, इतनी बातें जिसका अंत नहीं हो सकता है। तो आप देखिए अभी आगे बढ़ते हैं, यहां एक चर्चा की जाती है वो है नित्य अध्यात्म विद्या मंदिर है। आत्मनि इति अध्यात्म, इस शरीर के भीतर और सबके सब शरीरों के भीतर, एक शरीर के नहीं, देह सर्व देह में जो एक प्रत्यग आत्मा है, एक पूर्ण आत्मा है, पुरो उषति वसति इति पुरुषः, पूर्णत्वात् पुरुषः। ये पुरुष शब्द संस्कृत में बहुत बढ़िया है, पुरुषः पुरुषः दो बार कह दो महावाक्य हो जाएगा। इस शरीर में जो प्रत्येक आत्मा है वही पूर्ण ब्रह्म है। क्षेत्रज्ञं च पिमां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। तो इसके स्वरूप का जब बोध होता है कि न जायते अयम आत्मा न कदाचित जायते, ये आत्मा जो साक्षी है, साक्षी का जो स्वरूप है वो कालगत कभी नहीं होता है, काल में उसका आविर्भाव नहीं होता है। क्यों? नित्यत्वात् अजह ध्रुवम, सब हेतु दूसरी पंक्ति, अजो नित्य शाश्वतो अयम पुराण है। तस्मात् न म्रियते, आत्मा न जायते तस्मात् वाट न म्रियते। किसी ने कह दिया हां वंद्या पुत्र भी न जायते तस्मात् न म्रियते, नहीं, आयम आत्मा प्रत्येक आत्मा अंगुली निर्देशेन, ये जो आपका आत्मा है अंगुली निर्देश करके कहते हैं वो आत्मा है, सत अभाव न विद्यते, जिसका कभी अभाव नहीं होता है, जो है उसका कभी नाश नहीं होता है। क्यों? नित्य है, काल का आधार है, काल का प्रकाशक है, और काल में न आता है न जाता है, वो सबका आत्मा यही है। पर सब ये बात जानते हैं नहीं है। जिन्होंने इस बात का चिंतन किया प्रमाण के द्वारा, शास्त्र प्रमाण के द्वारा, संप्रदाय के अनुसार, गुरु मुख से, सबकी आवश्यकता है, गुरु भी संप्रदाय वित होना चाहिए। आजकल एक नया चला है, मैं स्वयंभू आचार्य हूं, मानी मेरा कोई गुरु नहीं है, और मुझे गुरु बनाओ, है ना। और दूसरे किसी गुरु के पास मत जाना, है ना। और मैं ही लास्ट गुरु हूं और कोई अपने आने वाला नहीं है, एंड लेटेस्ट भी मैं ही हूं, ये सब है ना। हम लोग में भी थोड़ा होना चाहिए ना, ये खालिस्तान नहीं होना चाहिए, कुछ होना चाहिए अंदर। ये सब देखेंगे आप लोग, आस्था चैनल देखिए, सब प्रकार की दाढ़ी देखेगी, उसमें ये भी आएगा, लंबी सब दाढ़ी देखेगा। आई एम सॉरी टू से ऑल दैट। तो जायत ये जो है गुरु के पास संप्रदायविद, आत्मा नित्य है, अज है, जन्म मृत्यु रहित है, ये सब बात करने से कुछ नहीं होता है। एक एक शब्द का जो अर्थ है उसका उद्घाटन करना माने अनफोल्डिंग द वर्ड विदाउट क्रिएटिंग अ कॉन्सेप्ट, मेकिंग देम सी द मीनिंग, दैट इज कॉल्ड टीचिंग। संप्रदाय जो है चला है शंकराचार्य से भी पहले, गौड़पादाचार्य से पहले, ये नारायण से संप्रदाय भी साथ में आ रहा है। कैसे शास्त्र के अर्थ को समझना, गूढ़ अर्थ को आत्मसात करना। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म कह दिया, पर सत्यम अनंत है, अनंत सत्य है, ये जो सामानाधिकरण्य है इसको समझने के लिए संप्रदाय चाहिए। असंप्रदाय वित्तो मूर्खवत उपेक्षणीयम, जो संप्रदाय को नहीं जानता है उसको मूर्ख की तरह उपेक्षा कर देनी चाहिए। अब आगे बढ़िए। ऐसे हमारे प्रातस्मरणीय महाराज ने संप्रदाय वित्त, आप देखिए अमृत महोत्सव में पाठक जी सबका नाम लेते थे, उनकी वाणी यहीं से प्रारूप, कौन कौन से संत से क्या क्या सीखा, जिन्होंने कुछ भी दिया। आज का जो पुस्तक है पावन प्रसंग में भी आप देखिए, महाराज जी सारग्राही थे और सबका सम्मान करते थे, और खास करके वो कहते थे जो शास्त्र है वो महात्मा या संप्रदाय वैत नहीं होगा तो क्या समझ में आएगा। इसलिए इसके द्वारा अपने आपा का जो स्वरूप जन्म मृत्यु रहित इसका बोध होना, यही सचमुच में आनंद जयंती है। और इसलिए आप देखिए एक बात और देखिए, हम लोग सबके जन्म दिन आता है, आजकल तो अलर्ट होता है सब कंप्यूटर में, तो लोग तत्काल मैसेज भेज देते हैप्पी बर्थडे टू यू, सबकी बर्थडे डाल देते हैं और अपने आप मैसेज आ जाता है, ये सब मॉडर्न है। और फोन भी आएगा और बधाई हो भी होगी, केक भी काटेंगे, सब कुछ करेंगे, हमको भी आनंद भी होता है कि चलो आज हमारा जन्मदिन है। पर जन्मदिन के समय सचमुच में अंदर थोड़ा दुख भी होता है, इसको इंग्लिश में कहते हैं काउंटिंग डाउन, है ना। अगर 85 इयर्स हो गए तो कितना बाकी रहा है, अगर 100 साल जिए तो 15। काउंटिंग डाउन शुरू हो गया, चलो खुशी होती है जिंदा है। हम लोग जब जिंदा है तब तो जन्मोत्सव मनाते और अलोक मनाते हैं, पर एक बार शरीर पूर्व हो गया तो पुण्यतिथि है, जन्मोत्सव कोई नहीं मनाता है। आज देखिए एक चमत्कार दूसरा, महाराज श्री का 100 साल तो हमने मनाया और एक साल और आगे लग गए, 101 वी आर सेलिब्रेटिंग, बहुत बड़ी बात है। वाय क्यों? क्योंकि जन्म भी सार्थक हो गया, जन्म मृत्यु की श्रृंखला से स्वयं मुक्त है ये जाना, बने नहीं, ये गड़बड़ मत करना। जन्म मृत्यु से मुक्त हो गए तो फिर थोड़ी देर में बद्ध हो जाएंगे, है? जो पैदा होता है वो नाशवान होता है, ये सब बोलने में गड़बड़ है। अभी महाराज जी मुक्त हो गए तो पहले थोड़े दिन मुक्त हो गए, फिर क्या हो जाएगा, फिर बद्ध। प्रेमपुरी में दो घंटे सत्संग में मुक्त, फिर घर जाने पे बद्ध नहीं परम बद्ध, ऐसा हो जाता है। पत्नी पहला पूछेंगे देर से क्यों आए, चालू हो जाएगा बाहर से। स्वयं मुक्त स्वयं तीर्णा परां तारयति, जो स्वयं तर गए हैं जन्म मृत्यु से पर है ये बात जान गए हैं, और हम लोग सबको भी यही सिखाते रहे। आजकल में ये हो रहा है स्वयं तीर्णा परां तारयति नहीं, स्वयं कंफ्यूज परां कंफ्यूज है, ये लोग ऐसे हैं। महाराज श्री का जिन्होंने दर्शन किया, श्रवण किया और स्वरूपानंद जी महाराज की तरह जिन्होंने सेवा की, वो सब कोई जन्म मृत्यु में भी आ नहीं सकते। मैं लिख के दे सकता हूं ये बात, क्योंकि उनकी जो पवित्र वाणी है, अभी स्वरूपानंद जी मुझे मिले, उन्होंने यही कहा कि महाराज थे, उनके एक एक शब्द मन में गूंजते रहते हैं। महाराज श्री की वाणी की एक और विशेषता थी, आप उनके सामने बैठ जाओ और उनको ध्यान से सुनो, मैंने जिंदगी भर यही किया, तो उनके जो शब्द थे वो मन में बिल्कुल ऐसे बैठ जाते थे, कभी निकल नहीं सकते हैं। तो ऐसी जो वाणी है वो अपना प्रमाण है, वो अपना काम करेगी और इस जन्म मृत्यु की श्रृंखला से सबको मुक्त करके ही रहेगी। इसलिए हम रोज भी सुनते हैं और सुनना चाहिए। और ये वांग्मय अवतार स्वामी गिरीशानंद जी ने बताया, ये पुस्तक सचमुच वांग्मय अवतार है। मैंने अमेरिका में भी कितने लोगों को ये पुस्तक सीडी सब दिया, बस मेरा काम बढ़ जाता है। किसी को एक पुस्तक दिया इसका मतलब है उनको पूरा सेट चाहिए, पूरी सीडी चाहिए, और फिर मेरे क्लास में भी आना बंद कर देते हैं, क्योंकि हम सब मिल गए महाराज जी हमको अभी आपकी भी जरूरत नहीं है। इतना यल्लापात न परो लाभ है, ऐसा लाभ है। तो महाराज श्री की ये कृपा, अभी टाइम तो है पर 5 मिनट में पूरा करूंगा। महाराज जी को भी अध्यक्ष, प्राय अध्यक्ष को टाइम नहीं मिलता, आज पहली बार मिल रहा है मैं अध्यक्ष बनना ही नहीं चाहता, क्योंकि अध्यक्ष को 3 मिनट मिलता है ज्यादा से ज्यादा, और लोग को बहुत कुछ कहना होता है। आज बहुत अच्छा है, गिरीशान जी है ना तो बढ़िया चलता है, पहले कह देंगे, बाद में कह देंगे, काल की मर्यादा बता देंगे, सब ठीक है। इज वेरी कैपेबल पर्सन।
0: ओम नमः शिवाय। यू आर लिसनिंग टू shaivam.org रेडियोस, 24/7 स्पिरिचुअल चैनल्स फ्रॉम shaivam.org। ओम नमः शिवाय।
4: ओम नमः शिवाय। डियर लिसनर्स ऑफ shaivam.org, द नेक्स्ट प्रोग्राम इज स्पिरिचुअल डिस्कोर्स। इन दिस यू आर अबाउट टू लिसन कथोपनिषद presented by Swami Sri Pranavanandaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
5: Paramashaddhaya Pratasmaraniya Prempuri Ashram ke Adishthata Ananta Shri Vibhushit Mahamandaleshwar Shri Swami Prempuri Ji Maharaj Tatha Shrotriya Brahmanishtha अनंत श्री विभूषित परमादरणीय परम श्रद्धेय महाराज श्री, दोनों महापुरुषों के पावन चरण कमलों में नमन करते हुए आध्यात्मिक की साधना में अनवरत रत भगवान के परम भक्तगण, श्रोताजन, साधकजन, कठोपनिषद के अंतर्गत आप लोग नचिकेता के आख्यायिका का श्रवण कर रहे हैं। नचिकेता की आख्यायिका अत्यंत प्रेरणास्पद है। नचिकेता बड़ी ही उच्च कोटि की बात आपके सामने रखते हुए कहते हैं। ये सारी जो दुनिया और दुनिया के पदार्थ हैं, परिवर्तनशील नश्वर हैं, और इन नश्वर परिवर्तनशील पदार्थों के लिए हम अपनी नैतिकता सत्य का त्याग करें, ये उचित बात नहीं है। किसके लिए हम अपनी नैतिकता खो दें? इन्हीं नश्वर पदार्थों के लिए ना। इसलिए बालक नचिकेता अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए आचार्य यम के द्वार पर विराजित हैं और 3 दिन तक वे बिना खाए पिए बिना किसी चीजों का उपयोग किए केवल बैठे रहे और यहां तक कि वे मन से भी कुछ सोच नहीं रहे थे, क्योंकि मन का सोचना भी तो मन का उपयोग करना है। वहां कोई संकल्प भी नहीं है। आप स्वामी के हो गए, अब आपको स्वामी के अलग कुछ सोचने का भी अधिकार नहीं है। हनुमान जी सेवक हैं, राम के अलावा कुछ सोचते भी नहीं हैं। आज बालक नचिकेता आचार्य यम के हो चुके हैं, वहां अलग सोचने की भी कोई बात नहीं है, केवल उनके समर्पण में है। और जब यम आए, उन्होंने देखा छोटा सा बालक कुमार अवस्था में पृथ्वी लोक से आया हुआ और बिना खाए पिए यहां विराजित हैं। अपने सबके सब लोगों को उन्होंने बुला लिया, पत्नी को, परिवार के सदस्यगण, मंत्रीगण, और उनके सामने आतिथ्य सत्कार की बात रखी। और आतिथ्य के अपमान और अपमान का दुष्परिणाम, इसकी भी बात रखी। उन्होंने कहा कि एक ब्राह्मण अतिथि आपके द्वार पर आया हुआ है और वो साक्षात अग्नि है, वैश्वानर प्रविशति अतिथिर्ब्राह्मणो गृहान् कस्यैतं शान्तिं कुर्वन्ति हर वैवस्वतोदकम्। ब्राह्मण अतिथि अग्नि स्वरूप साक्षात परमात्मा का रूप हमारे द्वार पर आया हुआ है और वो भूखा प्यासा है और ये कुपित होकर हमारे यमलोक को ध्वस्त कर दे, जला दे उसके पहले ही। इनकी सेवा करके इनको शांत करना बहुत आवश्यक है। ये वैश्वानर जो है ना, ये भगवान का भी रूप, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नम चतुर्विधम्। भगवान कहते कि मैं वैश्वानर अग्नि हूं और खाए पिए पदार्थों को मैं पचा लेता हूं। ये भगवान का रूप है वैश्वानर अग्नि। और ब्राह्मण और उसमें भी अतिथि साक्षात भगवान का रूप। और उसी समय उन्होंने उनका चरण धोया, अर्घ्य दिया, पाद्य दिया। और अब आचार्य यम अपने सभी मंत्रीगण, अपने परिवार के सदस्यगण उनको शिक्षा दे रहे हैं। बड़ा ही सुंदर श्लोक है, आशा संगतम सुनृताम च इष्टा पूर्ते पुत्र पशुंश्च सर्वान् एतद् वृङ्क्ते पुरुषस्याल्पमेधसो यस्यानश्नन् वसति ब्राह्मणे गृहे। आप अतिथि का सत्कार नहीं करते हैं, आपके घर में बिना खाए पिए कोई ब्राह्मण अतिथि, साधु अतिथि, कोई भी अतिथि रह जाए तो क्या होता है, दुष्परिणाम, नुकसान, ये यहां गिना रहे हैं। आशा संगतम सुनृताम च, भगवान भाष्यकार कहते हैं आशा का मतलब वो है, आप जिन बाह्य पदार्थों की इच्छा करते हैं ना पाने की, उसको आशा बोलते हैं। आशा माने इच्छा है, और वो इच्छा आपकी यहलोक से लेकर परलोक तक, छोटी से छोटी चीज से लेकर बड़ी से बड़ी चीज तक, आशा आशा इच्छा है। आप मकान बनाना चाहते हैं, ये आशा है। आप कोई चीज वस्तु चाहते हैं, कोई व्यक्ति चाहते हैं, ये भी आपकी आशा है। आप स्वधर्म का पालन करना चाहते हैं, ये भी आशा है। आप यज्ञ करना चाहते हैं, ये भी आशा है। आप भगवान को पाना चाहते हैं, ये भी आशा है। अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा, ये भी तो आशाएं तो है, इच्छाएं तो है। तो यहां पर आचार्य यम कहते हैं कि आप यदि अतिथि का सत्कार नहीं करते हैं, अतिथि धर्म का पालन नहीं करते हैं, तो आशा विंगते, हाँ, आपकी आशा जो है ना वो निराशा में बदल जाती है। आपकी जीवन की जो भी इच्छाएं हैं वो पूर्ण नहीं होती हैं, पूर्ण नहीं होती हैं। आप जो भी इच्छा करते हैं ना वो निराशा में बदल जाती है, आपके हाथ में फल नहीं लगता है, क्योंकि आपने एक अतिथि की आशा को पूर्ण नहीं किया है। अतिथि की आशा क्या थी? अतिथि की आशा यही थी कि जब यहां पहुंचेंगे तो सत्कार होगा। और सत्कार क्या है? अतिथि आपसे क्या दो चीजें, तीन चीजें चाहता है अतिथि। पहली चीज, आप उसको रहने को दे। पुराने जमाने में धर्मशालाएं बनाते थे लोग, और अपने घर में भी रख लेते थे। अभी मैं उत्तर प्रदेश बलिया भागवती कथा थी, वहां गया तो एक गजब की चीज मैंने देखी। मैंने पढ़ता था घर द्वार, ऐसे सुना है ना अपने घर द्वार, तो गिरिजी घर तो ठीक है, द्वार क्या है? आप घरदार सुनते हैं ना, घरदार, तो घर तो ठीक है, ये द्वार क्या है? तो द्वार का मतलब दरवाजा थोड़ी है वहां। तो इस समय जब मैं गया तो मुझे मालूम पड़ा कि द्वार क्या चीज है। वह जितने लोगों के घर है ना, उनका एक द्वार भी होता है, द्वार। और ये द्वारा जो बना है ना गुरुद्वारा, वो उसी से बना हुआ है द्वार। घर का मतलब होता है जहां आपके परिवार के सदस्य गण रहते हैं, पति पत्नी भाई माता पिता बाल बच्चे, जो भी आपके अंतरंग फैमिली के सदस्य हैं वो सारे घर में रहते हैं। और द्वार का मतलब होता है बाहर का अतिथि आया, आपके बाहर के कोई रिश्तेदार आए, पुरुष मंडल, महिलाएं तो घर में रहेगी, और जो पुरुष लोग हैं वो आपके द्वार में रहेंगे। द्वार माने जहां अतिथि लोग निवास करते हैं, आगंतुक जो रहते हैं उसको द्वार बोलते हैं। हर घर के साथ एक द्वार थोड़ा दूर होगा, लेकिन थोड़ा सा दूर होगा। अतिथि आपके पास आएगा तो सबसे पहली उसकी आकांक्षा क्या? उसकी पहली आकांक्षा, हमको थोड़ा रहने को जगह मिल जाए। पुराने जमाने में लंबी यात्राएं हुआ करती थी, वाहन नहीं थे, और रात्रि के समय निवास स्थान की बहुत आवश्यकता थी, बारिश से, गर्मी से, जाड़े से, हिंसक जीव जंतुओं से रक्षा करने के लिए जगह की जरूरत थी। और वो इस आशा से आया था कि आप थोड़ी जगह दे देंगे, और आपने उसको जगह नहीं दिया, उसकी आशा पूरी नहीं की। तो आचार्य यम कहते फिर आपकी आशा कैसे पूरी होगी? साक्षात परमात्मा और उसको आतिथ्य देकर, घर निवास देकर सेवा करने का अवसर मिला था। आप अतिथि को द्वार बनाकर भगवान की पूजा अर्चना कर सकते थे, नहीं किए, इसलिए कहते आशा वृंगते। और उनकी इच्छा क्या थी? दूसरी, रहने का निवास और थोड़ा अन्न भोजन। पुराने जमाने में लंबी यात्रा में कौन आदमी सारा खाना पीना कोई ले जाता? जिसके घर जाते वहीं उनको भोजन लोग पूछते, कहां से आए, आइए वृंदावन से आए, आओ खाओ पियो रहो। ये दूसरी अन्न थी। और तीसरी जो चीज थी वो मार्गदर्शन करना था। आतिथ्य अब दूसरे गांव जाएगा, अगली यात्रा में निकल पड़ेगा, तो आपको मार्ग भी तो बताना है उसको। अगला मार्ग आपको ही बताना है, सुव्यवस्थित मार्ग बताना। ये तीन चीजें अतिथि को चाहिए थी, निवास, भोजन और मार्गदर्शन। ये तीन चीजें अतिथि को आप नहीं दे पा रहे हैं, नहीं दिए हैं, तो आचार्य हम कहते हैं एतत् विरिंगते, आपकी आशा जो है ना वो निराशा में बदल जाती है। यस्य अनश्नन वसति ब्राह्मणे गृहे। और संगतम सुनृताम च, ये नृत है ना, सुनृत माने फल होता है। ये हमारे जीवन में तीनों क्रम है। ये जो श्लोक है ना, ये ऊपर ऊपर से टाल के आगे बढ़ने का नहीं है, बहुत गहराई से सोचने का श्लोक है। आशा प्रतीक से सुनृताम च, यहां सुनृत का अर्थ है फल। हमारे जीवन में पहली आशा है और उस आशा का फल, सुनृत माने फल। और प्रतीक्षा और आशा में अंतर है। आशा का मतलब है आप चाहते हैं व्यक्ति, वस्तु, स्थान, अवस्था, परिस्थितियां आदि, वो आशा है। और प्रतीक्षा का अर्थ है वो निश्चित है। आशा में वस्तु सत्ता का वास्तविक स्वरूप, उसका देश, उसका काल, मिलने के मापदंड, इसका कुछ भी पता नहीं होता है। वो कितना बड़ा होगा, कितना छोटा होगा, इसकी कोई कल्पना आपके मन में नहीं होगी। चाहते हैं और प्रतीक्षा जो होती है ना, वो चीज फिर मिलने की। जैसे आपको उदाहरण में समझा देते हैं, आप धन चाहते हैं, आप दुकान खोल रहे हैं, आप धन चाह रहे हैं कि आज हमको मिले 1 लाख 10 लाख रुपए, आज फायदा हो, ये आपकी आशा है। और आप बैंक गए हैं और लाइन में खड़े हैं और आपके चेक में आपने 10 लाख रुपया डाला है, लाइन में खड़े हैं, आपको 1-2 घंटे के बाद मिलेंगे, अभी आशा है कि प्रतीक्षा है? ये आशा नहीं है, ये क्या है? प्रतीक्षा है। आपको कोई बोले भैया कितना मिलने वाले हैं, बोले 10 लाख, तो आशा है कि प्रतीक्षा है? अरे भैया हम तो प्रतीक्षा कर रहे हैं, लाइन में लगे हैं, अब निश्चित है, अब ये आशा नहीं है, अब ये प्रतीक्षा है। एक बड़ा सुंदर प्रकरण है भागवत में। ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति की और स्तुति के प्रसंग में ब्रह्मा जी ने बड़े सुंदर एक शब्द का प्रयोग किया, सुसमीक्षताम, ऐसा उन्होंने कहा कि भगवान मैं आपकी कृपा की समीक्षा कर रहा हूं, प्रतीक्षा नहीं कर रहा हूं। वहां और गहरी बात बोली और एक कोटि की बात और बोली, आप भगवान की प्रतीक्षा करते हैं कि समीक्षा करते हैं? हम लोग तो प्रतीक्षा करते हैं, प्रतीक्षा में और समीक्षा में भी अंतर है। जैसे इस समय आप बारिश की क्या कर रहे हैं, गर्मी है, गर्मी, आप गर्मी के दिन में बिल्कुल आप बादल छा रहे हैं काले काले और थोड़ा अंधेरा अंधेरा भी सा लग रहा है, हवाएं थोड़ी ठंडी ठंडी बहने लगी, तो उस समय आप क्या करते? प्रतीक्षा, ओ अब तो बारिश तो होगी, बादलों ने भी अपने रंग को बदलना शुरू कर दिया है, हवाएं भी चलने लगी ठंडी ठंडी, और आप उस समय बिल्कुल आप अनुभव करते हैं अब बारिश होने वाली है, प्रतीक्षा है, अब निश्चित है। लेकिन जब बारिश होने लगती है और ठंडी ठंडी फुहार आप तक पहुंचने लगती है, जल भी आप तक पहुंचने लगता है, आप आंखों से देख रहे हैं झरझर बारिश हो रही है, तो उस समय आपकी प्रतीक्षा है कि समीक्षा है? आप ये प्रतीक्षा नहीं, ये वो समीक्षा है, माने आप अनुभव कर रहे हैं, अब आप समीक्षा करते हैं, ओ बहुत जबरदस्त बारिश है, बहुत जबरदस्त, उसके बूंदों का आप अनुभव करते हैं, मोटे मोटे बूंद है, टप टप पड़ रहे हैं, एक ही बूंद आपके सिर पर गिरी तो सिरा पूरा शरीर भींग आते हैं, ओहो हो क्या बारिश है। ये आपकी प्रतीक्षा नहीं, ये आपकी समीक्षा है। समीक्षा में वस्तु आपको प्राप्त हो चुकी होती है और प्राप्त वस्तु का आप मूल्यांकन करने लगते हैं और प्रतीक्षा में वस्तु प्राप्त होना निश्चित है, लेकिन अभी आपने उसको प्राप्त नहीं किया है। अब यहां भी आप सेम उस प्रकरण को आप यहां जोड़ दीजिए। यम कहते हैं कि आशास प्रतीक्ष, ये प्रतीक्षा है। प्रतीक्षा माने बिल्कुल निश्चित है, अब हाथ में आई आई चीज है, आने वाली है। और वो सर्व पदार्थों के बारे में, दुनिया के पदार्थों के बारे में अथवा आध्यात्मिक वस्तु के बारे में भी, अब आप यज्ञ करने वाले हैं, अब आप संध्या वंदन करने वाले हैं, अब आप बस मोक्ष को पाने वाले हैं, ये सारी चीजें प्रतीक्षा में है। एक महात्मा की जीवनी में पढ़ रहा था, उसमें लिखा था कि 21 दिन का व्रत था उनका, और उस 21 दिन के व्रत में ऐसा भाव था बस बिल्कुल अब मोक्ष के निकट है, और 3 दिन पहले शरीर छूट गया उनका, और वो 3 दिन पहले छूटा पुनर्जन्म हुआ, ज्ञान नहीं हो पाया, और दूसरा जन्म उन्होंने लिया और फिर ज्ञान हुआ। ये आचार्य यम कह रहे हैं यही प्रतिबंध है, प्रतीक्षा में आपका प्रतिबंध उपस्थित हो गया, आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक किया है, गुरु की आज्ञा का उल्लंघन, कहीं अतिथि का अनादर, साधु का अनादर, या अपने से बड़े माता पिता, अपने से श्रेष्ठ जनों का अनादर किया है, कहीं ना कहीं मिस्टेक है, और फिर वो प्रतीक्षा विंगते, आपकी जो प्रतीक्षा है, आपको जो वस्तु मिलने वाली है वो मिलते मिलते रह जाती है, बस मिलते मिलते मिलते मिलते रह जाती है, ये कहीं ना कहीं हमने अपराध किया है। आशा प्रतीक्षे विंगते, और तीसरा है संगतम, और संगतम माने फल। संगतम शब्द का अर्थ होता है फल, आप आशा कर रहे हैं, उसके बाद आगे आपके जीवन में प्रतीक्षा, और प्रतीक्षा के बाद समीक्षा, तीसरा नंबर आप प्रतीक्षा के बाद समीक्षा लेना या फल लेने की बात है। एक बड़ा मजबूत उदाहरण इस प्रकरण को सार्वजनिन समझने के लिए, आप शबरी के जीवन को देखना। शबरी जब सर्वप्रथम अपने गुरु के पास गई, मतंग ऋषि के पास, तो ऐसे तो नहीं गई होगी ना, आज उन्होंने घरदार छोड़ के गुरु के पास जाकर सेवा का व्रत लिया, तो उनके मन में था कि मैं परमात्मा को पालूं। एक किसी ने मुझे सुनाया, कोई ब्रह्मचारी अपने आश्रम में रहते थे, महाराष्ट्र में कोई माता जी हैं, और ये बड़ी सिद्ध माता है, जनाबई नाम है उनका। तो मैंने पूछा तुम मिले थे क्या? हाँ बोले मैं मिला था उनको, 15 दिन रहा, और बोले कि मैंने देखा कि एक सांप आया तो उसके तरफ बढ़ रहा था, हम तो उठ के भागे, और वो उसको बैठे बैठे लकड़ी से उसको अपने से दूर कर रही थी, और बोले भाग भाग यहां क्या करने के लिए आया। वो भाग नहीं रही थी, वो लकड़ी से उसको हटा रही थी, और बड़ा सांप था, और वो सांप बोले उसको भय नहीं, इतना मतलब उच्च कोटि की माता। मैंने कहा चलो फिर मैं भी मिल लेने आता हूं। जब मैं वहां गया तो बड़ी प्रसन्न हुई, उन्होंने अपनी जीवन की घटना सुनाई। देखो आज भी कितनी उच्च कोटि के लोग हैं, और अपने धर्म की सबसे बड़ी विशेषता है, धर्म आपका किसी वर्ण जाति प्रांत लिंग आदि से बंधा हुआ नहीं है। आपके हिंदू धर्म में छोटे बच्चे भी बहुत महान हुए हैं, कहां ध्रुव और प्रह्लाद 5 साल के बच्चे, दुनिया में ऐसा कोई इतिहास है क्या? दुनिया के इतिहास में, दुनिया के धर्म ग्रंथों में कहीं आपने ऐसे बालकों की कहानी पढ़ी जो 5 वर्ष का बालक हो और वो तपस्या करने के लिए निकल पड़ा हो? ध्रुव प्रह्लाद नारद, क्या अद्भुत बालक है। आपने ऐसे लोगों को भी नहीं सुना होगा कि 80 साल का वृद्ध हुआ और छड़ी लेके निकल पड़ा तपस्या करने के लिए, ये संन्यास धर्म क्या था? भाई 80 साल 75 का 25-25 गिन लेना, 3 हो गए ना वानप्रस्थ तक, और आप 80 साल के हैं और छड़ी लेके निकल पड़े क्या करने के लिए? आपके धृतराष्ट्र क्या है? चतुर्थ अवस्था में तो निकल पड़े, और तपस्या करने के लिए जहां कोई सुविधा नहीं हा? आप कल वो भगवत गीता श्रवण कर रहे थे ना विनोबा भावी जी की, उन्होंने सुनाया कि वो जर्मन गए थे और वहां इंटरव्यू लिया जर्मन रेडियो ने, और दूसरे दिन एक चीज ब्रॉडकास्ट की कि वो क्या थी, बोले ये लोग सुबह 4 बजे उठते हैं और कॉफी और चाय नहीं पीते हैं। उन जर्मनी लोगों को लगा कि वो क्या कितनी त्याग की बात है, क्यों कि चाय और कॉफी नहीं पीना उनके लिए बहुत बड़ी त्याग की बात, जिसके बिना जो नहीं रह सकते वो वाह वाह बोले चाय कॉफी नहीं पीते उनके लिए तो अद्भुत चीज। और वो लोग सो जगने वाले 9-10 बजे, बोले 4 बजे जगते हैं, अद्भुत त्याग की बात। जो चीज आपके लिए संभव नहीं जब दूसरा करता है वो बहुत बड़ी मालूम पड़ती है, बहुत बड़ी मालूम पड़ती है। तो नारायण कितनी अद्भुत चीज है, 80 साल का वृद्ध और वो परमात्मा को पाने के लिए निकल पड़ा, और वहां कोई सुविधा नहीं है, वहां गद्दे नहीं, तकिया नहीं और पानी भी तैयार नहीं है कि आप नौकर को बोलो पानी और पानी आ जाए, वहां तो झरनों से भरना पड़ेगा उस बुढ़ापे की अवस्था में, पैर फिसल जाए राम राम, पहाड़ उतरना चढ़ना सारी चीजें, वहां नौकर चाकर थोड़ी होती संन्यास में। आप स्त्रियों को देखना यहां अद्भुत, और ये बड़ी बड़ी महान साध्वियां हुई हैं गार्गी, दुनिया में ऐसा आपको मिलेगा कि कोई माता बैठी है मंच पर लाखों लोगों को ज्ञान का उपदेश कर रही है, क्यों गिरी जी है ना अद्भुत बात। आपको दुनिया में कहीं आपको नहीं मिलेगा कि कोई बालिका बैठी है मंच पर, लाखों लोग बैठे नीचे बूढ़े बूढ़े, और ये बालिका अभी 16 साल की है और ज्ञान का उपदेश कर रही है, और पुरुष तो है ही ब्रह्मज्ञानी इसमें कोई लेकिन यहां आपको हर तरीके का आदमी मिलेगा, हर वर्ण, हर गोत्र, हर प्रांत, हर लिंग, छोटा बड़ा, हर जगह पर आपको। परम पूज्य महाराज श्री ने कहीं लिखा है कि उनकी लिस्ट में एक ब्रह्मज्ञानी थे, बड़े अद्भुत, महाराज विचरण करते करते गए तो एक ब्रह्मज्ञानी मिले गंगा के किनारे, गुफा में रहते थे। तो महाराज श्री ने पूछा कि आप गुफा में रहते हैं गंगा के किनारे, आप यहां खाते क्या है? तो उन्होंने कहा कि मैं गंगा जी से भिक्षा लेता हूं। तो महाराज जी को लगा गंगा जी से भिक्षा लेते हैं तो गंगा जी प्रकट होकर देती होगी, नर्मदा जी से भिक्षा लेने का अर्थ है नर्मदा जी प्रकट होकर आपको भिक्षा दे। तो महाराज ने पूछा कि क्या नर्मदा गंगा साक्षात प्रकट होकर भिक्षा देती है क्या? उन्होंने कहा नहीं, मैं एक मछली पकड़ लेता हूं और मछली खा लेता हूं, भजन करता हूं। महाराज को बहुत आश्चर्य हुआ, बोले तो बड़ा गड़बड़ है मछली पकड़ के खाते हैं, ऐसा गलत अर्थ मत लीजिएगा आप। आदमी जब सुनता है ना तो अपने मतलब की बात निकाल लेता है, कहीं ऐसा ना सोचे कि। उन्होंने कहा कि मैं मछली खाता हूं, ब्रह्मज्ञानी। उन्होंने कहा भैया मैं मछुआरा ही हूं, मैं मेरी जाति मछुआरा है। और बोले मुझे ज्ञान हो गया पूर्वजन्म का संस्कार, गुरु की कृपा, भगवान की कृपा, मुझे ज्ञान हो गया। और बोले जैसे मेरा उस समय भी मछली खाता था, बोले अभी भी मैं मछली खाता हूं, लेकिन आप इसका अर्थ मत लेना कि मछली खाने से ज्ञान होता है, ये खाने जाने से ब्रह्म ज्ञान का कोई संबंध नहीं है। देश काल, आपका स्वभाव, आपका स्वधर्म आदि के हिसाब से आपका रहन सहन बनता है। तो कहां मछुआरा और कहां ब्रह्म ज्ञान, लेकिन यहां पर निषाद को भी ज्ञान, यहां जाति से कोई बंधा हुआ ज्ञान थोड़ी है। भगवान भी कहते हैं ना अपि चेत शूद्राचारो भजते माम अनन्य भाक साधुरीव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो ही सह सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम रज। भगवान कहते हैं कि सभी धर्मों का परित्याग कर मेरी शरण में आ जाओ। तो वहां शरण में आना महत्वपूर्ण है, धर्म महत्वपूर्ण नहीं, वर्ण महत्वपूर्ण नहीं है, वहां लिंग भी महत्वपूर्ण नहीं, वहां समर्पण, और वो समर्पण हृदय का होता है, शरीर का नहीं। और ये सारे वर्ण, जाति, गोत्र, ये प्रांत सारे मन के होते हैं कि आपके तन के होते हैं? आपका नाम किसका है? आप ब्राह्मण हैं तो आप तन से हैं कि आप मन से हैं? वस्तुतः नाम जब पढ़ा आपका तो नाम और ये सब तन के हैं ना, ये तो तन के हैं। इसलिए नारायण आपके यहां कहीं कोई भेद नहीं है। उच्च कोटि की माताएं हुई, उच्च कोटि के बालक हुए, उच्च कोटि के वृद्ध पुरुष हुए। और वो जैसे माई की बात सुना रहा था ना मैं, वो जनाबाई नाम था, 16 साल की उम्र, पुराने जमाने में शादी होती थी, जल्दी शादी हो गई। उन्होंने सुनाया वो घटना मुझे, संक्षेप में सुना देता हूं, बड़ा प्रेरणास्पद उदाहरण है, मुझे तो बड़ा अच्छा लगा। उस माता को देख करके, अभी भी हैं, करीब वो 90 साल की हैं, उन्होंने सुनाया कि मुझे ऐसा लगा कि अब इस संसार में मुझे नहीं रहना है। आज 90 साल की का मतलब समझते हैं ना, ये उसके जीवन की मतलब 70 साल पुरानी घटना है, 70 साल पुरानी घटना। और भयंकर जंगल था, गांव के पास एक पहाड़ी थी, पहाड़ी पर गई और बैठ गई। पहाड़ी में झरना था, वो 12 महीने बहते थे, पुराने जमाने में 12 महीने झरने बहते थे।
4: Om Namah Shivaya. Dear users of Shaivam.org, we are very much delighted to let you all know that due to the shower of grace from Almighty Lord Shiva and the continuous support from esteemed users like you, our Shaivam.org website had passed 26 successful years of service in the world of Shaivam, and it is all set to sustain the same with lot more new features in the forthcoming years as well. Adding to that, like one more diamond embedded to the golden crown, we are pleased to inform the existence of a new radio, Shiva Tattvam, specifically designed to telecast Shaiva discourses. It's a humble request to you to listen that as well and extend your support. Now you can listen all the Shaiva discourses being scheduled in Shaiva Lahari and Thirunariya Tamilosi radios in Shiva Tattvam radio only. Thanks for your esteemed support. Om Namah Shivaya.

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
0: ओम नमः शिवाय।